0: इस हनुमान आरती के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है रामचरितमानस पाठ।
1: सुप्रभात, सुन रहे हैं आप 150।

वन गमन के लिए विदा लेने आए हुए पुत्र के वचन सुनकर माता कौशल्या स्तब्ध रह गई हैं। आसन्न पुत्र वियोग उनके सम्मुख एक भीषण दुविधा बनकर खड़ा हो गया है। न तो वे श्री राम को अपने पास रख सकती हैं, न ही वन जाने की आज्ञा दे पाती हैं। एक ओर धर्म तथा दूसरी ओर ममता ने ऐसा धर्म संकट उपस्थित कर दिया है जिस

से त्राण पाना कठिन है, किंतु विजय कर्तव्य रूपी धर्म की होती है। धैर्य ममता के प्रवाह में अडिग खड़ा होकर कहता है, पिता की आज्ञा का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। राज्य देने के स्थान पर पिता ने वनवास दे दिया, इसका मुझे तनिक भी दुख नहीं है। किंतु भरत, स्वयं महाराज तथा प्रजाजन क्या तुम्हारा वियोग सहन कर सकेंगे? हे तात, यदि केवल पिता की आज्ञा हो तो माता को उनसे अधिक मान और महत्व देकर वन को न जाओ। किंतु यदि माता और पिता दोनों ने वन गमन के लिए कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस पाठ। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य चर्चा में आज का विषय है संतुलित आहार बेहतर जीवन का आधार। कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर संजीव कुमार से धर्मेंद्र कुमार राठौर की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार। स्वास्थ्य चर्चा के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर संजीव कुमार। आप प्रोफेसर हेड क्रिटिकल केयर मेडिसिन डिपार्टमेंट इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के हैं और साथ ही आप नोडल ऑफिसर हैं नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट स्किल सेंटर IGMS पटना के। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
2: धन्यवाद धर्मेंद्र जी।
1: डॉक्टर साहब, अक्सर हम अपने आसपास देखते हैं कि कुछ लोग जरूरत से ज्यादा मोटे हैं तो कुछ लोग जरूरत से ज्यादा पतले होते हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं जो आहार है संतुलित नहीं होता है, तो कितना जरूरी है और कितना महत्वपूर्ण है संतुलित आहार हमारे स्वस्थ जीवन के आधार के रूप में?
2: आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है ना। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आज के समय में जो हमारे बच्चे हैं
1: जी
2: और वो जो उनके परिवार और मदर फादर भी, खासकर वो प्रोसेस फूड जो होता है, प्रसंस्कृत भोजन की तरफ जा

0: आकर्षित होते हैं,
1: जी
0: और वो लोग पोषक आहार जिस तरह का होना चाहिए उस तरह का वो नहीं ले पाते हैं। इसलिए सबसे जरूरी है कि हमें अपने भोजन में हरे सब्जियां, फल और उसके अलावा साबुत अनाज को रखना चाहिए,
1: जी
0: और जितना हो प्रोसेस फूड को अवॉइड करना चाहिए। खासकर उसमें मीठा चीज जो है उसको अगर कम से कम रखें तो और भी अच्छा रहता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे खाने में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के अलावा समुचित मात्रा में विटामिन और खनिज भी रहना चाहिए, जिससे कि एक बैलेंस डाइट लोग को मिल सके।
1: जी जी
0: इसी के चलते ये सभी समस्याएं हो रही हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, एक संतुलित आहार आम व्यक्ति जो है कैसे समझे कि संतुलित आहार क्या है, किन किन चीजों को अगर शामिल करे तो वो संतुलित आहार में आते हैं, क्या लें?
0: अगर एक ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में देखें तो
1: जी
0: वहां पर सभी लोग शुरू से ही एक साधारण थाली घर में अपना खाते थे,
1: जी जी
0: जिसमें बहुत अच्छा दो तीन चपातियां रहती थी, जिसमें गेहूं का बना रहता था। आजकल उससे भी अच्छा हो गया है कि मोटा अनाज का अगर संभव हो तो उसका आप मोटा अनाज का भोजन करें।
1: जी
0: खासकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मोटा अनाज खाएं, जैसे जौ, बाजरा, ओट्स जैसे चीज़ को अपने खाना में शामिल
1: शामिल
0: करें।
1: करें।
0: साथ ही साथ मैंने जैसा कि बोला कि फल और हरा सब्जी का मात्रा भी आपको प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। अगर ये प्रोटीन प्रोटीन जैसे मांस, मछली, अंडे, दही, दाल आदि को भी आप ले सकते हैं। इसी भी हमारे बॉडी के बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है।
1: जी
0: इसके अलावा संभव हो तो कुछ नट्स और बीन्स आप चीज़ ले सकते हैं, कोकोनट्स ले सकते हैं, कुछ दूध उत्पाद आप ले सकते हैं, दूध, दही, पनीर, ये सब चीज़ जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इससे कि कैल्शियम की मात्रा भी पूरी हो जाती है।
1: खाना में संतुलित जैसे मात्रा बनाने के लिए कई प्रकार के हरी सब्जियां, फल फूल खाने को शामिल करना चाहिए। क्या मात्रा भी संतुलित आहार में आता है कि कितना मात्रा में हमें खाने को लेना चाहिए?
0: बिल्कुल, अगर अगर हम बात करें मात्रा की तो उम्र के हिसाब से देखा जाए तो ये देखा गया है कि 19 से 50 वर्ष के व्यक्ति में
1: जी
0: महिलाओं में 1800 से 2000 कैलोरी भोजन लेना चाहिए, और अगर उम्र 50 से ऊपर जा रहा है तो उनको जो है ये 200 कैलोरी और कम कर देना चाहिए। 1600 कैलोरी को ही महिलाओं में रखना चाहिए, और पुरुषों में ये मात्रा 400 कैलोरी तक बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर 19 से 50 वर्ष के पुरुषों में ये 2200 से 2400 आप ले सकते हैं, जबकि उसके ऊपर हो तो उसको और घटा देना चाहिए, 2000 कैलोरी होना चाहिए। ज़्यादा कैलोरी में भोजन खाने से होता है क्या कि ये हमारे यहाँ ये हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं जाके एकत्रित हो जाते हैं और वो एक फैट के रूप में कन्वर्ट होके चर्बी का
1: मोट
0: रूप धर
1: मोट और
0: लेता है,
1: वही मोटापा
0: और
1: के रूप में
0: वही
1: दिखता
0: जो
1: है।
0: है ये हो जाता है। इसलिए अच्छा रहेगा कि आप उतना ही भोजन करें जितने आपको ज़रूरत हो। हरा सब्जी आप जितना चाहे उतना मात्रा में रख सकते
1: सीजनल
0: हैं।
1: सब्जी जो हो उस
0: सीजनल
1: समय।
0: सब्जी,
1: जी
0: सीजनल सब्जी के बारे में या सीजनल फल के बारे में बोला गया। अभी मैंने एक स्टडी पढ़ रहा था कि जो जितना दूर का फल है
1: जी
0: उतना ज़्यादा नुकसानदायक है,
1: नुकसानदायक है।
0: यानी आपके आसपास का फल जो है वो उतना ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। डिस्टेंस बढ़ेगा तो वो आप उसका आपके बॉडी का रिक्वायरमेंट आपके हिसाब से वो ठीक नहीं है।
1: जी निश्चित रूप से संतुलित आहार प्रतिदिन अपने खान पान में आसपास के सीजनल सब्जियां और सीजनल जो फ्रूट हैं उसका शामिल करें और स्वस्थ रहें। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य चर्चा आप सुन रहे थे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। विषय था संतुलित आहार बेहतर जीवन का आधार। कार्यक्रम में आप सुन रहे थे डॉक्टर संजीव कुमार से धर्मेंद्र राठौर की बातचीत। अब आपको अवगत करा दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों से।

अब से कुछ देर बाद 6:55 पर संस्कृत में समाचार और 7 बजे हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कार्यक्रम हालचाल आप सुनेंगे सुबह के 7:05 पर। वज्जिका लोकगीत का प्रसारण होगा सुबह के 7:15 पर। कलाकार होंगे भागवत शाह। शास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे सुबह के 7:25 पर। शास्त्रीय संगीत में आप सुनेंगे कमला बोस का शास्त्रीय गायन राग नट भैरव। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण होगा दिन के 9:10 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी आप सुनेंगे दिन के 10 बजे। भेंटवार्ता पर आधारित कार्यक्रम इनसे मिलिए आप सुनेंगे दिन के 10:30 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे दिन के 11 बजे। कार्यक्रम बिहार का लोक संगीत आप सुनेंगे दोपहर 12 बजे। महिलाओं के लिए कार्यक्रम नारी जगत का प्रसारण होगा दोपहर 12:30 पर। कार्यक्रम अक्षयवट आप सुनेंगे दोपहर 1:05 पर। कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता। वार्ता का विषय होगा अपने जीवन के अनुभव और यादों से समाज को समृद्ध करते हैं बुजुर्ग। वार्ताकार होंगी अलका कुमारी। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे दोपहर 1:30 पर और दोपहर 2:30 पर। युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युववाणी का समय होगा शाम के 4:30 पर। मगही कार्यक्रम मागधी आप सुनेंगे शाम के 5:30 पर। ICC वीमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच दकिया ओवल लंदन में खेले जा रहे पहले सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे शाम के 6:30 पर। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब संस्कृत और हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे आकाशवाणी दिल्ली से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मंत्री अवदत् यत् विगत पञ्चदश वर्षेषु उभयोः देशयोः मध्ये सम्बन्धः सुदृढ विश्वासेन संयुक्त प्रगतिना च चिह्नितः अस्ति। यदा तु आगामि 50 वर्षाणि नवान्वेषणेन सुस्थिरतया संयुक्त समृद्ध्या च निर्धारिताः भविष्यन्ति। सः सेशेल्स देशस्य स्वातन्त्र्यस्य 50वें वर्षे राष्ट्रियदिवसस्य समारोहे भागग्रहणाय हर्षं प्रकटितवान्। श्रीमोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपत्ये डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी इत्यस्मै सेशेल्स देशस्य सर्वकाराय जनानां च स्नेहाय धन्यवादम् अददात्। राष्ट्रीय निवेशावसंरचना कोषस्य नीफ इत्यस्य कृते सर्वकारस्य समग्र प्रतिबद्धता अधुना 60,000 कोटि रूप्यकाणि अभवत्। एतत् उपक्रमं मूलसौकर्याणां कृते अन्येषु राष्ट्रिय महत्वपूर्णेषु क्षेत्रेषु च केन्द्रस्य निवेशप्रतिबद्धतां प्रदर्शयति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन गतसप्ताहे आधारभूत संरचना निवेशस्य गतिं वर्धयितुं देशे संस्थागत मूलधनम् उत्प्रेरयितुं च निधौ 30,000 कोटि रूप्यकाणां अतिरिक्त निवेश प्रतिबद्धतानुमोदिता। केन्द्रीय कृषि कृषक कल्याण मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अद्य आरभ्य पूर्वोत्तरस्य द्विदिवसीय यात्रायां भविष्यति। श्री चौहानः असम राज्यस्य गुवाहाटी नगरे उच्चस्तरीय समीक्षा सभायाः आयोजनं करिष्यति। सभायाम् असम राज्यस्य समीपस्थेषु क्षेत्रेषु सस्येषु ग्रामेषु महत्वपूर्ण जलसंरचनायां च जलप्लावस्य प्रभावस्य समीक्षा भविष्यति। वर्तमान सहायोद्धार कार्याणां प्रगतेः समीक्षापि भवितुं शक्नोति। असम राज्यस्य समीक्षायाः अनन्तरं श्री चौहानः श्वः अरुणाचल प्रदेशस्य जलप्लावित क्षेत्राणां निरीक्षणं विधास्यति। सः जलप्लावितानां ग्रामाणां कृषिक्षेत्राणां सहायोद्धार शिबिराणां च स्थित्याः मूल्यांकनं कर्तुं वायुमार्गेण भूमार्गेण च सर्वेक्षणं करिष्यति। जुलाई मासस्य तृतीय दिनांकादारभ्यमानस्य 57-दिवसात्मिकायाः वार्षिक अमरनाथ यात्रायाः प्राक् सुरक्षा संस्थाः पंजाबतः जम्मू कश्मीर पर्यन्तं तीर्थयात्रा मार्गे सज्जतां तीव्रीकृतवन्तः। मोक ड्रिल इति आचरन्ति, निरीक्षण प्रणालीं सक्रियं कुर्वन्ति। सहस्रशः तीर्थयात्रिणां सुरक्षित गमनागमनं सुनिश्चेतुं अन्ता संस्था समन्वयं सुदृढं कुर्वन्ति च इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध हट जाएंगे। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थी, इस वजह से 12 जून से अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य कालाबाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसीलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। केंद्र सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को

0: मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियमन भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। ये नीति कल से चरणबद्ध ढंग से लागू होगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को शून्य उत्सर्जन परिवहन की दिशा में आगे बढ़ाना और प्रदूषण कम करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार अगले 4 वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
1: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है। तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत जबकि 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया है। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थीं। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। इसके साथ ही पैराग्वे राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर गई है, जबकि जर्मनी विश्व कप से बाहर हो गई है। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। ब्राजील ने रोमांचक मुकाबले में जापान को 2-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हालचाल। श्रोताओं, कार्यक्रम हालचाल में आप सबों का स्वागत है। आज 30 जून है। आज जिन जिन श्रोताओं का जन्मदिवस है उन सभी श्रोताओं को आकाशवाणी पटना की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रोता मित्र, कार्यक्रम में अब हम चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आज किन महत्वपूर्ण व्यक्तियों का जन्मदिवस है। नागार्जुन, जो कि भारतीय साहित्यकार हैं, उनका जन्म 30 जून 1911 ईस्वी को हुआ था। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं आलोचक रघुवंश, इनका जन्म 30 जून 1921 ईस्वी को हुआ था। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार कल्याण जी का जन्म 30 जून 1928 ईस्वी को हुआ था। C.N.R. राव, भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इनका जन्म 30 जून 1934 ईस्वी को हुआ था। हरिवंश नारायण सिंह, भारतीय पत्रकार और राजनेता हैं, इनका जन्म 30 जून 1956 ईस्वी को हुआ था। भारतीय राजनीतिक और राज्यसभा के सांसद हैं भूपेंद्र यादव, इनका जन्म 30 जून 1969 ईस्वी को हुआ था। श्रोता मित्र, कार्यक्रम में हम आगे और भी चर्चा करेंगे। तब तक सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

इस खूबसूरत से गीत के बाद अब आपको अवगत कराते हैं आज के इतिहास से और देखते हैं कि क्या छुपा है आज के इतिहास में। ब्राजील ने जर्मनी को

30 जून 1999 ईस्वी में ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री तथा नेशनल पार्टी के नेता टिम फिशर का इस्तीफा हुआ था। 4 ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त अभिनेत्री कैथरीन हेपबर्न का निधन 30 जून 2003 ईस्वी को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आम सहमति से शांति रक्षण विभाग के बंटवारे का निर्णय किया। यह निर्णय 30 जून 2007 ईस्वी को हुआ था। रविकांत, उमाशंकर चौधरी और विमल चंद्र पांडे को संयुक्त रूप से भारतीय ज्ञानपीठ का नवलेखन पुरस्कार प्रदान किया गया 30 जून 2008 ईस्वी को। भारतीय पत्रकार अनीसुद्दीन अजीज को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बुक कीपर्स IAB के न्यू बिजनेस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया 30 जून 2008 ईस्वी को। श्रोता मित्र, कार्यक्रम में आप जान रहे थे आज का इतिहास। अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

इसी के साथ हमारे आज के हालचाल का अंक यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं कार्यक्रम के अगले अंक में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हालचाल, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है वज्जिका लोकगीत, कलाकार हैं भागवत साह।

अभी आप सुन रहे थे वज्जिका लोकगीत, कलाकार थे भागवत साह। इसी के साथ वज्जिका लोकगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनिए कमला बोस का

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे कमला बोस का शास्त्रीय गायन राग नट भैरव। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचारों के लिए, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पहली जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों

0: में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमेरिका और ईरान हुरमूज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक की मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
3: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के 1 दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत

0: लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
1: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है। तो लगभग 15000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मूज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉकड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
3: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग 1 वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों

पर संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने

0: पर आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रुपए तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपए। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग पॉइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Center to withdraw temporary restrictions on sale and distribution of petrol and diesel from the 1st of July. West Bengal government to implement uniform civil code in the state, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. Information and Broadcasting Ministry announces major decisions to boost Indian film industry. Delhi government clears electric vehicle policy. Cars under 30 lakh rupees to be exempted from road tax and registration fees. India strongly condemns Pakistan airstrikes in residential areas of Afghanistan that killed 36 civilians and injured 163 others. US and Iran to hold talks in Qatar's capital Doha today to resolve their dispute over Strait of Hormuz. And in football, Brazil enter round of 16 at the FIFA World Cup after 2-1 victory over Japan in Houston, US. The government has decided to withdraw the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of petrol and diesel. The Ministry of Petroleum and Natural Gas said that with effect from the 1st of July, that is tomorrow, the temporary measures will be lifted from motor spirit and high-speed diesel through retail outlets.

0: शायद आरजी ज़ाबता जाति पाबंदियां खत्म करने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने कहा है कि यकम जुलाई 2026 से सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों के तमाम पेट्रोल पंप पर मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल की फरोख्त पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी जाएंगी। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से। वजारत के बयान के मुताबिक मगरबी एशिया के बहरान के दौरान आलमी मंडी में ईंधन की कीमतों में शदीद इजाफा हुआ, ताहम हुकूमत ने मुल्क में पेट्रोल और डीजल की खुर्दा कीमतों को मुस्तहकम रखकर आम सार्फीन को इसके असरात से महफूज रखा। इसके नतीजे में खुर्दा कीमतों और बड़ी मकदार में ईंधन खरीदने वाले सार्फीन के लिए मुकर्र कीमतों में नुमाया फर्क पैदा हो गया। वजारत ने कहा कि इस सूरत हाल से निपटने के लिए 12 जून को आरजी ज़ाबता जाती इकदाम नाफिज किए गए थे, जिनके तहत पेट्रोल पंपों पर हर सारिफ या हर गाड़ी को रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा 200 लीटर हाई स्पीड डीजल फराहम करने की हद मुकर्रर की गई थी। इसके अलावा सनअती इदारा जाति और कमर्शियल सार्फीन के लिए भी खसूसी ज़ाबते नाफिज किए गए थे। इन इकदामात का मकसद डीजल की कालाबाजारी, ज़खीरांदोजी और गैरकानूनी तौर पर ले जाने को रोकना और आम सार्फीन के लिए पेट्रोल और डीजल की बिला रुकावट दस्तियाबी को यकीनी बनाना था। आदित्य प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि रियासत में यकसां सिविल कोड नाफिज किया जाएगा। वजीर आला ने असम्बली में ऐलान किया कि 2 जुलाई को होने वाली रियासती काबीना की मीटिंग में इस कानून का इब्तदाई मुसवदा पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गुजरात, उत्तराखंड और आसाम के मॉडल को सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना देसाई की सरबराही में एक कमेटी तशकील दी गई है। वजीर आला के मुताबिक ये कमेटी शादी, तलाक, बच्चों को गोद लेने समेत मजमूई तौर पर 9 मौजूआत का जायजा लेगी और 4 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर रियासती हुकूमत यकसां सिविल कोड का हतमी मसौदा तैयार करेगी। अलबत्ता वज़ीरे आला ने वाजे किया कि दर्ज फहरिस्त कबाइल, आदिवासी, कुर्मी बिरादरी और कदीम मकामी कबाइल को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। मरकजी इत्तलाआत और नशरियात की वजारत ने भारतीय फिल्म सनत को फ़रोग देने के मकसद से 2 बड़े फैसले किए हैं। ये फैसले कल नई दिल्ली में इत्तलाआत और नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव की सदारत में एक आला सतही जायजा मीटिंग में किए गए। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मीटिंग में फिल्म प्रोडक्शन को बढ़ाने, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बेहतर बनाने, भारतीय सिनेमा के माहौलियाती निज़ाम में उभरती टेक्नोलॉजी को मरबूत करने के इकदाम पर तवज्जो मरकूज की गई। वजारत ने कहा है कि इन इकदाम का मकसद भारतीय सिनेमा को आलमी सतह पर ज़्यादा मुसाबिकती बनाना, बिलखसूस छोटे शहरों और देही इलाकों में सिनेमा के बुनियादी ढांचे में सरमाकारी की हौसला अफजाई करना है। प्रसार भारती के चेयरमैन पुरसुन जोशी की सरबराही में एक आला सतह स्टडी ग्रुप तश्कील दिया गया है जो भारतीय सिनेमा को दरपेश चैलेंज और मौके का मुताला करेगा। ये शोबे को मजबूत बनाने के तरीके तजवीज़ करेगा और भारतीय फिल्मों को आलमी सतह पर ज़्यादा मुसाबकती बनाने के लिए इकदाम की सिफारिश करेगा। चिराग झा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
0: कौमी राजधानी खत्ता दिल्ली में वोटरों के ज़ाती मालूम से मतलब फार्म घर घर जाकर तकसीम करने का अमल आज से शुरू हो रहा है। दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अशोक कुमार ने कल नई दिल्ली में नामानिगारों को जानकारी फराहम करते हुए इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बूथ सतह के ऑफिसर्स BLO आज से अगले महीने की 29 तारीख तक घर घर जाएंगे और ज़ाती तफसीलात से मुतालिक फार्म तकसीम करेंगे और अहल राय दहिंदगान से पुर किए हुए फार्म वसूल करेंगे। दिल्ली काबीना ने दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल EV पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। यकम जुलाई से शुरू होने वाली इस दूरंदेशी पर मबनी स्कीम के तहत कौमी राजधानी दिल्ली को 31 मार्च 2030 तक पूरी तरह से कार्बन के सिफर अखराज के लिए 15,000 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि ये पॉलिसी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों, खास तौर पर कार्बन के सिफर अखराज वाली गाड़ियों पर मरकूज है। इसका मकसद दिल्ली को बतदरीज आलूदगी से पाक शहर में तब्दील करना है ताकि इससे लोगों को फ़ायदा हासिल हो। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अगले 4 वर्षों में मरहलावार इस पर अमल दरामद के लिए एक जामे मंसूबा तैयार किया है। मोहतरमा गुप्ता ने कहा कि हुकूमत EV इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और साल बसाल रोड टैक्स माफ करने में 8 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का मंसूबा बना रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मजमूई तौर पर दिल्ली के लोगों को इस पॉलिसी से तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए के फवायद हासिल होंगे।
2: पूरी की पूरी पॉलिसी

0: पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है। तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान के फजाई हमलों की सख्त मजम्मत की है। इन हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 36 आम शहरियों की मौत हुई है जबकि 163 अफराद जख्मी भी हुए हैं। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की खुली जारहियत, अफगानिस्तान की खुदमुख्तारी और इख्तदार आला पर हमला और खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए बराह रास्त खतरा है। ये इकदाम पाकिस्तान के उस मुसलसल तर्ज अमल की अक्कासी करता है जिसके तहत वो अपने दाखिली मसाइल और नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए अपनी सरहदों से बाहर तशद्दुद का सहारा लेता है। ताहम ऐसी कोशिशें बेसूद साबित होंगी। भारत ने हमले में हलाक होने वालों के अहल खाना से गहरी ताजियत का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की है। भारत ने एक बार फिर अफगानिस्तान की खुदमुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत के लिए अपनी गैर मुतजलजल हिमायत का इआदा किया है। भारतीय फौज ने उन मीडिया रिपोर्टों को मुस्तरद कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में दरअंदाजी की है और वहां कैंप कायम किए हैं। भारतीय फौज ने कहा है कि ऐसी तमाम खबरें बेबुनियाद और गलत हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। मरकजी वजारत सेहत ने मरकजी हुकूमत के तमाम महकमों और इदारों को आवारा कुत्तों के हमलों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के रहनुमा खतूत पर आज से अमल करने की हिदायत की है। ये हिदायत उस वक्त सामने आई हैं जब हुक्काम आवारा कुत्तों के हमलों से निपटने, अवाम की हिफाजत और अदालती हिदायत की तामील के मकसद से इकदाम को यकीनी बना रहे हैं। तमाम मुतअल्लिका महकमों से कहा गया है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि सुप्रीम कोर्ट के रहनुमा खतूत पर मुकर्रर मुद्दत के अंदर अमल दरामद किया जाए। ये हुक्म गुज़िश्ता साल सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद आया है जिसका मकसद अवामी मकामात को खासतौर पर बच्चों और मरीजों के लिए महफूज बनाना है जहां उनका रोज़ आना जाना होता है। हर साल 30 जून को संथाल इनकलाब की याद में हूल दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर कबायली इनकलाबियों सिद्धू खानों, चांद भैरव और फूलो झानों को खिराज अकीदत पेश किया जाता है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: झारखंड के साहेबगंज जिले के भोगनाडी गांव में हर साल हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए जमा होते हैं। 30 जून 1855 को आज ही के दिन सिद्धो और कान्हो ने भोगनाडी से बरतानवी हुकूमत और इस्तेहसाल पर मबनी सरमायादारान निज़ाम के खिलाफ संथाल हूल का आगाज किया था। कबायली तारीख के माहिरीन इस तहरीक को आज़ादी की पहली मुनज़्ज़म जिद्दोजहद करार देते हैं। मुअर्रखीन का कहना है कि तकरीबन 20,000 लोगों के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ एक मुसल्ला जिद्दोजहद का आगाज़ हुआ जिसमें संथालों के अलावा दीगर मकामी तबकात भी शामिल हुए। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: हूल दिवस के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सिद्धू कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानों को खिराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि इन शहीदों ने कबायली सोसाइटी के खिलाफ इस्तेहसाल और उनकी शनाख्त के तहफ्फुज की खातिर तारीखी जद्दोजहद की। उन्होंने मजीद कहा कि शहीदों की गिरा कदर कुर्बानी मुल्क के सभी शहरियों को तरगीब देती रहेगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हूल दिवस के मौके पर संथाल इनकलाब के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया है। वज़ीर दाखिला ने कबायली शनाख्त और मादरे वतन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वालों को याद किया। अमरीका और ईरान आबनाए हुरमुज़ से मुतालिक तनाज़े को हल करने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में बातचीत करेंगे। ये मीटिंग ऐसे वक्त हो रही है जब आबनाए हुरमुज़ के मामले पर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी एक बार फिर बढ़ गई है। आबनाए हुरमुज़ दुनिया की अहम तरीन समंदरी गुजरगाहों में से एक है जहाँ से दुनिया का तकरीबन 20% खाम तेल गुजरता है। गुज़िश्ता जुमेरात से शुरू होने वाली कशीदगी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों ने ईरान के साथ कशीदगी ख़त्म करने और ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मफाहमतनामे तक पहुंचने की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों को मुतासिर किया। फुटबॉल में कल रात अमरीका के टेक्सस के ह्यूस्टन स्टेडियम में ब्राज़ील जापान को 1-2 से हराकर फीफा वर्ल्ड के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुँच गया है। 5 बार के चैंपियन

0: ब्राजील के लिए गैब्रियल मार्टिनेली ने इंजरी टाइम में गोल किया। राउंड ऑफ 32 के एक और मुकाबले में जर्मनी और पैराग्वे का मैच एक एक गोल से बराबर रहा। इसके बाद पेनाल्टी शूटआउट के तहत मैच का फैसला किया गया। पैराग्वे की टीम ने अपने हवास पर काबू रखा और जर्मनी पर 3-4 गोल से तारीखी जीत दर्ज की। इस तरह जर्मनी टूर्नामेंट से बाहर हो गया। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज शुमाल मशरकी भारत, ज़ेली हिमालयी मगरबी बंगाल, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला और माहे के कुछ हिस्सों में शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। आइंदा 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 रोजा सालाना अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र सिक्योरिटी इदारों ने पंजाब से जम्मू कश्मीर तक यात्रा के पूरे रास्ते पर हिफाजती इंतजाम मजीद सख्त कर दिए हैं। यात्रियों की महफूज आमद और रफ्त को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज मॉक ड्रिल कर रही हैं। निगरानी के जदीद निज़ाम फ़ाल किए जा रहे हैं। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान आज से शुमाल मशरकी रियासतों का दो रोज़ा दौरा करेंगे। जनाब चौहान आसाम के गुवाहाटी में एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद आजम।
1: कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सेशल्स के दौरे को सफाए अव्वल पर नुमाया तौर पर शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई, सेशल्स के कामयाब दौरे के बाद वतन रवाना हुए मोदी। यकम जुलाई से पेट्रोल और डीजल नील घरेलू ईंधन से मुतालिक हंगामी इकदाम के खात्मे की खबर को भी उर्दू अखबार ने सफाए अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा साहब ने सुर्खी लगाई, ईरान अमरीका माहदे की पेश नज़र हुकूमत का अहम फैसला। राजस्थान हरियाणा आबी तनाजे पर समझौती खबर को भी अखबार ने नुमाया तौर पर शाया किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई, तकरीबन 3 दहाइयों पुराना मसला हल। दिल्ली समेत 5 रियासतों कर्नाटक, मेघालय, झारखंड और महाराष्ट्र में आज से SIR के आगाज़ की खबर को भी अखबार ने अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई, इलेक्शन कमीशन की तमाम शहरियों से ताउन की अपील। अखबारों में शाये होने वाली अहम बैनुल-अक़वामी खबरें इस तरह, अमरीका और ईरान हमले रोकने और मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर मुत्तफिक।
0: आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। मरकजी हुकूमत ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की फरोख्त और तकसीम पर आयद RC पाबंदियां खत्म करने का फैसला किया है। वज़ीरे आला शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि मगरबी बंगाल सरकार रियासत में यकसां सिविल कोड नाफिज करेगी। इत्तला'आत और नशरियात की वजारत ने भारत की फिल्म इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए अहम फैसलों का ऐलान किया है। दिल्ली हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों से मुतालिक पॉलिसी को मंजूरी दी है। 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक गाड़ियों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से मुस्तस्ना करार दिया गया है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान के फजाई हमलों की सख्त मजम्मत की है। इन हमलों में 36 शहरी हलाक जबकि 163 अफराद जख्मी हो गए हैं। अमरीका और ईरान आबनाए हुरमुज से मुतालिक तनाज़े के हल के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में बातचीत करेंगे। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाए। कल से एक दिन में अधिकतम डीजल खरीदने की सीमा होगी समाप्त। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात। 53,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 5 प्रमुख सड़क और पुल परियोजनाओं को मंजूरी देने पर बनी सहमति। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के तबादले के लिए अगले सप्ताह से शुरू होगी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। और पंजाब के जालंधर में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण समेत कुल 4 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर कल से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। एक रिपोर्ट।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने कीमत तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन खबरों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि पेट्रोल पंपों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। राज्य की 5 प्रमुख सड़क और पुल परियोजनाओं को जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की संभावना है। लगभग 53,000 करोड़ रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं की लंबाई 412 किलोमीटर है। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ हुई बैठक में इस पर सहमति बनी। बैठक में पटना पूर्णिया मार्ग, वाराणसी कोलकाता कॉरिडोर के 2 पैकेज, गंडक नदी पर पुल, मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी राष्ट्रीय राजमार्ग और अनिसाबाद दीदारगंज एलिवेटेड रोड सहित अन्य परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने और समयबद्ध निर्माण पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से बिहार में आवागमन सुगम होगा और पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार तथा संपर्क को भी बढ़ा

हवा मिलेगा। प्रदेश में 60 मीटर से 250 मीटर लंबे 479 पुलों की भार क्षमता और संरचनात्मक स्थिति का वैज्ञानिक आकलन कराया जाएगा। पथ निर्माण विभाग ने अगले 6 महीने में सभी चयनित पुलों का सेफ्टी ऑडिट और हेल्थ कार्ड तैयार करने का लक्ष्य रखा है। विभाग के अनुसार पुलों की तकनीकी जांच IIT पटना, IIT दिल्ली तथा अन्य इंजीनियरिंग संस्थानों से कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर जरूरत के अनुसार पुलों की मरम्मत और अन्य आवश्यक कार्य किए जाएंगे। गौरतलब है कि राज्य में 250 मीटर से अधिक लंबे 85 पुलों की जांच पहले से ही IIT पटना द्वारा की जा रही है। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के तबादले का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा विभाग ने लगभग 5,88,000 शिक्षकों के रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसके तहत सभी 76,000 सरकारी स्कूलों में स्वीकृत पदों और कार्यरत शिक्षकों की उपलब्धता का आकलन किया गया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि तबादला पोर्टल अगले सप्ताह सक्रिय किया जाएगा। शिक्षक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और आवेदन प्राप्त होने के बाद 2 सप्ताह के भीतर तबादला प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि रेशनलाइजेशन से यह स्पष्ट हो गया है कि किस विद्यालय में शिक्षकों की कमी है और कहां आवश्यकता से अधिक शिक्षक पदस्थापित हैं। इससे छात्रों की संख्या और विषयवार जरूरत के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित करने में सुविधा होगी। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन यानी PBGRAMJI योजना कल से लागू हो जाएगी। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 100 दिनों के बजाय 125 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। रोजगार नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता और मजदूरी के भुगतान में 15 दिनों से अधिक की देरी होने पर क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विकसित भारत GRAMJI योजना के तहत देश भर में एक समान मजदूरी दर लागू करने की मांग की है। श्री कुमार नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बिहार के लिए स्वीकृत 61 लाख आवासों की राशि शीघ्र जारी करने की भी मांग की। सम्मेलन में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बिहार में शुरू किए गए ऑन साइट जियो टैगिंग पहल को राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों में शामिल करते हुए सराहा गया। बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर सिपाही के 993 पदों के लिए आयोजित परीक्षा के दौरान फर्जीवाड़ा के मामलों में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। खगड़िया में पुलिस ने सॉल्वर गैंग अभ्यर्थियों, शिक्षकों और एक परीक्षा केंद्र के अधीक्षक समेत कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के पास से वाहन, मोबाइल फोन, ब्लैंक चेक, एडमिट कार्ड और अन्य कागजात बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार अभ्यर्थियों से परीक्षा पास कराने के नाम पर लाखों रुपए की मांग की जाती थी। वहीं हाजीपुर में एक परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षक और 2 वीक्षकों के खिलाफ परीक्षा में अनियमितता के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। नवादा में 2 अभ्यर्थियों द्वारा OMR शीट की कॉपी जमा नहीं करने के मामले में भी केस दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ मुंगेर में एक परीक्षार्थी को ब्लूटूथ डिवाइस की मदद से नकल करते हुए गिरफ्तार किया गया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। राज्य के उत्तरी हिस्सों में मॉनसून की सक्रियता से कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों में सुपौल, अररिया, वैशाली, पूर्णिया, मधुबनी, किशनगंज, दरभंगा और मधेपुरा समेत कई जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा दर्ज की गई। सुपौल के सरायगढ़ भपटियाही में सबसे अधिक 196.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने आज गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जिले के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली जिले में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इधर दक्षिण बिहार में कुछ स्थानों पर बारिश होने और बादल छाए रहने से अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है। सभी जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। इस दौरान 38.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ शेखपुरा प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। पटना का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य में बारिश के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। सीतामढ़ी जिले में वज्रपात की घटना में 1 महिला और 1 बच्ची की मौत हो गई। वहीं मुंगेर में 1 किशोरी की मौत हुई है। पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा में खेत में काम कर रही 3 महिलाएं वज्रपात की चपेट में आकर घायल हो गईं। इधर दरभंगा और मधुबनी में आकाशीय बिजली गिरने से 2 प्राचीन शिव मंदिरों के गुंबद और मुख्य द्वार क्षतिग्रस्त हो गए। मधुबनी के बाबूपरही में 1 पेट्रोल पंप की छत को भी नुकसान पहुंचा है। पंजाब के जालंधर में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता में बिहार के बॉक्सरों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 4 पदक जीते। महिला बॉक्सर प्रगति ने 64 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। वहीं 55 किलोग्राम भार वर्ग में नित्या पांडे ने भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुष वर्ग के 49 किलोग्राम भार वर्ग में वीर ने कांस्य पदक हासिल किया। 67 किलोग्राम भार वर्ग में लक्की ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता है। मोतिहारी की एक अदालत ने भूमि विवाद में हुई हत्या के एक मामले में 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही इन सभी पर 33,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। पटना की NDPS अदालत ने गांजा तस्करी के आरोप में दोषी ओडिशा के सिमलीगुड़ा निवासी दिलीप पासवान को 12 वर्ष कारावास और 1,00,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अररिया की एक अदालत ने NDPS एक्ट में दोषी रंजीत राय को 14 वर्ष सश्रम कारावास और 1,00,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। छपरा में अधिवक्ता पिता पुत्र दोहरे हत्याकांड के मुख्य गवाह पंकज कुमार राय की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना में मृतक का भाई भी घायल हुआ है। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में एक शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा पुलिस जिला अंतर्गत धना चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक से 10,00,000 रुपए मूल्य की 83 कार्टन प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ चालक को गिरफ्तार किया है। वहीं जिले के नरकटियागंज में रेलवे सुरक्षा बल ने सप्त क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस की पेनेट्री कार और उससे सटी बोगी से 62 बोतल शराब बरामद की है। इस मामले में पेनेट्री कार मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र से उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक से 400 कार्टन शराब बरामद की है। शराब की यह खेप दवा के बीच छुपाकर लाई जा रही थी। सीतामढ़ी जिले के परिहार थाना हाजत से 25,000 रुपए का इनामी अपराधी प्रभु भगत पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में ड्यूटी पर तैनात 3 चौकीदारों को निलंबित कर दिया गया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां।

0: आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है 53,000 करोड़ से अधिक की 5 परियोजनाएं स्वीकृत, सीएम और पथ निर्माण मंत्री गडकरी संग बैठक में सहमति। हिंदुस्तान ने लिखा है शिक्षकों के तबादले की बाधा दूर, पोर्टल पर अगले हफ्ते से आवेदन। दैनिक भास्कर लिखता है दरभंगा में लैंडिंग के दौरान स्पाइस जेट का टायर फटा, इंडिगो की फ्लाइट डायवर्ट। प्रभात खबर की सुर्खी है 2 जुलाई से मलाही पकड़ी तक चलेगी पटना मेट्रो। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आज अखबार की सुर्खी है बिना परिसीमन होंगे बिहार पंचायत चुनाव, आरक्षण रोस्टर पर मंत्री दीपक प्रकाश का बड़ा ऐलान। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाए। कल से एक दिन में अधिकतम डीजल खरीदने की सीमा होगी समाप्त। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात। 53,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 5 प्रमुख सड़क और पुल परियोजनाओं को मंजूरी देने पर बनी सहमति। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के तबादले के लिए अगले सप्ताह से शुरू होगी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। और पंजाब के जालंधर में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण समेत कुल 4 पदक जीते। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

KKR at 90. आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, प्रेमी थे लोग तो शादी करना चाहते थे तो अपने माँ बाप के पास ले गया लड़का, लड़की को मिलवाया कि सब मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। बोले ठीक है, इसकी जन्म पत्री मैच कर लेंगे। वो बोले भाई ये शादी तो नहीं हो सकती। क्यों क्यों नहीं हो सकती? वो लड़की तुम्हारे से बड़ी है 2 साल, तो इसमें क्या है, 2 साल के बाद शादी करेंगे। एक भाई साहब ने ऐड निकाला पेपर में, अच्छे थे एग्रीकल्चरिस्ट थे, कि आई वांट टू गेट मैरिड और एक ही शर्त है कि डाउरी में आई वांट ए ट्रैक्टर और नीचे जो है अंडरलाइन किया हुआ था प्लीज सेंड द फोटोग्राफ ऑफ द ट्रैक्टर इमीडिएटली।

0: को कितनी अहमियत दी गई है?
1: देखिए, हर जगह वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है और पूरी अहमियत भी दी जा रही है, लेकिन सवाल है कि क्या ये इतना आसान है? क्योंकि एम्पावरमेंट जब हम कहते हैं, खुद मुख्तारी की बात आप जब करती हैं, तो जाहिर तौर पे सिर्फ एक चीजें नहीं होती।
0: बिल्कुल,
1: जब आप डिसीजन मेकिंग पर पहुंचती हैं, उससे पहले आपको इल्म लेना होता है, आपको उस बने बनाए दायरे को तोड़ने होते हैं जो समाज ने बनाए हुई थी अपनी दुनिया, वो जो एक सेट नॉर्म्स है सोसाइटी की कि औरतों की जगह इसी जगह पे होगी,
2: जो एक लिमिटेशंस, बिल्कुल
1: वो लिमिटेशंस इतने गहरे हैं कि वहां से मूव
2: क्रॉस करना,
1: औरतों को निकलना, हमारी बहनों को निकलना, बच्चियों को निकलना।
2: सवाल ये है कि ये हम बहुत फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली में एक खातून को बोलने
1: जरीन में वही बात में,
2: मर्दों के बीच में बोलने की इजाजत नहीं।
1: मैं जरीन वही बात कहना चाह रही हूँ कि औरतों को कुछ किरदार, जो आपने कहा बहुत अच्छी बात कही, कुछ किरदार में आपने बांध दिया, और अभी जो मैम कह रही थी, नसीन मैम कह रही थी कि सिटीजंस, हमने उस किरदार में एक इंडिपेंडेंट औरत, एक इंडिपेंडेंट इंसान हम वहां नहीं देख पाए, हम सिटीजंस नहीं देख पाए। हमने क्या देखा? हमने उनकी बीवी देखी, उनमें बहन देखी, उनमें तमाम रिश्ते के किरदार देखे, लेकिन उनकी जमीर, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट, वो कहाँ खड़ी होना चाहती हैं, उनके सपने क्या हैं, उनकी सोच क्या है, वो कैसी दुनिया बनाना चाहती हैं, और ये चीजों की जगह नहीं मिली, जिसकी वजह से आप और हम जैसी तमाम लोग जो बैठी हैं, औरतें जो आगे आई हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके इस तरह से आगे आई हैं, तब ये एम्पावरमेंट की बात सरकार को, समाज को, और जितने जगह पे लोग बैठे हुए हैं, सारे इदारे में लोगों को समझ में आ रही है कि औरतों को अगर जगह ना दी जाए तो जाहिर है बराबरी की दुनिया नहीं बन सकती।
2: लेकिन अगर आप जरा सा बैक में जाएं तो आप देखेंगे कि हमारे हुजूर की सबसे पहली जो थी हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, उन्होंने कारोबार किया, आयशा रजी अल्लाह अन्हा, उन्होंने दर से तालीम शुरू की, रजिया सुल्तान हो, बहुत सारे मिसाल कायम कर रखे हैं, तो आज उन्हें भूल जाते हैं लोग। नसीन मैम, एम्पावरमेंट उनमें बिल्डअप करने में गवर्नमेंट कितना रोल अदा कर रही है?
3: बहुत सारे रोल अदा कर रही है, और खास कर बिहार की बात करें हम, तो आप देख रहे होंगे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है जिसमें स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं लड़कियों को, ओनली चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड के लिए अलग स्कॉलरशिप्स हैं, तो आप अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट काफी साथ दे रही है इस बात में, और हर जगह औरतों को आगे लाया जा रहा है, उनको एक जगह दी जा रही है जहां वो स्टैंड अप कर सके। और खास करके अगर एम्पावरमेंट की बात करेंगे, आप एजुकेशन
2: सबसे पहले एजुकेशन,
3: अगर इस्लाम में देखा जाए तो कुछ नहीं तो हम बेसिक नॉलेज तो हम उनको देते ही है, उर्दू अरबी से हम शुरू करते हैं, हमारी औरतें कम से कम वो उर्दू अरबी जानती है, भले अगर ज्यादा स्कूल में नहीं जा सके, प्राइमरी तक ही पढ़ सके, मगर ऐसी नहीं कि इलिटरेट चारों तरफ देखेंगे, और खास करके शाइन मैन है यहाँ पे,
2: खुद जुड़ी
3: हुई है तो वो देखती होंगी,
2: जुड़ी
3: हुई है तो उनको पता होगा। मुआशरा अगर देखा जाए तो मुआशरा बहुत चीजों से मिलता है, जैसे जो सोसाइटी में रहते हैं वो भी एक बिल्डअप करता है, तो वो असर करता है
2: कहीं ना कहीं,
3: तो एक अलग सा जो सोशल कॉन्टेक्ट हमारे या सोशल नॉर्म्स हो जाते हैं उनमें ढलना पड़ता है, तो चाहे वो रिलीजन के हिसाब से हो या पॉलिटिकल या सोशल नॉर्म्स जो है वो फॉलो करते हुए एक सोसाइटी बनती है, सारी चीजों का उसमें मैलगम होता है, मतलब सब चीज मिलजुल करके वो मुआशरा आता है और आप उसमें खड़ी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एजुकेटेड होना पड़ेगा
2: जी। सबसे बड़ी चीज ये कि खवातीन को, जिनको बोलने की इजाजत नहीं थी, आज वो अपने ही अगर उनके खिलाफ कोई बात होती है या किसी भी तरह का ईव टीसिंग वगैरह अगर कुछ सामने आता है तो अब खवातीन आवाज उठा रही हैं।
3: क्यों? क्योंकि वो एजुकेटेड हो रही हैं, वो पढ़ाई उनके साथ, वो है उनके साथ
2: जी। गवर्नमेंट ने बहुत सारे नॉर्म्स, बहुत सारे लॉज भी बनाए हैं जिनका फायदा खवातीन को पहुंच रहा है। शाइना मैम, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप खुद इसके बारे में जानती भी होंगी चूंकि आपने जमीनी सतह से काम किया है और कर भी रही है, तो वो जो लॉज बनाए गए हैं खवातीन के लिए, उनमें खुद मुख्तारी के साथ साथ उनकी सेफ्टी के लिए और उनके अर्निंग हैंड के लिए, तो वो कौन कौन से हैं और किस तरह से वो डेवलप हो रही हैं?
1: देखिए, सबसे बड़ी चीज है एक तो एजुकेशन, नो डाउट, उसमें तो काफी स्कीम्स हैं, जैसे मैम ने भी बताया अभी कि कन्या उत्थान योजना है या स्कॉलरशिप है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, तो चीजें तो है ही, लेकिन इसके अलावा सबसे पहली चीज तो ये कि जो लीडरशिप पोजीशन में औरतों का आना
2: जी
1: ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आप पढ़े हो या ना हो, लेकिन लीडर तो जैसे आप कह भी रही हैं कि सोसाइटी में अगर हमारे यहाँ भी देखें तो औरतें ही घर के डिसीजन लेती रही हैं, हमारी दादी हमारी नानी ये सारी लेती रही, तो वो फिर बाद में धीरे धीरे उन्होंने डेवलपमेंटल इश्यूज पे डिसीजन लेने के लिए वो पंचायतों में आई, तो वो गवर्नमेंट का एक बड़ा स्टेप रहा कि आपने 33% रिजर्वेशन से लेकर 50% रिजर्वेशन तक आपने लोकल गवर्नेंस में दिया। एक तो

0: वो चीजें हैं कि आप जब लीडरशिप पे आती हैं तो हालात बदलते हैं थोड़े, इसलिए बदलते हैं क्योंकि घर की चार दीवारी से आप कहीं ना कहीं पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं और पब्लिक प्लेस में आपकी बात और आपके डिसीजंस को सुनी और मानी जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है क्योंकि आधी आबादी रूरल भी है हमारी और अर्बन भी है, दोनों ही जगह इलेक्टेड वुमन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। दूसरी चीजें जो आप लॉज की बात कर रही हैं या कानून की बात कर रही हैं, तो पहले ये माना जाता था कि घर के अंदर के लड़ाई झगड़े, मियां बीवी के लड़ाई झगड़े, प्रताड़ना, अलग अलग तरह के तंग करना, ये सारी चीजें जो है ये घरेलू मसला है। लेकिन आपको देश के कानून ने कहा बिल्कुल नहीं, औरतों पे जुल्म घर के चार दीवारी के अंदर हो या चार दीवारी के बाहर हो, ये जुर्म है और ये पर्सनल मैटर नहीं है, ये पब्लिक मैटर है और ये देश का मैटर है, सिटीजंस का मैटर है। तो इसलिए हमारे बीच में फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया 2015, जिसमें ये है कि कोई भी ख्वातीन जिनको लगता है कि उन्हें किसी भी तरह की एक्सप्लॉइट है, टॉर्चर हो रही है, मेंटल, फिजिकल, इकोनॉमिकल किसी भी तरीके से, तो वो हेल्पलाइन उनके लिए मौजूद है, वो हेल्पलाइन नंबर 1 पे वो कॉल कर सकती है, उनके बिहाफ में अगर कोई और भी करना चाहे तो उनकी खबर दे सकती है। मतलब अब डरने की बात नहीं है कि घर के अंदर जो मुझे मारा गया तो वो घर का मसला है।
1: लेकिन तो एक चीज और भी है साथ में, जब वो बाहर निकल रही हैं, जॉब भी कर रही हैं, उनकी सेफ्टी के तौर पर एक्ट और बनाए गए, उसमें एक पॉक्सो भी है जिसका
0: नहीं, पॉक्सो तो बच्चों के लिए है, लेकिन पॉश है, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस एट वर्क प्लेस, तो ये बहुत बड़ी चीज है। ये एक्चुअली क्या होता है ना कि वही जो शुरू में कह रही थी कि औरतों की लड़ाई कहीं खत्म एक जगह नहीं होती है, जब आप घर से बाहर निकले और आपने खुद से काम करना शुरू किया, आप एम्प्लॉयमेंट में जुड़ रही हैं, तो वहां सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू होता है। और जो नजरिया है समाज में खास तौर पे औरतों के लिए जो नजरिया है, उसमें कुछ जो सेट नॉर्म्स बनाए गए, उसमें औरतों को कमतर देखना, उनको ऑब्जेक्ट के रूप में देखना, ये चीजें कहीं ना कहीं माइंडसेट में पैट्रियार्कल माइंडसेट है लोगों के। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो एक्ट बनाया है उसके तहत हर एक, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो, गैर सरकारी दफ्तर हो, प्राइवेट कंपनीज हो, हर जगह पर आपको एक कमेटी बनानी होगी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है, ICC होती है, उसके बारे में चस्पा होना चाहिए दीवार पे कि कौन है जो उनकी बात को सुन सकते हैं। मैं ओपन में नहीं कह सकती, मैं इम्प्लॉई हूँ,
1: बहुत सारी बातें होती
0: हैं, बिल्कुल मैं अपने ही कुलीग के बारे में ओपन में नहीं कह सकती। तो ICC जो है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, उनके पास वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है और उनकी सुनवाई होती है बजाबता, और उसमें सजा वगैरह सारी चीजों का प्रोविजन है। तो ये एक बड़ा स्टेप है कि घर के बाहर भी औरतों को सिक्योरिटी और उनको एक इज्जत देना, उनको बराबरी के लाज देने के लिए।
1: सारा मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ख्वातीन खुद मुख्तारी या खुद कफीली को हमारे माशरे में किस नजरिए से देखा जा रहा है?
2: पहले जो भी रहा वो नजरिया, मगर अब लोगों में चेंजेस आ रहे हैं, बच्चियों को लोग पढ़ा रहे हैं, उनको इनकरेज कर रहे हैं, बच्चियां बाहर जा रही हैं पढ़ने के लिए, अपने घरों से निकल करके दूसरे शहरों में जा रही हैं और पढ़ रही हैं और जॉब्स में जा रही हैं, और पेरेंट्स का सपोर्ट है, रिश्ते में आ रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि बच्चे क्या कर रही है, प्रोफेशनल कुछ एजुकेशन है कि नहीं, तो बहुत सारी चेंजेस आई हैं। मैं जो देख रही हूँ अपने जो एडमिशन का जो डेटा है फीमेल्स का, कभी कभी आप एग्जाम सेंटर्स में जाएंगे तो लगेगा कि ये कोई वुमेन सेंटर है क्या। हाँ। खास करके ना जैसे BA वगैरह के बाद, तो ग्रेजुएशन के बाद शादियां हो जाती हैं, तो इग्नू से तो डिस्टेंस एजुकेशन है तो बच्चियां जुड़ती हैं उनसे।
1: आप एक एजुकेशनिस्ट हैं और वो एक सोशलिस्ट है, इसलिए आप लोग वो एक चीज देख रही है। मैं जहाँ तक एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं एक चीज जो देख रही हूँ कि आज भी जो लोग मेन स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं वो तो ठीक है और वो जोड़ भी रहे हैं, लेकिन अगर आप विलेज की सतह पर यानी देही सतह पर कभी जाते हैं, जैसे शाहिना जाती होंगी, तो उन्हें पता है कि जो गांव की ख्वातीन है वो आज भी मेन स्ट्रीम से दूर हैं।
2: मेरा जो एक्सपीरियंस है 33 साल का एजुकेशन लाइन में, हाँ। और खासकर इग्नू से रहे साथ में, तो उसमें ये रहा कि हम लोग तो गांव-गांव तक एजुकेशन एट योर डोरस्टेप्स। आप तीन माने, जैसे बिहार के अगर हम बात करें तो हमारा जैसे भागलपुर है, बांका है, मुंगेर है, उस तरह के वहां सब और भी अंदर से गांव-गांव के लोग आकर जुड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जुड़ रहे हैं, PG कर रही हैं, सोचिए
1: जो अभी भी हैं जो कटे हुए उनको किस तरह, ये हमारे माशरे का नजरिया, यही मैं पूछना चाह रही हूँ, क्यों अभी भी कि नहीं लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, आज भी गांव में है इन चीजों को, मैंने देखा है कि उनका नजरिया आज भी है वैसा,
2: उन्हें सिर्फ एक ही परसेंटेज अब क्या है और पहले क्या
1: गया, बहुत
2: बहुत कम हो गया,
0: नहीं नहीं
2: क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कीम्स आ रही है ना,
1: जा सकता
2: है? नहीं, एकदम नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स आ गई है ना।

0: हमें चौंकाने वाली चीजें हैं, क्योंकि हम और आप नसरीन मैम जिस जगह पे या जरीन आप जिस जगह पे बैठी हैं, हमें लगता है कि हम एक अलग दुनिया हो रहे हैं, लेकिन शायद वो स्ट्रगल और वो दूरी है जो गैप बहुत
1: वही मैं कह रही हूं।
0: क्योंकि आप जब गांव में जाएंगी तो लड़कियां जिस तरीके से स्ट्रगल कर रही हैं, क्योंकि जहालत है, आप इसको इनकार नहीं कर सकती। और जो बंदिशें हैं, चाहे वो रिलीजन के नाम पे बंदिशें हैं, चूंकि ये गलत तरीके से फैलाई गई है। जैसे कि शुरुआत में जरीन आपने कहा ना कि खतीजा रजी अल्लाह अन्हु का नाम लिया आपने, सबसे बड़ी बात ये है कि क्या हमारे यहाँ जो ये बड़े बड़े नाम थे जिनके पीछे एक बड़ी कहानी थी, उस कहानी को नरेट कर रहे हैं सोसाइटी में, क्या नहीं हो पा रहा?
1: नहीं हो पा।
0: जो नरेट कर रहे हैं वो कोई पैट्रियकल माइंडसेट के लोग नरेट कर रहे हैं, जिनके नजर से मर्दों की दुनिया एक अलग होती है जो बाहर जाके पढ़ सकते हैं, कर सकते
1: जी,
0: हैं
1: जी,
0: और जब लड़कियां निकल रही है तो आप जैसे इप टीसिंग कह रही हैं, लड़कियां पढ़ाई क्यों छोड़ रही हैं? क्योंकि रोज बरोज इन्हीं चीजों से निकल रही हूँ। आज भी हमारी लड़कियां, अगर 25 लड़कियां हैं तो 25 में 20 गर्ल्स इसलिए स्कूल छोड़ रही हैं क्योंकि आज भी रास्ते में वो कहती हैं कि मोलेस्टेशन होता है, इप टीसिंग होती है, और फिर इसके लिए हमें स्कूल से बात करना, गांव के व्हाट्सएप से बात करना होता
1: है।
0: तो ये चीजें हैं। दूसरी बात की चूंकि बाहर जाने का रिस्क और इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है, हम तो हैं ये तो मानते हैं, मुस्लिम अगर सोसाइटी की बात करें आप, तो जितने जिस लेवल पे हमें होना चाहिए था, हमारे यहाँ हुनर कम है, हुनर का लिमिटेशन सिलाई कढ़ाई में बांध दिया गया।
1: जी जी,
0: नसरीन बहुत कम बन पाई हैं, मैं आपको सलाम करती हूँ, जरीन बहुत कम बन पाई, मैं उनको सलाम करती हूँ कि आप लोगों ने लड़ा और सैल्यूट है। आप गाँव में जाए, सिलाई से आगे लड़कियां नहीं निकल पा रही है हमारी लड़कियां। सरकार भी जब कोई स्कीम लाती है तो कहती है तलाकशुदा मुस्लिम औरतों के लिए सिलाई मशीन।
1: हाँ,
0: आप कहाँ बोलते हैं सारी मुस्लिम लड़कियों के लिए या औरतों के लिए?
1: हाँ।
0: आप जनरलाइज कर रहे हो आप, लेकिन खासतौर पे आप माइनॉरिटी सेक्शन को भी आप देखें ना, उनके लिए
1: क्या की बात नहीं है, सबके लिए कीजिए ना। अगर सब
0: नहीं, सबके लिए तो होने भी चाहिए, लेकिन अगर हम एक खास अपने इधर माइनॉरिटी गर्ल्स के लिए भी बात करें, स्ट्रगल ज्यादा है दोनों के लिए, दोनों के लिए है, लेकिन हम एक मार्जिनलाइज में भी मार्जिनलाइज हो जाते हैं।
2: आपने देखा होगा मगर डेवलपमेंट तो हुआ
0: है,
2: स्कीम्स आ रही हैं, फ्री स्कूलिंग है,
0: उसका फायदा ले रही हैं,
2: उनका फायदा ले रही हैं पहले से,
0: वो एसर्टिव है, वो क्या है ना कि उन फायदा को लेके अब लड़कियां आगे निकल
2: रहे हैं ताकि वो जाए और वो फायदा उठा सके।
1: मैं वही बता रही हूँ आपको कि पूरे मुआशरे की बात कर रही हूँ कि पूरे मुआशरे में आज भी देही सतह पर अगर लड़कियां ड्रॉप आउट हो रही हैं तो वो सिर्फ सिक्योरिटी के एतबार से ही हो रही हैं, क्योंकि आज भी ईव टीसिंग और आज भी मॉलेस्टेशन वगैरह होता है, और जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बेटियों को पढ़ा रहे हैं, वो कहीं पर अचानक से रुक जाते हैं और वही लड़कियां निकल पाती हैं जो खुद फाइट करती हैं।
2: मुझे लगता है कि सोसाइटी में काफी चेंजेस आए, मैंने देखा है, और लोग सपोर्ट कर रहे हैं, फैमिली सपोर्ट है, जो आप जो बात कर रहे हैं, जो 10 साल पहले का सिनेरियो देखिए, आज के बाद देखिए, तो गवर्नमेंट ने बहुत साथ दिया है,
0: इवन
2: सोसाइटी चेंज हुई है उस हिसाब से, क्योंकि बहुत फैसिलिटीज आई हैं, बहुत सारे लॉज आ गए और लोग फायदा उठा रहे हैं, तो हम वो वाले ना देकर के आज के प्रेजेंट सिनेरियो को देखें तो डेवलपमेंट हुआ है।
0: देखिए क्या है, सोसाइटी ये नहीं कह सकते कि स्टक है, जो बात आप कह रही हैं एग्री हूँ कि स्ट्रक नहीं है, स्ट्रगल ज्यादा हो रहा है, कर रही हैं, हमारे सामने ऑप्शंस आ गए हैं। पहले बीच का ऐसा दौर था जब ऑप्शंस नहीं थे हमारे पास, औरतों के सामने समझ भी नहीं आती थी दुनिया क्या है, वो ऑप्शंस आ गए हमारे पास, सपोर्ट में हमारी सोसाइटी के कई लोग आ रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सामने आ रहे हैं, आपकी स्टेट गवर्नमेंट आती है, नेशनल गवर्नमेंट आती है, ये सारी चीजें हैं। बावजूद इसके कि वो जो रफ्तार होनी चाहिए उसमें भी धक्का देने की जरूरत
2: है, शुरुआत तो हुई है, ये फ्लो कितना तेज चलेगा, आगे चलेगा, वो डेवलपमेंट होगी, क्योंकि जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आएंगे नेचुरली गवर्नमेंट उसका साथ देगी, उसी हिसाब से रूल्स आएंगे, लॉज आएंगे, गवर्नमेंट के रूल्स हैं, रेगुलेशंस जो भी आए हैं वो पब्लिक तक पहुंचने चाहिए कि ये सब तुम्हारे लिए बनाए गए हैं, जो भी लॉज हैं, रूल्स हैं, वो लोगों तक डिसमिनेट हो, लोगों तक पहुंचे, तभी तो उसका फायदा उठा सकते
1: हैं। थाना में ही महिला डेस्क बना दिए गए, हर थाने में महिला डेस्क है, लेकिन उसके बारे में लोगों को भले ही थोड़ी कम अभी जानकारी है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। इस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट का पूरा इंतजाम

0: गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छा
1: उसकी
0: इंतजाम किया,
1: प्रमोशन की ज्यादा
0: उसकी
1: जरूरत
0: प्रमोशन
1: है
0: की
1: लोगों
0: जरूरत
1: तक,
0: है।
1: वो बात ग्रास रूट लेवल तक ये
0: देखिए
1: सारी चीजें
0: गवर्नमेंट
1: पहुंचनी चाहिए
0: सारी चीजें
1: पहुंचानी
0: हैं, लेकिन
1: चाहिए।
0: इम्पावरमेंट जहां तक शुरुआत होगी वो सेल्फ से तो होगी,
2: सेल्फ
0: हमें
2: से ही होगी।
0: हमें सबसे पहले जिस चीज पर जहां पहुंचनी है वो है आपको सेल्फ अवेयरनेस हरेक में होनी चाहिए,
2: सेल्फ अवेयर।
0: जैसे ही आप सेल्फ अवेयर होते हो तब आप डिमांडिंग पोजिशन में आते हो, तब गवर्नमेंट ये सारी चीजें, डॉट्स आपके पास है, हर कुछ है, जोड़ना तो हमें खुद पड़ेगा,
2: खुद पड़ेगा।
0: तो सबसे पहली चीज जो होती है वो हर एक औरतों के लिए, हर एक खातिन के लिए ये होती है कि आप सेल्फ अवेयर हों, आप जाने, अगर आपको नहीं मालूम है आप पूछे, आप सवाल करें, सिस्टम से सवाल करें, सोसाइटी से सवाल करें, घर में सवाल करें।
2: बिल्कुल,
0: जब बेटियां सवाल करती हैं तभी फादर भी सोचते हैं। अगर बेटियां सवाल ना करें तो शायद फादर भी एक बहादुर फादर नहीं बन सकते, वो ट्रेडिशनल फादर बन के रह जाएंगे।
2: बहुत अच्छी बात,
0: सोसाइटी में तो सबका साथ चाहिए और हमें लगता है कि सब कुछ हमारे सामने
2: और यही
0: है,
2: हमारे मुआशरे का नजरिया होना चाहिए। अभी मैंने जो सवाल किया था उसका बहुत सटीक जवाब ये है, सही आपने कहा कि यही मुआशरे का हमारा नजरिया होना चाहिए कि हम सवाल करने के लायक बनाए। मैम एक सवाल आपसे था कि खवातीन खुद मुख्तारी में मर्दों का क्या किरदार होना चाहिए?
1: बिना फैमिली के सपोर्ट के आप कुछ नहीं कर सकते, फैमिली के सपोर्ट हर जगह जरूरी है।
2: बिल्कुल,
1: छोटे बच्चे से जैसे जब आप शुरुआत करते हैं आपके पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए, जो इन लॉज हैं आपके हस्बैंड है खास करके, उनका सपोर्ट बहुत जरूरी है। जरूरत यह है कि आप डिमांडिंग हो, आपका सेल्फ डिटर्मिनेशन हो, ये सब चीजें अवेयरनेस हमें जगानी होगी, माशा नेचुरली उसका साथ देगा, ऐसा नहीं है।
2: एक कहावत है ना कि भाई हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, उसी तरह से हर कामयाब औरत के पीछे भी मर्द का हाथ होता है, चाहे वो मर्द जिस रूप में भी हो, वो उसके फादर के रूप में हो, वो उसके शौहर के रूप में हो, या भाई हो, जो भी हो, लेकिन सबकी मेंटालिटी एक जैसी नहीं होती है, सब लोग ऐसा।
1: मेरा ये मानना है कि आप जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो ये नहीं कि आप अपनी फैमिली छोड़ दें, कामयाब औरत वही है जो फैमिली, अपने जॉब, अपने जो भी काम है उसका सब साथ लेकर के चले, तभी वो कामयाब है। मैं उसे नहीं मानती जो अपने फैमिली को छोड़ करके आगे बढ़ती चली जा रही है। आपको उस मुआशरे में अपना कंट्रीब्यूशन देना है तो एज अ होल देना है। बस एग्जांपल्स होंगे जहाँ पर उन लोग जॉब को ज्यादा तरजीह देती हैं, फैमिली को नहीं देती हैं, मगर खूबसूरती वही है ना, जहाँ पे आप सारे रिश्तों को निभाते हुए अपने काम में आगे बढ़े।
0: वो अच्छी बात है, लेकिन मर्द और औरत की जब आप बात करते हैं तो दो डिफरेंट प्लेनेट की बात आप नहीं करते।
2: बिल्कुल,
0: क्योंकि हुआ यही है, औरतें यूं क्यों पीछे हुई, क्योंकि मर्दों ने अपनी दुनिया बना ली, हर चीज को अपने तरीके से वो आगे ले गए, इंटरप्रेट करते गए, औरतें पीछे छूटती चली गई। अब अगर हम विमेन एम्पावरमेंट में कहते हैं कि औरतें आगे चला जाए मर्द पीछे हो जाए, तो भाई दोनों, ये तो हो नहीं सकता। हम इक्वालिटी की बात करते हैं, हम इक्वालिटी की बात करते हैं, हमारे जो देश का कानून है वो भी यही कहता है, हमारी फंडामेंटल राइट है। हम ये बात करते हैं कि औरतों की डिसीजंस को तवज्जो दी जाए, उनको इज्जत दी जाए, उन्हें अपने बराबर समझा जाए। तो जब आप ये कहते हैं तो जाहिर तौर पे किसी को बनाने में किसी के हाथ नहीं होती, हम मिलकर दुनिया बनाते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ फैमिली मिलकर बनती है, एक अच्छी खूबसूरत फैमिली मिलकर होती है। अगर आप एक किसी को किसी के दायरे में बांधते चले जाएंगे, अगर औरतों ने भी मर्दों के दायरे बना देते हैं कि भाई आप सिर्फ इतना ही काम करो, उसके अंदर आप घर के किसी डिसीजन में नहीं लोगे, तो शायद मर्द भी इस हिसाब से नहीं होते। तो हमें ये जो फासला है ना मर्द और औरत के बीच,
2: इसको खत्म करना,
0: एम्पावरमेंट यही कह रहा है ना कि आप मिलकर चलना है, आपको ह्यूमैनिटी, आपको इंसानियत की बात समझनी है। दूसरी एक चीज मैं कहना चाहूंगी, औरतों को एम्पावर करने के लिए, इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करने के लिए हम कोशिश करते हैं, मर्दों को किचन की दुनिया में जाने से कौन रोक रहा है? कौन सा कानून बना है कि भाई आप किचन में नहीं जाओगे? अब वो वक्त है कि जब आप इस डिस्कोर्स को कर रहे हैं
2: जब
0: तो जाहिर तौर पे बराबरी से काम का डिविजन बंद कर दे।
2: अच्छा एक सवाल,
0: एक मिनट, नाइट शिफ्ट में लड़कियां काम कर रही है, सिक्योरिटी आप इसलिए दे रहे हो क्योंकि पूरी दुनिया की सोच बदल गई औरतों को लेकर, तब आपको सिक्योरिटी देना पड़ा, नहीं तो सिक्योरिटी नहीं चाहिए,
2: नहीं चाहिए थी।
0: आप मर्दों, मैं औरत हूँ कोई बात नहीं, मिलके दुनिया चल रही थी, वो तो एक अलग पर्सपेक्टिव था। तो अब आपको वो फासले मिटाने की जरूरत है, तभी मुकम्मल एम्पावरमेंट की हम बात करेंगे कि औरतों के काम को इज्जत दीजिए, उनकी जो ख्वाहिश है उनको आपको समझनी होगी और उनके साथ कदम से कदम चलाना होगा।
2: सारा मैम एक आखिरी सवाल मैं ये करना चाहूंगी कि खवातीन खुद मुख्तारी यानी वुमेन एम्पावरमेंट की जब बात आती है हमें लगता है कि हाँ हम कुछ हैं, और वाकई हम कुछ नहीं है, हम सब कुछ हैं। हकीकत यह है कि हम एक माँ हैं, एक बीवी हैं, और उससे भी बड़ी बात है कि इस माशरे की, अपने घर की तो मजबूत कड़ी है ही, इस माशरे की भी मजबूत कड़ी है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दिमाग ही नहीं है, एक नर्म दिल भी है, तहम्मुल से काम करने वाला, ایک مزاج بھی ہے. تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم

0: मैसेज को अपने मुआशरे में कैसे एक एक ख्वातीन तक पहुंचा सकते हैं।
1: एक एक बच्चे को हमें एजुकेट करना है,
0: बिल्कुल,
1: और ये हमारा अगर मिशन होगा तो नेचुरली वो एम्पावरमेंट अपने साथ ही आए, लोगों का नजरिया बदलेगा और एक एम्पावर्ड सोसाइटी बनेगी। तो आगे
0: शाहिना आप भी कुछ बताए।
2: सिनेमा में सही बात कहा, इल्म के बिना कुछ नहीं हो,
1: कुछ
2: सकता।
1: नहीं,
2: तो इल्म की रोशनी चाहिए, रोजगार की तरफ बढ़े, दायरे तोड़ने पड़ेंगे, घबराना नहीं है। मालूम है कि बहुत मुश्किल है ये सफर, लेकिन जहाँ ठहर जाएंगे रास्ते रुक जाएंगे, क्योंकि हमें अभी लड़ना है और बढ़ना है, क्योंकि हमें सिर्फ माँ बेटी बहन के आगे शाहिना भी बनना है, जरीन,
0: बिल्कुल,
2: बनना
0: जरीन भी बनना
2: तो जाहिर तौर पे
0: सारा
2: लड़ना है, झगड़ना है, उठना है, गिरना है, लेकिन आसमां बहुत है हमारे सामने और हमें उस तरफ बढ़ना है। जहां भी ऑप्शन दिखे आगे बढ़िए, सवाल कीजिए, किसी भी चीज को सर झुका के मत मान लीजिए कि ये फलाने कहा था, ये फलाने कहा था, ये उसने उन्होंने बनाया, ये इन्होंने बनाया। सवाल कीजिए, अगर आपको लगता है यहाँ सवाल करना है तो जाहिर तौर पे सवाल करेंगे, जवाब मिलेगा। सिस्टम से सवाल कीजिए, घर में सवाल कीजिए, और खुद को आगे बढ़ाने के लिए अपने अंदर एक चिंगारी हर समय जगा कर रखिए। ये मान लेना कि मेरी दुनिया यहाँ खत्म हो गई, मेरी शादी हो गई, मेरी दुनिया खत्म हो गई, बिल्कुल नहीं। शुरुआत आप कहीं से भी कर सकती
0: जी,
2: है ना। बच्चे हो गए, जैसे आपने कई एग्जांपल दिया, मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, छूट गई, बिल्कुल नहीं, आप शुरुआत कीजिए। सारी चीजें आपके पास, सपोर्ट स्ट्रक्चर खड़ा है, अब आपको खुद से अपने कदम बढ़ाने होंगे, अरे आपको तोड़ने पड़ेंगे।
0: चलिए, बहुत
2: ये हौसला बनाए रखना है,
0: बहुत सारी बात अच्छी। इसी पर मुनीर नियाज़ी का एक शेर और है, शहर का तब्दील होना शाद रहना और उदास, शहर का तब्दील होना शाद रहना और उदास, रौनकें जितनी यहाँ है औरत के दम से। बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों से ख्वातीन खुद मुख्तारी पर बात करके, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी अच्छी बातें सामने आई, और मैं उम्मीद करूंगी कि हमारा जो ये कन्वर्सेशन है, हमारी ये गुफ्तगु है, ये हर एक ख्वातीन तक पहुंचे, ताकि वो भी खुद मुख्तार बने, खुद कफील बने, और सबसे बड़ी चीज है कि वो अपने आप को समझें कि हम क्या हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
3: सामिन, आप सुन रहे थे मुज़ाकरा। मुज़ाकरा का मौजू था ख्वातीन खुद मुख्तारी और हमारा मुआशरा। प्रोग्राम में अब सुनिए नात।

प्रोग्राम में आप सुन रहे थे नात जफर हुसैन कव्वाल और साथियों की आवाज़ में। सामईन अब सुनिए गज़ल मेहंदी हसन और तरन्नुम नाज की आवाज़ में।

सामईन, मेहंदी हसन और तरन्नुम नाज की आवाज़ में गाए हुए इस गज़ल के साथ ही हमारा उर्दू प्रोग्राम अंजुमन अब यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।

अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम अंजुमन। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी। कार्यक्रम रसमंजरी में सबसे पहले सुनिए जसमिन संदलास और सतिंदर सरताज की आवाज़ में धुरंधर द रिवेंज फिल्म के इस गीत को। संगीत शाश्वत सचदेव का है और गीतकार है सतिंदर सरताज।

कार्यक्रम रसमंजरी की अगली पेशकश मोनाली ठाकुर और मीत ब्रदर्स की आवाज़ में, फिल्म है बागी। गीत के बोल कुमार ने लिखे हैं और संगीत मीत ब्रदर्स का है।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमंजरी। कार्यक्रम में अगला गाना सुनिए, श्रेया घोषाल और नक्स अजीज की आवाज में। फिल्म है भारत, संगीत विशाल शेखर का है और गीतकार हैं इरशाद कामिल।

कार्यक्रम रसमंजरी में अगला गाना पेश है श्री राम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में। फिल्म है खिलाड़ी 786, संगीत हिमेश रेशमिया का है और गीतकार हैं समीर अंजान।

नक्स अजीज और ऋतु पाठक की आवाज़ में, संगीत प्रीतम का है और गीतकार हैं अनुपम अमोद।

कार्यक्रम रसमंजरी में अगला गाना सुनिए, रोबोट फिल्म से ए आर रहमान की आवाज़ में। संगीत ए आर रहमान का है और गीतकार हैं स्वानंद किरकिरे।

0: इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है भेंट वार्ता पर आधारित कार्यक्रम इनसे मिलिए। कार्यक्रम में आप सुनेंगे आईपीएस डॉक्टर सरोजनी लकड़ा से धर्मेंद्र राठौर की बातचीत।
1: गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं आज हमारे साथ हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपनी मेहनत, संघर्ष और लगन से नई राहें बनाई। आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स हैं, प्रेरणादायक शख्सियत मौजूद हैं, डॉक्टर सरोजनी लकड़ा, आईपीएस। खेल के मैदान से अपनी शुरुआत करने वाली, स्पोर्ट्स कोटा से आप पुलिस में भर्ती होकर अपनी मेहनत, समर्पण और लगन के बदौलत आईपीएस बनने तक का इनका सफर है। ये केवल कहानी जो है इनकी, केवल उपलब्धि ही नहीं बल्कि साहस, दृढ़ता और निरंतर प्रयास की कहानी है। श्रोताओं आपको बता दें कि आप जर्मनी से ग्रेजुएट भी किए हैं, स्पोर्ट्स कोटा में मास्टर डिग्री आपने लिया है। आपकी प्रेरणा जो है, लक्ष्य है और चुनौतियां क्या क्या हैं, आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं, इस तमाम विषयों पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर सरोजनी लाकड़ा जी का। मैम स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद।
4: मैम सबसे पहले हम आपकी प्रारंभिक जीवन, जैसा कि खेल के जो है दुनिया में, उसमें जाने के बाद लोग ज्यादातर उससे फिर निकल नहीं पाते और वहीं के बाद अपनी जो उनकी है शुरुआत भी होती है और खत्म होती है, लेकिन आपकी जो कहानी है काफी प्रेरणादायक है। तो हम जानना चाहेंगे कि बचपन में जो खेलों के प्रति आपका जैसे रुझान शुरू से ही रहा, बचपन से रहा, कैसे विकसित हुआ है?
5: गांव में जो मेरी बचपन बीती है वो तो खैर बहुत ही यादगार है, मेरे लिए यादगार पल है।
4: जी जी।
5: गाँव में कई तरह से गेम वगैरह खेलते ही है, जो आज भी वो गेम खेलते हैं, लेकिन आजकल मोबाइल का दुनिया में थोड़ा कम हो गया है, पर उस समय हम

0: लोगों के लिए मनोरंजन का साधन खेल ही हुआ करता था।
1: एकमात्र साधन खेल था जी, बिल्कुल।
0: लेकिन हाँ, तो वहाँ वो ये नहीं रहता है कि खेल मैं खेलूंगी या तो इसके बाद मैं ये करूंगी वो करूंगी, नहीं,
1: जी
0: वो
1: जी
0: जस्ट नेचुरल जो खेल खेले जाते हैं तो
1: जी
0: वहीं
1: जी
0: से मेरी रुझान मतलब शुरू से ही खेलते
1: तो
0: था।
1: आपके परिवार में जैसे खेल को लेकर जैसे आपने ही शुरू की, या फिर कोई प्रेरणा स्रोत, या फिर आपके परिवार में खेल पहले ही से जुड़ा हुआ, कैसे खेल के तरफ ही आप आई?
0: हाँ, वो खेल में अगर हम मेरे माता पिता जी की तरफ जाएं
1: जी
0: तो
1: जी
0: माँ उस समय थ्रोबॉल खेलती थी और पिताजी हॉकी खेला करते थे। तो
1: जी
0: उस समय जो उनके दायरे में जो लेवल पे था तो उतना ही तो खेलते थे। आगे मेरे बड़े भैया स्वर्गीय ज्ञान प्रकाश लकड़ा
1: जी जी
0: भी एक इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी रहे थे, 800 मीटर के अच्छे रनर रहे थे।
1: जी जी
0: तो मेरे भैया से मैं ज्यादा प्रेरित हुई थी गेम के प्रति।
1: जी खेल खेलते खेलते आप स्पोर्ट्स कोटा के तहत जैसे कि आपके पुलिस में भर्ती हुई पहली, तो वहां से आपकी यात्रा शुरू आपने किया और लगातार आगे आप बढ़ते रहे। तो शुरुआत की अगर हम बात करें तो किस तरह से खेल से लेकर नौकरी की तरफ आपका ये जो करियर मुड़ा?
0: और जैसे मैंने बताया कि गांव में मेरी रुचि तो खेल के प्रति था ही,
1: जी जी
0: तो गांव के स्कूल में जैसे मैं 6th क्लास कंप्लीट की तो 7th क्लास के लिए मैं मेरे गांव से, रामसिरी गांव है, वहां से महुआनार जब बोर्डिंग स्कूल में मेरी दाखिला हुई तो वहां पहली बार मैंने वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता जो स्कूल का हुआ करता है तो उसमें
1: जी
0: मैं 4 ग्रुप में से 1 ग्रुप में थी। प्रदर्शन थी, काफी प्राइज मैंने जीता था और हमारे जो प्रिंसिपल टीचर्स बड़ी दीदियां सभी से इतना शाबाशी मुझे मिली थी। तो वहां मुझे बहुत ही खुशी लगा कि ऐसा भी गेम होता है, क्योंकि मैं पहली बार देखी थी, मुझे पता भी नहीं था कि इस तरह का खेलता था। तो वहां पर बहुत ही
1: जी
0: मुझे
1: जी
0: शाबाशी मिला। तो
1: जी जी
0: वहां स्वर्गीय रोबर्ट किसपोट्टा प्रशिक्षक थे तो उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ी कि बहुत अच्छी लड़की है, अच्छी रनर है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि हम लोग आपको सेंटर में ले आएंगे, अभी अप्रैल में सिलेक्शन होगा इस साल, पटना से टीम आती है तो
1: जी जी
0: सिलेक्शन के लिए टीम आएगी तो तुम भी भाग लेना। कि मुझे नेशनल स्पोर्ट्स डे में काफी शाबाशी मिली थी तो बहुत ही अच्छा लगा। एक मेरे मेरे बगल में क्लास में बैठती थी वो लड़की सेंटर में ऑलरेडी थी तो
1: जी
0: उससे
1: जी
0: मैं पूछी तो बोली कि नहीं सर, चूंकि सेंटर में बहुत अच्छा फैसिलिटी है, सुबह में हम लोगों को चना गुड़ मिलता है, ब्रेकफास्ट मिलता है, लंच
1: जी
0: मिलता है, फिर शाम
1: जी
0: में चाय बिस्किट मिलती है, फिर हम लोग डिनर मिलता है, ऑल्टरनेट डे नॉनवेज मिलता है। तो मैं तो खाना पीना को सुनी तो बहुत ही ये हो गई, क्योंकि मैं जब बोर्डिंग स्कूल में गई तो
1: जी जी
0: साधारण जो नॉर्मल हॉस्टल होता है वहां थी, जहाँ की 8 बजे खाना मिलता था और सीधे 6 बजे मिलता था। अब
1: ओह
0: अचानक मैं गांव से गई थी वहां पर
1: जी
0: और मुझे सूट नहीं कर रहा था, काफी भूख लगती थी, मैं मतलब कभी कभी रो जाती थी। तो जब मैंने सुना कि सेंटर में अच्छा खाना मिलता है, मुझे गेम आगे करके क्या करना है मुझे नहीं पता, लेकिन वो सामने जो दिख रहा था मेरे लिए खाना दिख रहा था कि टाइम पे खाना मिलेगा मुझे, अब मैं अच्छा से पढ़ाई कर पाऊँ।
1: जी जी
0: हुआ कि
1: बिल्कुल
0: अप्रैल में उसी साल ये से पटना से टीम गई और सिलेक्शन हुआ और मेरा भी उसमें सिलेक्शन हो गया, मैं अच्छा की। तो इस तरह का
1: जी
0: मैं
1: जी जी
0: सेंटर
1: जी
0: में गई और मेडल फर्स्ट टाइम 84 में ली, उसका नेक्स्ट 85 में स्कूल नेशनल में मैं मेडल ली, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखी। संजोग से प्लस टू में थी लास्ट मतलब कंप्लीट ये की, तो उससे मुझे मेरे भैया, जो कि भैया पुलिस में पहले से थे
1: जी
0: तो
1: जी
0: उन्होंने इंस्पायर किया कि पुलिस में ज्वाइन करने से आगे और अच्छा कर पाओगी। तो चूंकि मुझे आगे भी पढ़ाई करना था और मेरे माता पिता जी थे जरूर, लेकिन हमसे बड़ी एक दो दो दीदियां थी तो मतलब शायद उतनी ही मैं ऐसे अगर आगे का पढ़ाई शायद मेरे लिए बाधा होता या हो सकता है कि आगे मैं खेल नहीं कर पाती। तो अच्छा था कि मेरे भैया ने मुझे सुझाव दिया। तो
1: जी जी
0: रांची में बहाली चल रही थी तो हम
1: जी
0: लोगों ने वहां भाग लिया, तो वहीं से मेरी योगदान हुई और दिसंबर में मैं योगदान दी और 2 महीने 1.5 महीने बाद में मधुबन हरियाणा मैं ऑल इंडिया पुलिस गेम के लिए फर्स्ट टाइम गई और वहां 100 मीटर हर्डल्स में न्यू रिकॉर्ड के साथ मैंने
1: क्या बात
0: गोल्ड
1: है
0: मेडल बिहार पुलिस को मैंने पहला पद दिया। तो मुझे वहीं पर मतलब घोषणा की गई कि ASI का ये दिया जाता है। तो इस तरह मैं पुलिस में भी ज्वाइन करने के बाद पीछे मुड़ के नहीं दी और स्टेप बाय स्टेप आउट ऑफ प्रमोशन लेती
1: जी
0: गई और 91 में ही मैं इंस्पेक्टर, 5 साल में इंस्पेक्टर बन गई थी।
1: क्या बात है मैम, खेल में भी

0: रोजगार के अवसर हैं। अभी हम लोग इस विषय पर भी कुछ दिन चर्चा भी चल रही थी, और आप एक उदाहरण, जीवंत उदाहरण हैं। शुरुआत के दिनों की अगर बात करें, खेलते खेलते जिस तरह से आपने फिर अपनी नौकरी में भी, आपने जैसा कि आपने बताया कि आप नौकरी आप ज्वाइन की, तो खेल को भी आपने छोड़ा नहीं, साथ साथ नौकरी में आज इस मुकाम तक हैं। आप अभी IPS हैं, और आगे भी हमारी शुभकामना भी है कि DIG के पद पर भी आप निश्चित रूप से जाएंगी। तो नौकरी और खेल दोनों को संतुलित करना कितना चुनौतीपूर्ण रहा अभी तक आपके लिए?
1: दिक्कत तो होती है, लेकिन क्योंकि बचपन से ही जो गांव से पले बड़े थे, तो गांव से पले बड़े थे तो मेहनत, बिना मेहनत का आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मेहनत वो हम लोग गांव में जब सीखते हैं,
0: जी
1: ज्यादा फिजिकली मेंटली मेहनत से ही आगे बढ़ने के लिए हम लोग को उस तरह का परवरिश ही किया जाता है, जो कि मेरे लिए आगे जाके काम आया। जैसे मतलब उदाहरण के लिए बोलेंगे कि गांव में जैसे कुछ भी काम हो रहा है ठंड के दिनों में, जैसे पिताजी को भी स्कूल जाना होता था, क्योंकि स्कूल टीचर थे वो,
0: जी जी
1: उन्होंने 3 बजे भोर में उठाकर पूरे मतलब घर का जो भी काम है, बगान का काम है, खलिहान का काम है, जो भी काम है, करने के निपटने के बाद ही स्कूल हम लोग जाते थे। तो एक आदत सी वो डिसिप्लिन बन गई थी। और उसी तरह गेम लेकर गई मैं, तो वहां भी उसी तरह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठना है। अगर 4 बजे नहीं उठेंगे तो हम 5 बजे के लिए, 4:45 बजे के लिए ग्राउंड नहीं पहुंच पाएंगे। तो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: डिसिप्लिन बनते ही चला गया, और उसी तरह मेहनत के लिए बोला जाता था तो मेहनत भी करते गए। और सबसे बड़ी बात है कि जो डिसिप्लिन होता है वो माता पिताजी से मिलता है, स्कूल में टीचर्स प्रिंसिपल से मिलता है, आगे जाके फिर कोचेस से मिलता है। तो
0: जी
1: वो डिसिप्लिन फिर नेचुरल ये में अपना व्यक्तित्व में आ ही जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और वो जब आप मेहनत करते जाते हैं तो जो अपने जो गुरु, जो खेल के प्रशिक्षक हैं या स्कूल के जो टीचर्स हैं, वो लोग सपोर्ट करते ही हैं। फिर घर वाले जो हैं,
0: जी
1: जैसे
0: जी
1: मेरे लिए सबसे बड़ा सपोर्टर मतलब मेरे बड़े भैया थे, जो कि बीच में मुझे मतलब इंस्पायर करते ही रहते थे कि अच्छा खेलना, और अच्छा करती थी तो मुझे बहुत ही ये मिलता था, अप्रिसिएशन मिलता था। पुलिस विभाग से बड़े सीनियर से काफी अप्रिसिएशन मिलता था। तो
0: जी
1: ये
0: जी
1: सब क्या है, सपोर्ट करता है खिलाड़ी को एक आगे बढ़ने के लिए। और मैं
0: बिल्कुल
1: चूंकि खेल और पढ़ाई को दोनों मेरे लिए बराबर था, इसीलिए कभी मैंने पढ़ाई भी नहीं छोड़ा, आगे पढ़ाई करती गई।
0: बिल्कुल सही कहा। मेहनत हो और अनुशासन, साथ साथ अगर समय प्रबंधन हो, तो तीनों चीजें अगर आपकी हैं तो कहीं चुनौती अगर नहीं आती है, कोई भी चुनौती हो तो उस पर पार पाया जा सकता है। मैम, आप इस क्षेत्र में अभी आप IPS हैं, तो आप एक जिम्मेदारी पूर्ण पद पर भी हैं। आपके प्रयास खिलाड़ियों के लिए, साथ साथ इस दिशा में जो लोग आगे बढ़ना चाहती हैं, उसके लिए आपका क्या प्रयास रहता है?
1: सबसे पहले तो IPS जो आपने कहा, तो मैं शायद श्रोता लोग कंफ्यूजन करेंगे कि मैंने इंस्पेक्टर शुरू में बोला था IPS कैसे बने। तो
0: जी
1: इंस्पेक्टर तक तो हाँ, इंस्पेक्टर तक तो मैंने क्या बोलते हैं आउट ऑफ प्रमोशन मिला,
0: जी जी
1: लेकिन इसके बाद जो मिला DSC, सीनियर DSC, एडिशनल SC, ये सब ये रेगुलर बेसिस पे प्रमोशन होता है, उसमें मिला,
0: अच्छा
1: जिसमें
0: जी
1: कि मैं उस मेरिट उस क्राइटेरिया में फिट खाती हूँ, तब
0: जी जी
1: मुझे
0: बिल्कुल
1: मिला है
0: बिल्कुल, योग्यता जिनकी होती है वही क्राइटेरिया में
1: ना,
0: होते
1: उन्हीं
0: हुए
1: को
0: आगे
1: दिया
0: आते
1: जाता
0: हैं।
1: है।
0: बिल्कुल
1: उसी तरह IPS जब मिला, जो UPSC से वहां पे बोर्ड में जो क्राइटेरिया या मैं जहाँ पर ये फिट खाती हूँ,
0: जी,
1: जो सारी चीजों को मैंने कंप्लीट करती हूँ, तो वैसी स्थिति में मुझे IPS कराएं। वो भी 2014 का बैच मिलना चाहिए था,
0: जी जी
1: लेकिन कुछ ऑफिशियल कारणों से 2023 जुलाई में मिला
0: जी जी
1: है, 2014 का ही बैच मिला है मुझे।
0: जी
1: तो ये सबसे पहले श्रोताओं के लिए ये मैं बता देना कि IPS कैसे ये करते हैं।
0: जी जी
1: और अभी के समय में जैसे आपने कहा कि मतलब आपके ये लोगों के लिए, विशेष रूप से युवाओं के लिए मैं बोलूंगी, युवाओं के लिए मैं जरूर कुछ ना कुछ उन लोगों को प्रोत्साहन के लिए, या उन लोगों के लिए जो मेरे तरफ से बन पाता है जरूर मैं सहयोग करती हूँ। तो युवाओं के लिए अभी अपने अपने समय के अनुसार हर किसी के लिए चैलेंजेस और स्ट्रगल है। अभी का समय के लिए अलग स्ट्रगल है। सबसे पहला तो युवाओं से बात करने से सबसे पहले मेरे सामने आते तो बोलते हैं कि जॉब नहीं मिल रहा है मैडम, कहीं पर जॉब वैकेंसी नहीं निकल रही है। तो अगर जॉब की बात करते हैं, तो जॉब की बात करते हैं सबसे पहले युवा, तो जॉब का बात करने से मैं सिनारियों में नहीं रहती हूँ कि मैं जो नॉर्मल जो ऑफिसर्स है, मुझे जो ड्यूटी या मुझे जो

0: दायरा दिया गया है, मैं वही उत्तरदायित्व को निभाती हूँ।
1: जी जी
0: अब ये जॉब की बात होती है तो उसको मेरे को जवाब देना बहुत मुश्किल होता है, और उस स्थिति में उनको मैं यही बोलती हूँ कि आप लगे रहो। आप जैसे कॉलेज में आप सब्जेक्ट जो लेते हो, मेन सब्जेक्ट और एडिशनल सब्जेक्ट लेते हो, उसी तरह आप मेन सब्जेक्ट में आप गवर्नमेंट का जॉब के लिए तैयारी करते रहिए करते रहिए,
1: जी जी
0: लेकिन साइड में एक दो ऐसा ऑप्शन रखे हैं कि आप अगर नहीं उसमें ये कर पाते हैं तो आप जैसे कोई बिजनेस हुआ, या फिर आप कोई अपना इंस्टीट्यूट एकेडमी या कोई भी ये में, क्योंकि आपकी युवाओं के लिए बहुत सारा चीज दरवाजा खुला है, मतलब ऐसा बोले कि पूरा आसमान खुला है, आप उड़ान जिधर भी ले सकेंगे। आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, छोटा
1: बिल्कुल
0: काम बड़ा काम ये नहीं होना चाहिए। अभी स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, चाहे मेन के लिए विमेन के लिए बहुत सारे हैं, पुलिस में है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, कोचेस के लिए है, फिजिकल टीचर्स के लिए है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स डॉक्टर्स के लिए, बायोमैकेनिक एनालिसिस करने के लिए कोई कंसल्टेंट है, ये सब के लिए भी है। और नहीं तो खुद का अपना एकेडमी शुरू कर सकते हैं, अपना इंस्टीट्यूट शुरू कर सकते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि स्पोर्ट्स पर्सन कोई भी ऐसे नहीं रहते हैं, कुछ ना कुछ करते ही है अपना जीविका के लिए।
1: जी
0: तो
1: जी
0: मैं वैसा युवाओं के लिए, तो नॉर्मल जो युवा है उनको भी मैं अपना मकसद जो है, अपना ड्रीम है, उससे लगे रहे, सक्सेस मिलता है। आप उसका अपना ड्रीम को पूरा करने के लिए आइडियाज और मेहनत और उसमें लगे रहे, और साइड में कुछ ना कुछ करे, ताकि आपको मतलब इस तरह का जर्नी में जो कभी कभी
1: जी जी
0: ये क्या बोलते हैं, यू टर्न का सिचुएशन आ जाता है, तो वैसे समय अपने आप को मेंटली या फिजिकली स्ट्रांग रख सके।
1: मैम आपने स्पोर्ट्स में भी अपना अच्छा मुकाम हासिल किया, इसके बदौलत आपने योग्यता लेकर आप अभी आईपीएस के पद पर हैं। शिक्षा की अगर बात करें तो आपने देश, न केवल देश बल्कि विदेशों से भी शिक्षा ली है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे।
0: हाँ, मैं तो पहले भी बताई कि मैं स्पोर्ट्स और एजुकेशन दोनों को मेरा मतलब दोनों में मेरा बहुत ही रुचि है, और साथ
1: जी
0: में ही ली हूँ। मेरी ग्रेजुएशन लुमेन्स कॉलेज जमशेदपुर से हुई थी।
1: जी
0: तो
1: जी
0: जब मैं स्पोर्ट्स में 1987 से लेकर के 1993 तक मैंने ओलंपिया पुलिस गेम में खेला, और भी सीनियर नेशनल वगैरह में भी ये किया था। तो जब परफॉर्मेंस जब डाउन हुआ तो मैं 93-94 में NIS डिप्लोमा भी मैंने किया था।
1: जी जी
0: बिहार पुलिस हेडक्वार्टर से ऑर्डर के बाद। इतना ही नहीं, मैं 2002-03 में मैंने स्पोर्ट्स साइंस जर्मन लैंग्वेज में जो हानेस गुटनबर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी से मैंने किया था।
1: जी
0: और वहीं से आने के बाद में, लौटने के बाद में मुझे गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट ने मुझे स्पोर्ट डिपार्टमेंट में एज ए डिप्टी डायरेक्टर के पद में वर्क दिया था, उत्तरदायित्व दिया था, जिसमें कि मैंने बहुत काम किया बढ़ चढ़कर, और मतलब मजा आया काम करने में। और इसके बाद भी मेरी पढ़ाई रुकी नहीं। 2016-18 तक पार्ट टाइम इंटरनेशनल MA ओलंपिक स्टडीज भी की मैंने।
1: जी
0: तो
1: जी
0: वो जर्मन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जर्मनी जो सेंटर है ओलंपिक स्टडीज सेंटर,
1: जी जी
0: लेकिन अलग अलग 6 मॉड्यूल जो होते हैं 2 साल से,
1: जी
0: तो
1: जी
0: अलग अलग, जैसे ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी बार्सिलोना, लकबर्ग यूनिवर्सिटी UK, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड, ओलंपिक एकेडमी एथेंस, ये सब अलग अलग सेंटर्स हैं।
1: जी
0: तो मैं जर्मन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से मैंने ओलंपिक स्टडीज भी किया मैंने।
1: क्या बात है, बिल्कुल मैम। मैम हम चाहेंगे कि हम अपने श्रोताओं को, जो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आपके पसंद का एक गीत उनको सुनवाएं, जो प्रेरणादायक आपको जो पसंद हो एक गीत आप बता दें, ताकि कार्यक्रम में हम उनको सुनवाएं।

0: अगर भविष्य की योजनाओं की अगर बात करें, आप प्रशासनिक खेल से बढ़ते हुए प्रशासनिक पद को संभाल रही हैं, आगे आने वाले वर्ष के आपके लक्ष्य की अगर बात करें व्यक्तिगत रूप पर और प्रशासनिक दोनों में, तो क्या लक्ष्य रहेंगे आपके?
1: अभी मैं वर्तमान में तो मैं एज ए कमांडेंट जैप टू रांची में हूँ,
0: जी,
1: पोस्टेड मेरी है, और वहां पर मुझे पुलिस का जो लाइबिलिटी दिया गया है
0: जी
1: वो
0: जी
1: मैं वहां पर कर रही हूँ और बखूबी से निभा रही हूँ। अभी तक किसी तरह की शिकायत या किसी तरह
0: जी
1: की
0: जी जी
1: समस्या नहीं आई है। आगे भी मैं उम्मीद रखती हूँ कि अच्छा से संचालन कर सकूँ। अब वहाँ अभी अभी पूरी तरह एक तरह से देखा जाए तो मुझे जब आईपीएस का ये मिला, मैं आईपीएस में प्रमोशन हुआ, तब से मैं पूरी तरह अपने आप को एक पुलिस पदाधिकारी के रूप में ही अपने आप को ये कर रही हूँ और ज्यादातर पुलिस डिपार्टमेंट

0: के लिए या पुलिस के लिए मैं काम कर रही हूँ,
1: जी जी जी
0: क्योंकि मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ और स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। तो जैसा आवश्यकता होती है कि जिसको भी हेल्प करने की आवश्यकता होती है, तो उस तरह का मैं करती हूँ। जहाँ तक फ्यूचर की बात है, तो वो जब रिटायरमेंट के बाद देखा जाएगा उस समय
1: जी जी जी
0: क्या
1: बिल्कुल
0: सिचुएशन आएगी, तो मैं वैसे ही प्लान करूंगी।
1: मैम, आप खेल से जुड़ी हुई हैं, पुलिस सेवा में हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी फिट इंडिया जो मूवमेंट है उसको लेकर लगातार सजग हैं, आप भी जानती हैं, तो खेल और पुलिस सेवा को जोड़ते हुए आपके तरफ से कुछ विशेष पहल ऐसा कुछ किया जा रहा है या करना चाहती हैं आप आगे?
0: अगर व्यक्तिगत बोला जाए तो आप खुद ही ये इमेजिन कर सकते हैं कि जो मतलब खेल और पढ़ाई दोनों को लेकर के, पढ़ाई वो भी नहीं कि पढ़ाई नॉर्मल चीज है,
1: जी
0: स्पोर्ट्स का एरिया में ही पढ़ाई करने के लिए रुझान जो रहता है उधर ही रहता है।
1: जी जी
0: तो ऐसा समय में स्पोर्ट्स में तो इंटरेस्ट है ही,
1: जी
0: लेकिन मैंने कहा अभी चूंकि पुलिस का, चूंकि एज ए पुलिस ऑफिसर पुलिस का उत्तरदायित्व मिला हुआ है, तो वही निभाने का कोशिश कर रही हूँ।
1: जी
0: और जैसे मिलता है कभी भी जिम्मेवारी, पुलिस का कोई भी स्पोर्ट्स सेक्टर का जो जिम्मेवारी दी जाती है, तो उसको बहुत ही सफलतापूर्वक मैं उसको निष्पादन करने का कोशिश करती भी हूँ। तो
1: जी जी ओके
0: इसीलिए मैं फिट
1: जी
0: इंडिया का जो ये किया गया कॉन्सेप्ट जो है रियली
1: जी
0: में बहुत अच्छा है, वो बहुत खिलाड़ी भी पूरे इंडिया में,
1: जी जी जी
0: इंडिया के जितने खिलाड़ी हैं बहुत ही उससे लाभान्वित हो रहे हैं। और उसमें उस फिट इंडिया के तहत जो एक्टिविटी हो रहा है उसमें अच्छे अच्छे टैलेंटेड खिलाड़ी निकल कर आ रहे, उभर कर आ रहे हैं। तो
1: जी
0: ये बहुत ही अच्छा योजना है,
1: जी जी जी
0: प्लानिंग है। तो ये है, बस मैं उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व होकर के नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं मुझे जो दायित्व है
1: जी
0: अभी
1: अलग दायित्व
0: फिलहाल
1: है आपके पास जी
0: वर्तमान
1: मत
0: में, जो पहले मुझे कुछ अलग दायित्व है,
1: जी
0: पूरी
1: जी
0: तरह
1: बिल्कुल
0: पुलिस का उत्तरदायित्व मिला हुआ है, तो उसको मैं बखूबी से निभाने की कोशिश कर रही हूँ।
1: मैम, आज के युवाओं का विशेषकर लड़कियों के लिए अगर हम बात करें, एक संदेश उनको क्या देना चाहेंगी आप?
0: आजकल तो लड़कियों के लिए क्या बोलेंगे, संदेश तो जरूर दूंगी, लेकिन आज की लड़कियां जो हैं खुद ही इतनी एक्टिव है, इतनी स्मार्ट है, इतनी एडवांस है कि उनको बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन भी मैं इतना तो जरूर कहूंगी लड़कियों को कि वो अपने अपना ड्रीम, अपना जो मकसद है, अपना लक्ष्य है, उसको जो फोकस करते हैं तो उसमें फोकस करें और उसमें उसमें ही जाने की कोशिश करें। क्योंकि
1: जी
0: होता क्या है, बहुत मतलब चंचल दिमाग का होता है, तो एक फोकस मेरा, एक उनका फोकस रहता है, फिर अगल बगल देखते हैं कि कोई और कुछ कर रही है तो उधर जब मार जाते हैं। और क्या है कि मेहनत करती है करती है, थोड़ा सा भी मतलब चैलेंजेस झेलना होता है तो हताश हो जाती है। उसको मतलब क्या बोलते हैं, कोई चीजों को भी, जैसे हम लोग नॉर्मल सा डेली खाना खाते हैं, डेली खाना खाते ठीक है, हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ठीक है, ये हम लोग अपना जीवित रहने के लिए खाते हैं। लेकिन हम वो सुबह में जो खाते, दिन में खाते, शाम में ही क्यों खाते हम उस चीज को, क्यों हम लोग 10 बजे खा लें, कभी 3 बजे खा लें या 12 बजे रात में खा लें, ऐसा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो रूटीन ये बन गया, हैबिट बन गया है एक तरह से कि हमको इतना टाइम नहीं खाना है, इतना
1: जी
0: टाइम
1: जी
0: है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई लक्ष्य को ले लिए हैं तो लक्ष्य को तक जाने के लिए अपने आप को डिसिप्लिन और अपने आप को हार्डवर्क तो करना है, लेकिन उसमें क्या बोलते हैं उसको, हैबिट हैबिट बना करके ये करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए, ताकि कोई भी सेक्टर में, चाहे आप अपना करियर को करियर बनाना चाहते हैं या अपना पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या सोसाइटी से रिलेटेड हो
1: जी जी
0: या
1: जी
0: कोई भी क्षेत्र में हो, तो उसमें सक्सेस कर सकते हैं। और आजकल की लड़कियां जो है कोई भी सेक्टर में जा सकती हैं, ऐसा कुछ
1: जी
0: भी
1: जी
0: नहीं है कि हाँ हमको इसी में जाना चाहिए इसमें जाना, आजकल उनके लिए भी पूरा आसमान खुला
1: खुला
0: है,
1: है
0: उड़ान ले सकते।
1: मैम। अंत में एक सवाल कि आपके लिए, आपके जो खेल जो आपके जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है, क्या यह

0: आपके व्यक्तित्व या आपके अनुशासन को, डिसिप्लिन को आकार देने में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया यह खेल आपके जीवन को साकार करने में?
1: बहुत ज्यादा किया है। मैं आज जो भी हूँ या जो पेट मेरा बना है खेल की वजह से बना है। खेल खेल के कारण ही मैं आगे बढ़ी, खेल के कारण ही मैं अपना अचीवमेंट के माध्यम से लोगों के बीच में आई, सोसाइटी के बीच में आई, और यही आगे मुझे बढ़ाया। और खेल खेल बोलने से सिर्फ खेल नहीं, खेल एक एजुकेशन का माध्यम है। खेल को अगर ये देखा जाए, गहराई से देखा जाए, तो खेल को एजुकेशन का माध्यम से ही आगे ले किया जाता है। तो वही चीज मुझे आगे पुश करता रहा
0: जी,
1: और आगे मैं बढ़ती गई। और आज भी अगर कहीं भी कुछ होता है तो खेल मेरे लिए बहुत ही क्या बोलते हैं, मुझे खेल क्या बोलेंगे, प्रेरणादायक जो बोलते हैं, तो प्रेरणा प्रेरणा मुझे खेल से ही
0: सी
1: मिलता है,
0: मिल
1: उसी से
0: जी
1: मैं
0: जी
1: आगे बढ़ती हूँ। और जो भी अंदर से जो विल पावर कॉन्फिडेंस है या जो भी ये है, वो मेरे गेम से ही, स्पोर्ट्स से ही मिला है, या मेरा पर्सनालिटी डेवलप जो हुआ है।
0: जी
1: एक
0: जी
1: गांव में एक नॉर्मल लड़की से आज एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में हूँ। तो ये खेल नहीं, एक तरह से बोला जाए तो खेल नहीं मुझे यहाँ लाया, और मेरा मेरा लाइफ को बदल दिया, मेरा करियर को बदल दिया। तो
0: जी
1: मेरे
0: जी
1: लिए ये खेल बहुत ही माने रखता है। आज के समय स्पेशली सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई सिर्फ करियर नहीं है, आज खेल भी करियर है। और वो खेल का करियर मानने के लिए मैं आज उसी रास्ते से मैं आ करके मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तो मेरे लिए तो खेल बहुत ही मायने रखता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बहुत, जितनी आप हर खेल में भी जितना पारंगत हैं, आप प्रशासनिक क्षेत्र में भी उतना ही स्वर आपका कोकिला जैसे कह सकते हैं, एकदम सुमधुर स्वर है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सरोजनी लाकड़ा जी, आपने व्यस्तम समय में से हमारे लिए समय निकाला, मैं श्रोताओं के लिए, और जो आपकी प्रेरणादायक अनुभव है उसे साझा किया। आपका जीवन का सफर खेल के मैदान से लेकर आईपीएस बनने तक का, हम सभी के लिए, जो भी श्रोता खासकर जो लड़की खिलाड़ी हैं वो सुन रही हैं, उनके लिए एक मिसाल है, यह मिसाल है। ये लक्ष्य बड़ा हो लेकिन रास्ते अगर आप मेहनत करेंगे तो जरूर बन जाते हैं, आप उसमें सफल होते हैं। मैम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए, और मेरा बात को सुनने के लिए श्रोताओं को भी एडवांस में धन्यवाद।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता पर आधारित कार्यक्रम इनसे मिलिए। कार्यक्रम में आप सुन रहे थे आईपीएस डॉक्टर सरोजनी लकड़ा से धर्मेंद्र राठौड़ की बातचीत। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में दलाल फिल्म के इस गीत को। संगीत बप्पी लाहिरी का है और गीतकार हैं प्रकाश मेहरा।

फिल्म संगीत की अगली पेशकश किशन कन्हैया फिल्म में अमित कुमार और साधना सरगम की आवाज़ में, गीत के बोल अनवर सागर ने लिखे हैं।

फिल्म संगीत की अगली पेशकश आशा भोसले और किशोर कुमार सानू की आवाज में। फिल्म है बलमा। संगीत नदीम श्रवण का है और गीतकार हैं समीर।

फिल्म संगीत की अगली पेशकश कोयला फिल्म में सुनिए कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़, राजेश रोशन का संगीत और इंदीवर के गीत।

आकाशवाणी पटना से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की अगली पेशकश है फिल्म जिस्म से, जिसे गाया है श्रेया घोषाल ने। नीलेश मिश्रा के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है MM करीम ने।

परदेश, इस फिल्म का गीत सुनिए सोनू निगम, हेमा सरदेसाई, शंकर महादेवन की आवाज़ों में। आनंद बख्शी की रचना है, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

राजा इस फिल्म का गीत सुनिए अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में। समीर की रचना है, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

रचना समीर की, संगीत नदीम श्रवण का, आवाज़ें दी हैं कुमार सानू और अलका याग्निक ने। फिल्म का नाम राजा हिंदुस्तानी।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए फिल्म कसूर का ये गीत उदित नारायण और अलका याज्ञिक की आवाजों में। समीर की रचना है, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

0: अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्स पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 12 बजे हैं। प्रस्तुत है बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज सुनिए मगही लोकगीत। कलाकार हैं श्याम सुंदर पासवान और तारा गुप्ता। गीत सुनने से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। कुटुंब पंचायत से अनीता कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
2: मायसेल्फ अनीता कुमारी फ्रॉम कुटुंबा पंचायत डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद। मैंने अपने गांव में बहुत सारे काम किए हैं, जैसे WPUS प्रोसेसिंग यूनिट और चाइल्ड एजुकेशन और ओल्ड एज पेंशन, नली गली, छठ घाट निर्माण, वुमेन एजुकेशन। गांव में लाइब्रेरी भी खुलवाई हूँ ताकि जो बच्चे लोग बाहर पढ़ने जाते हैं और घर में वो लोग को लाइट के बिना सुविधा नहीं मिल पाता है, वहाँ बैठ के वो लोग आसानी से पढ़ सकते हैं और बड़े होकर कुछ बन सकते हैं।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
0: बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम इसमें आज सुनिए मगही लोकगीत। कलाकार हैं श्याम सुंदर पासवान। इनसे आइए पहले सुनते हैं ये लोक भजन।

0: आकाशवाणी पटना से अभी आप सुन रहे हैं बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्याम सुंदर पासवान से बरमासा गीत। अब आइए सुनते हैं तारा गुप्ता से ये गीत।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। खांग पंचायत से कौशल्या देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
2: घर सम्मानी कौशल्या देवी खांग पंचायत। गाँव के तो बढ़ा रहे है की गली नली बना रहा है, हमको गाँव ने अथी पंचायत भवन नहीं बन रहा है। बनने की कोशिश कर रहे हैं मगर नहीं हो रहा है, आगे बढ़ाने चाह रहा है। ये सामान पा के बढ़िया लगा। गांव के फायदा तो है कि हमको गांव ने पानी गिरे के साधन नहीं था, वो सब के बना रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
0: तारा गुप्ता से सुनिए झूमर।

तारा गुप्ता की आवाज़ में अभी आप चौमासा गीत सुन रहे थे। इनसे अब आइए सुनते हैं ये बरसाती गीत।

0: तारा गुप्ता के गाए इस बरसाती गीत के साथ ही बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। लीजिए अब सुनिए महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत। नारी जगत सुनने वाली हमारी सभी श्रोता बहनों को आपकी रेडियो साथी सुरभि का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, भारत की स्वतंत्रता केवल तलवारों के बल पर नहीं, बल्कि विचारों, जागरूकता, सच्चाई और साहस से भी मिली है। आज हम ऐसे ही एक महान विचारक और राष्ट्र निर्माता के चर्चा करने जा रहे हैं, जिन्होंने भारतीयों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया और स्वतंत्रता संग्राम की मजबूत नींव रखी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और राष्ट्रवादी नेता दादा भाई नौरोजी के बारे में। दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 में हुआ था। उन्हें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन अर्थात भारत के वृद्ध पितामह के नाम से भी जाना जाता है। वे भारतीयों के अधिकारों, शिक्षा और समान अवसरों के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगाने और स्वाधीनता के प्रति विश्वास उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी प्रसिद्ध ड्रेन थ्योरी ने भारतीयों की आंखें खोलने का काम किया। 30 जून 1917 को दादा भाई नौरोजी का निधन हो गया, लेकिन उनके विचार, सिद्धांत और राष्ट्र के प्रति समर्पण आज भी हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। महान व्यक्तित्व शरीर से भले ही इस दुनिया से विदा हो जाते हैं, लेकिन उनके विचार और आदर्श सदैव जीवित रहते हैं। दादा भाई नौरोजी इसके सर्वोत्तम उदाहरण हैं। दादा भाई नौरोजी जैसे महान युगद्रष्टा नेता को उनकी पुण्यतिथि पर हमारा शत शत नमन है। बहनों, दादा भाई नौरोजी ने जिस भारत का सपना देखा था, वो केवल राजनीतिक रूप से स्वतंत्र भारत नहीं था, बल्कि ऐसा भारत था जहां हर नागरिक को समान अधिकार और भागीदारी मिले। किसी भी लोकतंत्र की सफलता तभी संभव है जब उसकी आधी आबादी केवल मतदाता बनकर ना रहे, बल्कि नीति निर्माण और नेतृत्व में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। चुनावी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी केवल प्रतिनिधित्व का प्रश्न नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और सशक्त राष्ट्र निर्माण का आधार है। बहनों, हमारे देश में महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, खेल, प्रशासन और व्यवसाय सहित हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही हैं। ऐसे में चुनावी राजनीति में उनकी सक्रिय भागीदारी भी अत्यंत आवश्यक है। महिलाएं समाज की समस्याओं को संवेदनशीलता और व्यावहारिक दृष्टिकोण से समझती हैं, इसलिए उनकी भागीदारी से नीतियां अधिक समावेशी और जनहितकारी बनती हैं। आज महिलाएं केवल मतदान करने तक सीमित नहीं है बहनों, बल्कि पंचायतों से लेकर संसद तक नेतृत्व की भूमिका निभा रही हैं। ये बदलाव हमारे लोकतंत्र की परिपक्वता और महिलाओं की बढ़ती जागरूकता का प्रतीक है। फिर भी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को और बढ़ाने, उन्हें समान अवसर देने तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। जब महिलाएं लोकतंत्र की दिशा तय करने में बराबरी से भाग लेती हैं, तब चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं रहते, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण का सशक्त अभियान बन जाते हैं।

बहनों, हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं, बस उसे पाने के लिए लगन और जज्बा होना चाहिए। क्योंकि जज्बा हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, खामोश रास्ते भी बदल जाते हैं। जो ठान ले इंसान दिल से कुछ करने की, जो ठान ले इंसान दिल से कुछ करने की, उसके आगे हालात भी झुक जाते हैं।

0: प्रदेश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। अमथुआ पंचायत से मिराज अहमद हैं यशस्वी मुखिया।
1: मैं मिराज अहमद, ग्राम पंचायत अमथुआ, प्रखंड काको, जिला जहानाबाद। बेहतरीन छठ घाट बनाना है तालाब किनारे जो है, और उसके बाद वहाँ पर पूरा चबूतरा बनाया बैठने के लिए जो है, वहाँ पार्क बनवाया जाए, और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जो है बर्थिन लोग को बहुत दिक्कत होती थी कपड़ा चेंजिंग करने के लिए, वहाँ पर चेंजिंग रूम हमने बनवाया जाए कि जो ऐसा प्रोग्राम जिन्होंने कराया है ये काबिले तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, सलाम।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। किशनपुर रटवारा पंचायत से ओम पूनम कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
2: मैं पूनम कुमारी, ग्राम पंचायत किशनपुर रटवारा, प्रखंड आलमनगर, जिला मधेपुरा जी। मैंने काम करवाए है, अभी तो मेरा बाहर इलाका है, कोसी कटाव से पीड़ित है, वहाँ तो रोड सालों आती है सालों चली जाती है बह के, तो उसी को हम अभी तक में 25 से 30 हम मतलब कच्ची सड़क बनाए हैं, 10 से 15 पक्की सड़क। मैं दो बार मुखिया बनी।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
3: बहनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज सोशल मीडिया हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। ये ज्ञान, सूचना और संवाद का सशक्त माध्यम है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग कई समस्याओं को भी जन्म देता है। इसलिए इसका संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग समय की आवश्यकता है। सोशल मीडिया एक ऐसी शक्ति है जिसने पूरी दुनिया को हमारी हथेली पर लाकर रख दिया है। आज हम घर बैठे देश दुनिया की खबरें जान जाते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं, अपने विचार साझा कर सकते हैं। शिक्षा, व्यापार और जन जागरूकता के क्षेत्र में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन हर शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। जब सोशल मीडिया का उपयोग आवश्यकता से अधिक होने लगता है, तब ये समय की बर्बादी, मानसिक तनाव, गलत सूचनाओं के प्रसार और वास्तविक रिश्तों में दूरी का कारण बन सकता है। कई बार लोग लाइक और फॉलोअर्स की दुनिया में इतने खो जाते हैं कि अपने परिवार, पढ़ाई और स्वास्थ्य की उपेक्षा करने लगते हैं। इसलिए हमें सोशल मीडिया को अपना स्वामी नहीं बल्कि अपना साधन बनाना चाहिए। इसके लिए समय सीमा निर्धारित करें, केवल विश्वसनीय जानकारी पर भरोसा करें, सकारात्मक और वास्तविक जीवन के रिश्तों को भी पर्याप्त समय दें। बहनों, तकनीक तब तक वरदान है जब तक वो हमारे नियंत्रण में है। जिस दिन हम उसके नियंत्रण में आ जाएंगे, वही वरदान अभिशाप बन जाता है। सोशल मीडिया का संतुलित उपयोग तभी सार्थक है जब उसके माध्यम से हम केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि समाज की समस्याओं, जरूरतों और विकास के मुद्दों के प्रति भी जागरूक बने, क्योंकि एक जागरूक नागरिक ही एक विकसित समाज की नींव रखता है। परिवर्तन की शुरुआत हमेशा एक जागरूक सोच से होती है। तो आइए इसी विषय पर सुनते हैं एक वार्ता जिसका विषय है सामाजिक विकास के प्रति जागरूक रहें। वार्ताकार हैं शांभवी पौद्दार।
4: नमस्कार श्रोताओं, मैं शांभवी और आज के इस कार्यक्रम का विषय है कि हम सामाजिक विकास के प्रति जागरूक कैसे रहें। हमारा समाज जो कई इकाइयों से मिलकर बना है, जहाँ कई तरह की भाषाएं, बोलियां, खान पान, पहनावे हैं, इन सब के आधार पर ही सबके सामाजिक मूल्य भी अलग अलग हैं। पर इसके विपरीत समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय के आधार पर सभी समाज को बराबर के अधिकार प्राप्त हैं। समाज की जो इकाइयां हैं वो विविधताओं से भरी हैं, लेकिन इसके बाद भी ये विकास को छूती हुई हमें एकता की ओर ले जाती है। हमारे देश भारत में हर जाति, लिंग, धर्म, संप्रदाय को समान अधिकार प्राप्त हैं। इसीलिए इन अधिकारों के प्रति हमारी जागरूकता और समझ दोनों ही बेहद जरूरी है। चलिए श्रोताओं, अब आपको उन अधिकारों के बारे में बताते हैं। एक समाज में रहने के नाते आज हम परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हैं, साथ ही हम अपने समाज का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिस कारण हमें अपनी अनेकता में

एकता वाली संस्कृति को बरकरार रखना है। श्रोताओं, आज का समय बड़ी तेजी से बदल रहा है। तकनीक, सोच और हमारी जीवन शैली सब कुछ लगातार अपडेट हो रहे हैं। ऐसे में समाज के बदलते स्वरूप के साथ सामाजिक अधिकारों का स्वरूप भी बदलने लगा है। आज विकास का अर्थ सिर्फ तकनीक, इमारतें और सड़कों का विकास नहीं है, बल्कि समाज के निचले पायदान पर खड़े लोगों का विकास और हर नागरिक के जीवन स्तर को बढ़ाना है। शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और रोजगार जैसी मूलभूत जरूरतें समाज का आईना है, जिससे ये पता किया जा सकता है कि एक समाज अपने विकास के प्रति कितना जागरूक है। क्योंकि जागरूकता ही वो शक्ति है जो समाज में फैले अंधविश्वास, असमानता और अन्याय से हमें मुक्ति दिलाती है। जब हम अपने अधिकारों को नहीं जानते, तो हम कहीं ना कहीं पीछे छूटने लगते हैं। आज हम महिलाएं इस समाज की अपूर्व शक्ति है। हमें अपने अधिकारों से परिचित होना और उनके प्रति जागरूक होना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि अधिक से अधिक महिलाएं अपने अधिकारों को समझें, साथ ही अपनी ताकत और पहचान को समाज के हर क्षेत्र में अपनी सक्रिय भूमिका से निभाएं, जिसमें सुरक्षा और सजगता दोनों ही महत्वपूर्ण है। आज समय कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। हम महिलाएं अपनी रचनात्मक सोच के माध्यम से डिजिटल कलाएं और चित्र बना सकती हैं, जो तकनीक और रचनात्मकता का मिश्रण है। इसके ठीक विपरीत अन्य टेक्नोलॉजी है, जिसे डीप फेक कहते हैं, जिसमें किसी भी व्यक्ति के चेहरे अथवा आवाज का प्रयोग किसी दूसरी काल्पनिक वीडियो या तस्वीर में बदला जा सकता है, जिससे असली और नकली में भेद कर पाना बेहद ही कठिन है। ऐसे में महत्वपूर्ण ये है कि हम महिलाएं तकनीक का प्रयोग सावधानी पूर्वक करें और अपनी तस्वीरों और निजी जानकारी को हर जगह साझा ना करें। कहीं भी यदि आपको निजता या प्राइवेसी का दुरुपयोग की स्थिति दिखाई दे, तो तुरंत साइबर क्राइम सेल में अपनी शिकायत दर्ज कराएं। इस संदर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंतर्गत कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाती है। साथ ही कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए पॉश एक्ट लागू किया है। इस अधिनियम के तहत हर संस्था में एक आंतरिक शिकायत कमिटी, इंटरनल कंप्लेन कमिटी का बनना अनिवार्य है। इस समिति का उद्देश्य हम महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण प्रदान करना है, जहां हम अपनी शिकायतें गोपनीय रूप से दर्ज करा सकते हैं। यदि संस्था के स्तर पर समाधान नहीं हो, तो हम स्थानीय शिकायत समिति या जिला अधिकारी से सहायता ले सकते हैं। ये अधिनियम महिलाओं के लिए भयमुक्त और सम्मानजनक कार्यस्थल सुनिश्चित करता है। इसके अलावा हम महिलाओं को साइबर उत्पीड़न और ऑनलाइन बुलिंग के खिलाफ भी कानून प्राप्त हैं। यदि हम में से कोई भी महिला फेक प्रोफाइल, आपत्तिजनक संदेश या तस्वीरों के दुरुपयोग का शिकार बनती है, तो वह राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.government.in पर शिकायत दर्ज करा सकती है। इसके अलावा महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 पर शिकायत कर सकती है। साथ ही ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय महिला आयोग की भी सहायता ले सकती है। यदि श्रोताओं, आप कोई आपत्तिजनक कंटेंट किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखते हैं, जिसमें न्यूडिटी, वॉयलेंस और सेंसिटिविटी को बढ़ावा दिया गया हो, तो आप उसकी शिकायत इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर रिपोर्ट ऑप्शन के द्वारा कर सकते हैं। आज के समय में फेक न्यूज समाज के लिए एक नई चुनौती बन गया है। सोशल मीडिया पर झूठी और भड़काऊ खबरें फैलाकर समाज में भ्रम और अशांति फैलाई जाती है। ऐसे में हमें सावधान और सतर्क रहना चाहिए। किसी भी सूचना को आगे फॉरवर्ड करने के पहले उसकी सच्चाई की पुष्टि करना आवश्यक है। हमें केवल विश्वसनीय स्रोत जैसे कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो या सरकारी वेबसाइटों से मिली जानकारी पर भरोसा करना चाहिए। श्रोताओं,
समाज के जागरूक और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम सच्चाई और जागरूक

0: जागरूकता को बढ़ावा दें और भ्रामक बातों के प्रसार का विरोध करें। श्रोताओं, सामाजिक विकास की कड़ी में महिला गिग वर्कर्स एक अहम भागीदारी निभा रही हैं। आज फूड डिलीवरी ऐप हो, कार बाइक सर्विसेज ऐप या महिला का ऑटो चलाना, ये आज की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गया है। लेकिन आज अक्सर ही कंपनियों के द्वारा उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है, चाहे वो न्यूनतम मेहनताना हो या फिर अधिक काम के घंटे या उचित व्यवहार का ना होना। सभी के अधिकारों को मान्यता दिलाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सामाजिक दायित्व का हिस्सा है। आज बढ़ता प्रदूषण स्तर आम जीवन को प्रभावित कर रहा है। हवा में जहरीली गैसों की बढ़ती मात्रा लोगों के जीवन को खतरे में डाल रही है। हमें अपने जंगलों और पेड़ों को बचाने की आवश्यकता है, साथ ही हमें पौधारोपण करना होगा जिससे हम अपनी प्राण वायु को बचा सकें। श्रोताओं, आज मेंटल हेल्थ एक बड़ी चुनौती है जिसकी बात तो हम आज करते हैं, पर इसके निदान को लेकर अभी भी कुछ ठोस कदम नहीं उठाए जाते। आज के समय में अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, जिसे सकारात्मक सोच, संतुलित दिनचर्या, ध्यान और योग के द्वारा सही रख सकते हैं। साथ ही मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 मानसिक बीमारी से ग्रसित लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है। एक महिला होने के नाते घर परिवार या ऑफिस के दायित्व निभाने के लिए मानसिक स्वास्थ्य का सही होना बेहद ही जरूरी है। श्रोताओं, आज सामाजिक जीवन के प्रति जागरूक रहने के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है। जब हम महिलाएं शिक्षित होंगी तो पूरा घर शिक्षित होता है। शिक्षा और कौशल, ये दो वो शक्तियां हैं जो हम महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाती हैं। हमें जरूरत है कि हम महिलाएं उन महिलाओं का सहारा बने जो महिलाएं समाज में वंचित हैं। साथ ही अपने घर परिवार में हम बेटी, बहू, सास, माँ, जिस भी भूमिका में हो वहां प्रगति की ओर अग्रसर रहें। जब हम अपने विकास, सुरक्षा और सम्मान के अधिकारों की रक्षा करेंगे तभी हम सही मायने में सामाजिक विकास के प्रति जागरूक कहलाएंगे।
1: बहनों, अभी आपने सुना एक वार्ता जिसका विषय था सामाजिक विकास के प्रति जागरूक रहें। वार्ताकार थीं शांभवी पौद्दार। बहनों, हमारा सौरमंडल एक रोचक और रहस्यमयी दुनिया है जिसके विषय में जितना ज्ञान अर्जित करें उतना ही कम ही लगता है। जैसे कि 30 जून को वैश्विक जागरूकता कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। बहनों, आकाश में पृथ्वी के चारों ओर अनेक खगोलीय पिंड मौजूद हैं। इनमें से कुछ छोटे चट्टानी पिंड जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है कभी कभी पृथ्वी के निकट से गुजरते हैं, इसलिए इनके प्रति जागरूकता मानव सुरक्षा और वैज्ञानिक प्रगति दोनों के लिए आवश्यक है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के लिए हानिकारक नहीं होते, लेकिन ऐसे भी होते हैं जो पृथ्वी की कक्षा के पास से गुजरते हैं। यदि कोई बड़ा क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकरा जाए तो उससे व्यापक विनाश हो सकता है। यही कारण है कि विश्व भर के वैज्ञानिक लगातार इनकी निगरानी करते रहते हैं ताकि समय रहते आवश्यक कदम उठाया जाए। साथ ही क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन में सौरमंडल की उत्पत्ति और विकास के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी देता है, इसलिए हमें विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रति जागरूक रहना चाहिए और नई पीढ़ी को भी इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए। जागरूकता ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी है। बहनों, अंतरिक्ष के रहस्यों को समझना केवल ज्ञान नहीं बल्कि मानवता के भविष्य की रक्षा का भी माध्यम है। अंततः हम कह सकते हैं बहनों कि सौरमंडल एक रहस्यमयी दुनिया है, या यूं कहें कि आसमान में टिमटिमाते ये तारे एक संदेश सुनाते हैं। मिलकर रहने वाले ही दुनिया में नई रोशनी फैलाते हैं। तो आइए इस प्यारे से गीत के साथ हम भी प्रेम, सहयोग और एकता का गीत गुनगुनाते हैं।

0: तो बहनों, इसी प्यारे से गीत के साथ अब आप सभी बहनों से विदा लेती हूँ। नारी जगत के अगले अंक में हम ऐसे ही रोचक और मनोरंजक विषयों के साथ आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी सुरभि को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: अभी आप महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। इस समय दिन के 1 बजने को हैं। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार होंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उससे आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: श्री चौहान बाद में पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था, जिसके बाद सरकार ने अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई निर्धारित की थी। सरकार ने करदाताओं को भी सलाह दी है कि वे समय रहते ही अपील दायर कर दें और अंतिम तिथि का इंतजार न करें। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सोशल मीडिया पर वायरल उस फर्जी नोटिस का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि निजी पेट्रोलियम कंपनियां विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के लोगो वाले एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बेच रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में कॉरपोरेशन ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और निगम ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में

0: पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए भी गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। जर्मनी विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम अक्षय वट।
2: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। मोतीपुर पंचायत से ओम प्रेमी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
3: मैं प्रेमा देवी 10 ग्राम पंचायत राजमोतीपुर प्रखंड डोसरा जिला समस्तीपुर। हम सारा काज किए हैं अपना ग्राम सभा में लेकर अपना महिलाओं से और ग्राम से लेकर उसे पंचायत को शुरू किए। हमारे आने से बहुत सारे महिलाओं को रोजगार मिले। अभी लबेड़ी खोले हैं जिछा मिल रही है। अभी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं।
2: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
1: अक्षय वट इस कार्यक्रम में आज सुनिए वार्ता। विषय है अपने जीवन के अनुभव और यादों से समाज को समृद्ध करते हैं बुजुर्ग। वार्ताकार हैं अलका कुमारी। भारतीय संस्कृति में सबको 100 वर्ष के स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं दी जाती हैं। इसलिए आज आत्मसम्मान और आत्मगौरव से परिपूर्ण ऐसी अनगिनत प्रेरक कहानियां समाज के साथ साथ नए भारत में राष्ट्रीय गौरव का परिचायक बन गई हैं, जहां वरिष्ठ नागरिक नई पीढ़ी की प्रेरणा बन रहे हैं, जिसे एक बेहतर एवं समृद्ध समाज का निर्माण हो रहा है। बढ़ना और बुढ़ापा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसका अनुभव हर व्यक्ति करता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें विभिन्न नकारात्मक और सकारात्मक अनुभवों का सामना करना पड़ता है, जो जीवन के प्रति हमारी धारणा को बदल देते हैं। राष्ट्रीय बुजुर्ग नीति 60 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के व्यक्ति को बुजुर्ग के रूप में परिभाषित करती है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 71% बुजुर्ग आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। भारत में बुजुर्गों की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है तथा 2050 में 19% तक वृद्धि का अनुमान लगाया जाता है। परंपरागत रूप से भारत में युवा पीढ़ी हमेशा बुजुर्गों के पैर छूकर उनका सम्मान करती रही है। बुजुर्ग लोग हमेशा से हमारी परिवार और समाज के लिए खजाना रहे हैं। बुजुर्ग परिवार में वट वृक्ष के समान हैं, जिनकी छाया में रहने वाले लोग धूप आंधी एवं अन्य विपत्तियों से बचे रहते हैं। हमारे बुजुर्ग उस घने विशाल वट वृक्ष के तरह है, जो थोड़ी सी देखरेख या हमारे बिना कुछ किए भी हमें अपने प्यार एवं दुलार और वात्सल्य की शीतल छाया और अनुभव के मीठे स्वादिष्ट फलों से हमारा जीवन भर देते हैं। उनके पास जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है, जीवन के अनुभव, और अपने इन्हीं अनुभवों तथा यादों से वे परिवार के साथ साथ समाज को समृद्ध करते हैं। हमारे समाज में बुजुर्ग हमेशा से परिवार के मुखिया के तौर पर सम्मानित रहे हैं। संयुक्त परिवार में तो बुजुर्गों की अहमियत सबसे ज्यादा रही है। परिवार को एक सूत्र में पिरोने का काम हमेशा से हमारे बुजुर्गों ने किया है। इनकी अहमियत का अंदाजा हम इन शब्दों से लगा सकते हैं कि कहा गया है, कुछ पल बैठा करो, बुजुर्गों के पास हर चीज गूगल पर नहीं मिलती। जी हाँ, आज के इस आधुनिक जीवन

में हम इंटरनेट के माध्यम से हर जानकारी को कुछ पल में ही हासिल कर सकते हैं, लेकिन अच्छे संस्कार और आचरण हमें परिवार के बुजुर्ग सदस्यों से बढ़कर कोई नहीं दे सकता। बुजुर्ग हैं तो बच्चों की कहानियां गुलजार हैं, दुआओं की दुनिया आबाद है, रिश्तों की अहमियत बरकरार है, स्नेह का नजराना, अनुभव का खजाना तथा कपकपाती उंगलियों से बरसता आशीर्वाद हम में ऊर्जा का संचार करता है। इन सब गुणों का एकमात्र भंडार हमारे बुजुर्ग ही हैं। बुजुर्ग लोग अपने व्यक्तिगत और व्यवसाय जीवन का अपार अनुभव रखते हैं, जिसका उपयोग हमारा समाज अपने बेहतर कल के लिए करता है। वे आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण लिंक प्रदान करते हैं। यह बड़े पैमाने पर परिवार और समाज को समर्थन और स्थिरता प्रदान करता है। संयुक्त परिवार में दादा दादी युवा पीढ़ी की शुरुआती वर्षों में मूल्य और नैतिकता के हस्तांतरण के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी प्रदान करते हैं, जिससे बेहतर इंसान और जिम्मेदार नागरिकों के पालन पोषण में योगदान मिलता है। बुजुर्गों के योगदान को स्वीकार करने से हमारे समाज को अधिक आयु समावेशी बनाने में मदद मिलती है। वे अपने अनुभवों एवं यादों के माध्यम से परिवार के भीतर और बाहर दोनों जगह सामाजिक तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। घर में बुजुर्गों का होना बहुत ही जरूरी होता है। वे हमारे घर की शोभा हैं। उनकी छत्र छाया में पूरा परिवार स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। इनके कारण घर में रिश्तेदारों का हमेशा आगमन होता है। अन्यथा आज जब सब इतने व्यस्त हो गए हैं कि मेल जोल आना जाना लगभग नहीं के बराबर है। घर के बच्चों को संस्कार देने का कार्य बुजुर्गों से अच्छा कोई नहीं करता है। समय समय पर अपनी कीमती सलाह भी बच्चों को देते हैं। छोटे बच्चों को शिक्षित करने का कार्य भी वे अपने ऊपर ले लेते हैं। अच्छा होना व बिगड़ना ये सब अपनी जगह पर है, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। परंतु यह सत्य है कि वह लोग जिनके साथ उनके बड़े बुजुर्ग रहते हैं और जब अपनी सामर्थ्य तथा ऊर्जा का उनके सानिध्य में उपयोग करते हैं तो उसका सकारात्मक फल प्राप्त होता है, जिसका प्रभाव से हमारे समाज सशक्त होता है। पहले संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी, जिसमें हमारे बड़े बुजुर्ग अपने अनुभवों को अपने परिवार के साथ बांटते थे। परिवार में किसी भी तरह की समस्या होती थी तो उसे अपने अनुभवों का इस्तेमाल कर समस्या का समाधान कर देते थे। आए दिन परिवार में आपस में मनमुटाव होता था, लोगों में आपस में दूरी बन जाती थी। ऐसी स्थिति में हमारे बुजुर्ग अपने स्तर पर लोगों को समझा कर मेल मिलाप करा देते थे, जिसका प्रभाव हमारे समाज पर पड़ता था। बड़े बुजुर्ग न केवल परिवार का बल्कि गांव में भी होने वाले मनमुटाव को पंचायत के माध्यम से समाधान किया करते थे। हमने तो सुना ही है कि एकता ही बल है, जिसमें एक बार बुजुर्ग ने अपने बच्चों को बारी बारी से लकड़ी के बंडल को तोड़ने के लिए दिया, परंतु वह किसी से नहीं टूट पाया। बाद में बंडल की एक एक लकड़ी निकालकर सभी बच्चों में बांट दिया और उसे तोड़ने के लिए कहा। सभी ने आसानी से तोड़ दिया। अब बुजुर्ग ने अपने बच्चों को समझाते हुए कहा कि हम लोग जब एक साथ रहेंगे तो कोई हमें तोड़ नहीं पाएगा। इस तरह से अपने परिवार को समझाकर बांधकर रखते हैं। क्योंकि परिवार समाज की एक इकाई है, अतः जितना सशक्त एवं समृद्ध परिवार होगा उतना ही सशक्त एवं समृद्ध हमारा समाज होगा। बुजुर्ग पेड़ों की जड़ों की तरह होते हैं। वे हर समय परिवार को मजबूती से पकड़कर रखते हैं और उन्हें मजबूत बनाते हैं। वे आदर्श गुरु हैं। वर्षों से अर्जित सभी अनुभवों से किसी स्थिति का आकलन कर अपने बच्चों को रचनात्मक सलाह देते हैं। वे परिवार के सदस्यों के बीच विवादों को सुलझाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे उनके साथ समय बिताते हैं और उन्हें कहानियों के रूप में जीवन के महत्वपूर्ण नियम और मूल्य सिखाते हैं, जिसके प्रभाव से हमारा समाज समृद्ध होता है। वे बच्चों को बढ़ने के लिए एक
एक सुरक्षित और प्रेम पूर्वक वातावरण प्रदान करते हैं। सामान्य तौर पर हमारे बुजुर्ग हम सभी के लिए आशीर्वाद का एक रूप हैं। उन

के पास ज्ञान, अनुभव और बुद्धि का अथाह सागर है, जो युवा पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। लेकिन आजकल लोग बुजुर्गों को बेकार समझने लगे हैं। उनका मानना है कि बुजुर्गों में अब नई चीजों को सीखने की क्षमता नहीं रही, जो सच्चाई से बहुत दूर है। शोध के अनुसार मानव मस्तिष्क का विकास कभी नहीं रुकता है। बुजुर्गों के नकारात्मक भावनात्मक उत्तेजनाओं पर बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करने की संभावना कम होती है और वे अपनी भावनाओं पर अधिक नियंत्रण रखते हैं। इसके अलावा वे इस बात पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं कि जीवन में क्या मायने रखता है। वे प्रत्येक समस्या के लिए एक विशिष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि यह कुछ ऐसा है कि जो केवल समय ही हमें सिखा सकता है। और इस समय का ज्ञान बुजुर्गों को होता है, जिसका उपयोग वे समाज को समृद्ध करने में करते हैं।

0: प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि यह कुछ ऐसा है कि जो केवल समय ही हमें सिखा सकता है। और इस समय का ज्ञान बुजुर्गों को होता है, जिसका उपयोग वे समाज को समृद्ध करने में करते हैं। बावजूद इसके भारत में बुजुर्गों की स्थिति को लेकर हमेशा सवाल खड़े रहते हैं। देश में बुजुर्गों के साथ होने वाले अपराधों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। यह एक ऐसी अवस्था है जब ऐसे में बुजुर्गों को खास देखभाल की जरूरत होती है। इतिहास में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं कि माता पिता की आज्ञा से भगवान राम राजपाट त्याग कर वनों में प्रस्थान किए। माता पिता भक्त श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को कांवड़ में बैठाकर चार धाम की यात्रा कराई। फिर क्यों आधुनिक समाज में वृद्ध माता पिता तथा उनकी संतान के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं? संभवतः आज की दौड़ भरी जिंदगी में व्यक्ति अपने लिए ही दो पल नहीं निकाल पाता है, तो फिर अन्य जिम्मेदारियों को कैसे पूरा करे? और यही सोच उसके व्यवहार और विचारों से मेल नहीं खाती है, जिसके कारण परिवार में और खास तौर से उसके माता पिता से दूरियां बढ़ती हैं। कुछ कारण ना होते हुए भी दोनों पीढ़ियों के बीच एक अदृश्य दीवार सी खड़ी हो जाती है। दोनों एक छत के नीचे रहते हैं, प्रतिदिन एक दूसरे को देखते भी हैं, मिलते भी हैं, फिर भी एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाते हैं। युवा पीढ़ी और बुजुर्गों के बीच दूरियां बढ़ने का एकमात्र कारण दोनों की सोच व समझ में तकनीक का अभाव है। दुनिया देख चुके अपने बड़े बुजुर्गों को दरकिनार कर आजकल के युवा अपनी नई सोच से अपनी जिंदगी को संवारना चाहते हैं। परिणाम स्वरूप अपनी आजादी में रोक टोक करने वाले बड़े बुजुर्गों को वे नापसंद करते हैं। युवा पीढ़ी की सोच के अनुसार बड़े बुजुर्ग की जगह घर में नहीं बल्कि वृद्धाश्रमों में है। वहां उनकी सोच के हम उम्र लोग मिल जाएंगे, जो उनकी बातों को सुनेंगे और समझेंगे। परंतु ऐसा सोचने वाले युवाओं को क्या पता है कि हर माँ बाप की खुशी अपने परिवार में और बच्चों में होती है। उनसे दूर रहकर भला वे कैसे खुश रह सकते हैं? परिवार में वट वृक्ष के समान समझे जाने वाले बड़े बुजुर्ग आम परिवार में ही नहीं बल्कि समाज में अपने अस्तित्व को तराशते नजर आ रहे हैं। तिनका तिनका जोड़कर अपने बच्चों के लिए आसियाने बनाने वाले ये पुरानी पीढ़ी के लोग अब खुद के आसियाने की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। बस यहाँ कमी है उस औलाद की, जिन्हें माँ बाप ने अपना खून पसीना एक करके पढ़ाया लिखाया, परंतु उसी ने अपने बुजुर्ग माँ बाप को दर दर ठोकरे खाने को मजबूर कर दिया है। बगैर कुछ सोचे समझे हम भी दूसरों की देखा देखी एकल परिवार प्रणाली को अपना कर अपनों से ही किनारा कर रहे हैं। विश्व के अनेक देशों से बुजुर्गों पर हो रहे अत्याचारों, उनकी बिगड़ती सेहत की खबरें आती रहती हैं। इसी समस्याओं को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र ने बुजुर्गों के प्रति लोगों के मन में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 14 दिसंबर 1990 को यह निर्णय लिया कि प्रति वर्ष 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस तरह 1 अक्टूबर 1991 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस मनाया गया। बुजुर्गों के कल्याण और देखभाल के लिए हमें पहले से मौजूद सामाजिक सहायता प्रणालियों, पारंपरिक सामाजिक संस्थानों जैसे परिवार और रिश्तेदारी, पड़ोस के बंधन, सामुदायिक बंधन और सामुदायिक भागीदारी को पुनर्जीवित करना होगा। और रिश्तेदारी को बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता दिखानी होगी। वृद्धावस्था जीवन का अनिवार्य सत्य है। जो आज युवा है वह कल बूढ़ा भी होंगे ही। ऐसे में युवाओं को एक बात बड़ी गहराई से बैठा लेनी होगी कि उन्हें भी समय के इस चक्र से गुजरना होगा और बुजुर्गों का आदर, सम्मान व सेवा करना होगा। तभी हम और हमारा समाज उनके अनुभवों एवं यादों के सहारे अपने आप को सवार एवं समृद्ध कर सकते हैं। नई पीढ़ी को यह संकल्प लेना होगा कि पुरानी पीढ़ी के अनुभव को आत्मसात करते हुए कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, तभी एक समृद्ध समाज तथा गौरवशाली राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा।
1: अभी आप अलका कुमारी की वार्ता अपने जीवन के अनुभव और यादों से समाज को समृद्ध करते हैं बुजुर्ग इस विषय पर सुन रहे थे। इसके साथ ही कार्यक्रम अक्षयवट अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये

अपना केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए देशगान।

0: लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मान और प्रिथा मजुमदार की आवाज़ों में अभी आप वीर जारा का ये गीत सुन रहे थे। इसके साथ ही देशगान अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। श्री यानवा पंचायत से ओम राजेश कुमार रंजन है यशस्वी मुखिया।
2: मैं राजेश कुमार रंजन, ग्राम पंचायत श्रीमा। हमने RWD के प्रयास से ग्रामीण कार्य विभाग से मुख्य सड़क से पक्की रोड तक हमने जुड़वाए, कुछ ग्राम पंचायत से कार्य करवाए, अभी वो सब गांव खुशहाल है। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया के तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं कि गांव बनेगा तभी देश बढ़ेगा।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।

आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। आइए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम के आरंभ में। सुनिए फिल्म बंटी और बबली का ये गीत, आलिशा चिनाय, शंकर महादेवन और जावेद अली की आवाज़ों में। गुलजार की रचना है, संगीत दिया है शंकर एशान लॉय ने।

मोहब्बतें। अब आइए इस फिल्म का गीत सुनते हैं उद्भव मनोहर सेट्ठी और ईशान प्रीता मजूमदार, श्वेता पंडित सोनाली की आवाज़ों में।

अब आइए अलीशा चिनाय और साथी को सुनते हैं फिल्म विजय पथ में। श्याम अनुराग की रचना है, संगीत दिया है अनु मलिक ने।

टेस्ट सैंडविच, हैमबर्गर या बटर रोल, सबसे मैं हूँ टेस्टी, सुन ले मैं हूँ बेबी डॉल। गुस्सा तेरी गोली जैसा बोल तलवार से, दिल का शिकार कर, हनी जरा।

0: कार्यक्रम के आखिर में सुनिए फिल्म फूल और कांटे का ये गीत अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में। समीर की रचना है, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।
1: मैंने प्यार

आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव भी 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्स पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्य में 53,000 करोड़ रुपए की लागत से 5 प्रमुख सड़क और पुल परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। इस प्रस्ताव को जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कल नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है। केंद्र सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला देते हुए सरकार से अंतिम तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया था। सरकार ने करदाताओं को भी सलाह दी है कि वे समय रहते अपील दायर कर दें और अंतिम तिथि का इंतजार न करें। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज कहा कि भारतीय सेना को अपनी शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी आज सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। अपनी विदाई समारोह के तहत सेना प्रमुख द्विवेदी ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 4 दशकों से अधिक समय तक भारतीय सेना में सेवा करना उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर कल से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। गौरतलब है कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों पर की बिक्री पर 12 जून से अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भोजपुर कथित फर्जी पुलिस मुठभेड़ मामले की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति शीला नागू की अवकाशकालीन पीठ ने याचिकाकर्ता को इस मामले में पहले उच्च न्यायालय का रुख करने को कहा है। यह याचिका अधिवक्ता विशाल तिवारी ने दाखिल की थी। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने वाली महत्वाकांक्षी योजना विकसित भारत जीराम जी कल से प्रदेश भर में लागू की जाएगी। इसके तहत हर वयस्क व्यक्ति को वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। ग्राम पंचायतें योजना का निर्माण करेंगी और श्रमिकों के बैंक खातों में मजदूरी का सीधा और समयबद्ध भुगतान किया जाएगा। जीराम जी योजना वर्तमान में चल रही मनरेगा योजना का स्थान लेगी। राज्य के उत्तरी हिस्सों में मानसून की सक्रियता से कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जिले के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली जिलों में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। इधर पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में कुछ स्थानों पर बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पटना और आसपास के क्षेत्रों में आज भी बादल छाए हुए हैं। सहकारिता मंत्री राम

कृपाल यादव की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राज्य सरकार के कई मंत्री, विधायक और पार्षद ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल लिया। अररिया जिले की महिला थाना पुलिस ने एक मामले के अनुसंधान के दौरान वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम चंपारण संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने आज बेतिया अतिथि गृह में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी साझा की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, लीजिए अब रोजगार सूचना सुनिए। कर्मचारी चयन आयोग SSC 10+2 कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के कुल 3,522 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। इसके लिए आयु सीमा, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NIACL अप्रेंटिस के कुल 550 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। इसके लिए आयु सीमा, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जून 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.vfsissc.com से प्राप्त किया जा सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI प्रोविजनरी ऑफिसर PO के कुल 1,500 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। आयु सीमा, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.sbi.bank.in से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी एक बार फिर से सुन लें, www.sbi.bank.in से प्राप्त किया जा सकता है। रोजगार से संबंधित सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्स पर। इस समय 2:15 होने को हैं। दोपहर समाचार के लिए आइए अब हम आप

0: बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के ग्रे सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। ईरान के दोहा में बैठक से इंकार के बाद अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हारकर फीफा विश्व कप से बाहर। मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। यूरोबैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरोबैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। कल संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी बीएलओ विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 बीएलओ पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र बीएलओ को वापस करें ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर बीएलओ और बीएलए 2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 अभियान को गति देने के लिए # झारखंड एसआईआर के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1021 बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ जिले के सभी 1021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित

0: करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत आईएनएस देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
1: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने की। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सेक्रीफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
3: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से

0: व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि FATF की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
2: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग 1 वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए UPI के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए फिल्म क्रांति का ये गीत। लता मंगेशकर और नितिन

सौतन, इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में। सावन कुमार की रचना है, संगीत दिया है उषा खन्ना ने।

सौतन की बेटी। अब आइए इस फिल्म का गीत सुनते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में। सावन कुमार की रचना है, संगीत दिया है बेतपाल ने।

रचना निदा फाजली की, संगीत उषा खन्ना का। स्वर दिया है लता मंगेशकर ने और फिल्म का नाम है स्वीकार किया मैंने।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए फिल्म हम हैं राही प्यार के का ये गीत कुमार सानू, अलका याग्निक और साथी की आवाज़ों में। समीर की रचना है, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

21 किलो हर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बज रहे हैं। इसी के साथ हमारी आज की प्रथम सभा समाप्त होती है। हम पुनः आपके लिए कार्यक्रम लेकर उपस्थित होंगे शाम 4:28 से। जय हिंद।

0: सहेली
1: सभी सखी सहेलियों और सखाओं को राजुल का नमस्कार और साथ में है सोनाली, आपको भी नमस्कार।
2: राजुल जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार। क्या हाल चाल है राजुल जी?
1: बस बढ़िया है, आप सुनाइए कैसे हैं?
2: मैं भी बहुत मजे में हूँ। और ये जो बारिश है ना, ये किसी छोटे नटखट बच्चे की तरह हो गई है, बीच में से झमाझम बरस जाती है और फिर चुपचाप से छुप जाती है, तो इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो हम फिर परेशान हो जाते हैं, और जब हम परेशान होते हैं तो फिर से झमाझम बारिश हो जाती है।
1: तो ये कहो ना कि दरअसल ये जो बारिश है वो आपको परेशान नहीं देख सकती, बस जैसे ही परेशान देखती है कि अरे सोनाली परेशान हो रही, तुरंत आ जाती है। वैसे एक बात बताएं कि हमारे वो मित्र जो कि हमसे दूर हैं, जहाँ पे अभी बारिश नहीं शुरू हुई है, उनके लिए ये चीज बड़ी ही सुन के उनको बहुत वो होता है कि यहाँ तो बहुत तेज गर्मी पड़ रही है और बारिश तो हो नहीं रही है, तो उनको ये बात सुन के बड़ा ही अजीब सा लगता है। लेकिन भाई जहाँ बारिश हो रही है और जहाँ बारिश नहीं हो रही है, वहां पर भी बारिश शुरू हो जाए हम तो यही कहेंगे।
3: बस इंतजार करना जरूरी है क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मीठा होता है। और इसके साथ ही साथ एक बात ये है कि आज जो हम लोग बातें करने वाले हैं ना, उसमें जो बातें हैं वो बिल्कुल रिमझिम की तरह बरसती हुई एकदम शांत कर देने वाली बातें हैं। जैसे कि हम आज बात करेंगे बुजुर्गों के अकेलेपन के बारे में।
3: अकेलापन जो है ना, ये एक ऐसी अवस्था है जो बहुत परेशान कर देती है, पर जो घर वाले हैं उनकी थोड़ी जिम्मेदारी है कि उनके जीवन में सुकून के पल आए, तो उनसे मिलजुल करना बहुत ज़रूरी है, उन्हें अपने साथ शामिल करना बहुत ज़रूरी है। तो बुजुर्गों का अकेलापन ये एक विषय है। साथ ही जैसे मैंने बच्चों का जिक्र किया, तो बातें हल्की फुल्की, तो इसमें छोटे बच्चों की शरारतें, तो छोटे बच्चे जो इतने शरारती होते हैं, तो बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने इस विषय पर कमेंट्स लिखे भी हैं, पर उन्होंने आम तौर पर बच्चे शरारती होते हैं इस बारे में लिखा है, पर आपके घर में भी अगर शरारती बच्चे हैं तो उन्होंने क्या शरारती की है? कभी कभी ऐसा था ना राजुल जी कि उन्होंने किसी कुर्सी में है ना अपना सिर फंसा लिया है, या फिर उन्होंने जो सीढ़ी के बगल में जो ग्रिल लगी होती है उसमें अपना पैर फंसा लिया है, या फिर बहुत सारी कोल्ड क्रीम है वो सर में लगा ली है, लिपस्टिक मम्मी
1: के। एक संदेश मैंने ऐसा पढ़ा था कि उसने खूब सारी कोल्ड क्रीम पोत ली थी।
3: तो ऐसी शरारतें होती है, कभी कभी हम परेशान भी हो जाते हैं।
1: कुछ बच्चे तो वो जो रसोई के बर्तनों से खेलते हैं,
3: हाँ।
1: और उसके बाद पता चला कि बर्तन तो आप ढूंढ रहे हैं, उस समय चिमटा ढूंढ रहे हैं या कुछ ढूंढ रहे हैं, और तो वो पता चला खिलौने की बास्केट में पड़ा हुआ है।
3: और कभी कभी बच्चे ऐसी शरारतें करते हैं जो हमें तकलीफ

0: में ले जाते हैं, जैसे कि पैसा निगल लिया है, सिक्का
1: हाँ
0: निगल लेते हैं। तो इस तरह की शरारतें आपके घर में क्या हुई है वो हमें लिखकर भेजिए। साथ ही उद्यमी महिला के बारे में हम जानकारी देते हैं हर मंगलवार को, तो आज हमने चुना है अदिति गुप्ता को। और साथ ही मोहरों की दुनिया, इसमें पानी पानी होना
1: ऊपर से पानी पानी हो रहा है आसमान, और हम पानी पानी होने की बात करेंगे जब स्थितियां ऐसी हो जाती हैं। और आज हम छोटे बच्चों की शरारतों के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो मतलब कई बार स्थितियां ऐसी भी हो जाती हैं कि उनकी शरारतों के सामने वो कुछ ऐसी बातें कह देते हैं कि हम
0: कि
1: पानी पानी हो जाते
0: माता
1: हैं।
0: पिता पानी पानी हो जाओ, यानी यूं कह लीजिए राजुल जी कि वो हमारी पोल खोल देते हैं
1: पोल खोल देते हैं, सही बात है।
0: सबके।
1: वैसे ये सब जो बातें होती हैं ना, इनके बीच में अगर थोड़ा थोड़ा गीत भी चलता रहे
0: तो मजा
1: तो
0: आ जाता है।
1: मजा आ जाता है।
0: सुनते हैं गीत।
2: अरे अरे ए ए ए

0: भाई सोनाली अपनी सवारी तो चल दी है और चलते चलते पहुंच गई है वहां पर जहां पर हम उद्यमी महिला के बारे में बताते हैं।
1: यानी झारखंड पहुंच गए आप।
0: हाँ।
1: तो झारखंड से है अदिति गुप्ता, जो भारत की उन प्रेरणादायक महिलाओं में से एक है जिन्होंने महामारी से जुड़ी हुई झिझक और गलत धारणाओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। यानी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स कहते हैं, महामारी कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं, इस बारे में लोग खुलकर नहीं बात करते।
0: टैबू है ये एक, और इस बारे में ज्यादातर लोग खामोश रहना, एक जमाना था जब नहीं बताया जाता था, कहते भी नहीं थे। उन्होंने ही महिलाओं और किशोरियों के मासिक धर्म और स्वच्छता जागरूकता पर काम किया और इसे शिक्षा और संवाद का विषय बताया। मतलब ये शर्माने की, घबराने की, मुंह छिपाने की या सबसे कोने में बैठकर की बात नहीं है, बल्कि ये अपने शरीर के प्रति जागृत रहने की, सचेत रहने की और इससे जुड़ी जितनी सतर्कताएं हैं उन्हें इस्तेमाल में लाने की चीज है, ये बताने वाली है अदिति गुप्ता। बाकी बहुत बड़ा काम है
1: और ये तो बहुत नेचुरल प्रोसेस है ना। और महिलाओं को यानी बच्चियों को ये हम उस बारे में डरा देते हैं या कुछ बुरा बुरा कह देते हैं, बल्कि उन्हें इस बारे में बताना चाहिए कि जब पीरियड्स आते हैं तभी कोई महिला माँ बन सकती है। तो ये प्रकृति का दिया हुआ उपहार है, बल्कि हम उसे कहते हैं अभिशाप समझ बैठते हैं कि अरे ये क्या हमारे नसीब में है, पर उसे बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे अंदाज के साथ अगर हम बच्चियों को समझाएं तो ये बहुत वरदान साबित तो हो ही चुका है और उसे हम बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं
0: और शरीर की एक आवश्यक क्रिया है
1: जी। तो अदिति गुप्ता का जन्म झारखंड में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने देखा कि कई लड़कियां मासिक धर्म को लेकर सही जानकारी के अभाव और सामाजिक संकोच का सामना करती है और इस विषय पर घर और समाज में खुलकर बात नहीं की जाती, जिसके कारण कई सारी लड़कियों में डर और भ्रम पैदा हो जाता था।
0: और अपने जीवन के इन्हीं अनुभवों से अदिति को ये समझ में आया कि केवल चुप रहने से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि सही जानकारी से और इस बारे में बात करके, इस बारे में जानकारी पहुंचा कर ही बदलाव लाया जा सकता है। वैसे उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से डिजाइन की शिक्षा प्राप्त की,
1: लेकिन उनकी रुचि केवल करियर बनाने तक सीमित नहीं रही राजुल जी, बल्कि वे समाज की वास्तविक समस्याओं को समझकर उनका समाधान खोजने में विश्वास रखती थी और इसी के मद्देनजर उन्होंने मेंस्ट्रुपीडिया नामक कॉमिक बुक की शुरुआत की।
0: अपने पति तुरहिन पाल के साथ मिलकर उन्होंने मेंस्ट्रुपीडिया की शुरुआत की थी और इसका उद्देश्य था कि लड़कियों को मासिक धर्म के बारे में सरल भाषा में वैज्ञानिक और सही जानकारी मिल सके।
1: अब सरल भाषा बच्चों के लिए यानी छोटी बच्चियों के लिए कॉमिक से बढ़कर क्या
0: होगी, बहुत अच्छी पहल है
1: जी। तो उन्होंने कॉमिक बुक, चित्रों और आसान तरीके से समझाने वाली सामग्री का उपयोग किया ताकि किशोरियां बिना डर बिना झिझक के इस विषय को समझ सके।
0: और इनके प्रयासों से कई परिवारों और स्कूलों में इस विषय पर बातचीत को बढ़ावा मिला। अदिति ने यह संदेश दिया कि स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर जानकारी छिपाने के बजाय जागरूकता फैलानी चाहिए
1: जी। और उनका काम केवल महिलाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने समाज को ये सोचने के लिए प्रेरित किया कि किसी भी समस्या को समझने और हल करने के लिए संवाद का होना कितना जरूरी है।
0: बिल्कुल। और अदिति गुप्ता को उनके सामाजिक कार्यों के लिए कई मंचों पर सम्मान मिला। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों में अंडर 30 की सूची में स्थान मिला और वो बीबीसी की प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भी शामिल रही।
1: और अदिति गुप्ता का जीवन बताता है कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए किसी बड़े पद की आवश्यकता नहीं होती, एक छोटी सी समस्या को गंभीरता से समझकर सही दिशा में प्रयास करके बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। और अदिति गुप्ता ने एक ऐसे विषय पर आवाज उठाई है राजुल जी, जिस पर लोग चुप रहते थे, उनकी सोच ने चुप्पी को जागरूकता में बदल दिया।
0: और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जागरूकता आई तो कम से कम बच्चियों में ये एक विश्वास आया, क्योंकि बहुत सारे घरों में अभी भी ये होता है कि इन दिनों ये छूना नहीं है या दूर रहना है, या बहुत सारे घरों में अगर बेटे भी हैं तो ये बताया जाता है कि अभी ये गंदी हो गई है
1: या चिड़िया ने छू लिया।
0: हाँ, तो इस तरह की बातें सुन के बेटों के मन में पहले से बात आती है कि ये गंदी होती है, ये गंदी, मैं गंदा नहीं होता हूँ,
1: ये गंदी।
0: तो एक चीज वो जो वैषम्य पैदा होता है
1: बेटे और,
0: हाँ, वो भी एक उन्होंने दूर करने की कोशिश की है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इस विषय पर बातचीत होने लगी है। अब देखो ना हमारे

0: तो सोनाली, पूरा हुआ अंतराल और हम लौट आए हैं। विषय हम लोग बहुत गंभीर था जिस पर बात कर रहे थे
1: जी,
0: मासिक धर्म की बात कर रहे थे।

0: तो सोनाली, पूरा हुआ अंतराल और हम लौट आए हैं। विषय हम लोग बहुत गंभीर था जिस पर बात कर रहे थे
1: जी।
0: मासिक धर्म की बात कर रहे थे, तो आप कुछ कह रही थी इसके बारे में।
1: जी राजुल जी, ऐसा है ना कि इसके पीछे भी, जैसे पुराने जमाने में आपने जैसे कहा कि महिलाओं को दूर बिठाया जाता था या फिर घर में छूना नहीं है, तो उस जमाने में काम भी महिलाएं बहुत भारी भरकम किया करती थी। जैसे कुएं से पानी निकाल कर लाना है, फिर चक्की से आटा पीसना है, फिर खेतों में काम करना है, तो उस वक्त महिलाओं को थोड़ा आराम की जरूरत होती थी, इसलिए उस जमाने में इस तरह से उन्हें अलग बिठाया जाता था। पर अब हम हल्का फुल्का काम करने लग गए, फिर भी हम उन्हीं बातों को, उन्हीं रूढ़ी वादी बातों को लेकर चले। और तो और स्वच्छता के प्रति भी हम जागरूक नहीं है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन दिनों में नहाना नहीं है, पर कितनी गलत बात है। उस वक्त स्वच्छता का, हाइजीन का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो हमें रोज नहाना चाहिए, स्वच्छता का कपड़े बदलना चाहिए और जो पैड्स वगैरह है उसे भी समय समय पर बदलना।
0: और अब तो इसके विषय में सरकार की तरफ से भी, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी बहुत पहल हो रही है, मुफ्त में पैड्स गांव में दिए जाते हैं। और एक बात और है, ये भी कहा जाता है, जब कई बार कोसते भी देखा है, पढ़े लिखे बच्चियों को भी इस बात को कोसते हुए देखा है कि अरे ये क्या है, तो ये वो समय होता है जब कहा जाता है कि स्त्री सबसे ज्यादा, उसके अंदर जो शक्ति, शक्ति कहा जाता है ना, तो शक्ति उसके अंदर सबसे ज्यादा इस समय होती है। और इस बारे में कई, अगर हम गौर से देखें तो बहुत सारे हमें उदाहरण और कई सारी ऐसी रीतियां भी मिल जाएंगी जो इस बात को बिल्कुल
1: प्रूव करती है,
0: प्रूव करती है, प्रमाणित करती है कि भाई ये बहुत खास समय होता है। तो इस खास समय को खास तरीके से बिताने के लिए अलग बिठाया जाता था, ना कि इसलिए क्योंकि गंदे हो जाते हैं। तो गंदगी की यहाँ पर सिर्फ तभी तक रहती है जब तक हम नहाते नहीं हैं या कुछ भी दूसरी तरह की गंदगी से अपने आप को साफ करने की कोशिश करते हैं, तब गंदगी नहीं रहती। जब हमें कहीं पर आराम करने के लिए छोड़ा जाता है या अच्छे से खाने के लिए कहा जाता है, बहुत जगह ये भी
1: उस
0: होता
1: है, उस वक्त हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए, बहुत आराम करना चाहिए। इस तरह से हम देखभाल कर सकते हैं अपने घर वाली, जो घर की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उन्हें इस तरह से आराम दिया जा सकता है, ना कि उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाए और उन्हें इस तरह से व्यवहार किया जाए कि अरे दूर रहो, छुओ ना, बल्कि उन्हें बहुत आराम और बहुत प्यार से उस वक्त अगर संभाले तो ये दिन भी बहुत आसानी से निकल जाते हैं।
0: और साथ ही साथ अगर हम गीत सुनते हुए ऐसी गंभीर विषयों पर बातचीत करते हैं
1: तो कार्यक्रम में मजा आ जाएगा।

0: चांद कहाँ खोया है ये ढूंढने भी कुछ बच्चे बहुत जिद करते हैं। जब अमावस्या होती है या जिन रातों में चांद नहीं निकलता, तो कई बार ऐसा भी होता था कि जैसे मेरे घर के पड़ोस में एक छोटा बच्चा था, तो वो ये बात कहता था कि आप तो कहते हो कि रोज़ चांद निकलता है, रोज़ सूरज और चांद तो रोज़ आते हैं, देखो तुम्हें भी जैसे हम लोग बच्चों को बताने के लिए कहते थे ना कि देखो भाई सूरज चांद रोज़ समय पे आ जाते हैं, तुम्हें
1: तुम
0: भी सब
1: समय से
0: काम।
1: जाया करो ट्यूशन
0: हाँ,
1: स्कूल।
0: तो उसने कहा कहाँ आते, देखिए चांद तो आ जाया ही नहीं है। तो भाई हमने कहा ये हाजिर जवाबी बच्चों की तो बिल्कुल पानी पानी ही कर देती है।
1: ये जो बच्चे होते हैं हमें बहुत बार शर्मसार कर जाते हैं। ये आज बच्चों की शरारतों के बारे में हम बातें कर रहे हैं, बातें हल्की फुल्की में। तो इसमें एक सखी ने हमारे लिखा है कि मेरे बेटे ने 4 साल का था तब एक कप में मिस्त्री लोग काम कर रहे थे, केरोसिन तेल रखा था, वहां पहुंच गया उसके पास और उसने केरोसिन तेल पी लिया पानी
0: अरे
1: समझ कर।
0: बाप रे,
1: फिर उसको हम लोग को अस्पताल लेकर भागना पड़ा, 2 दिन अस्पताल में भर्ती रहा, फिर ठीक हो गया। यानी देखिए कितने परेशान हो जाते हैं ना माता पिता दादा दादी जब इस तरह से बच्चे ये कर देते हैं। और एक लिखते हैं कि छोटे बच्चों की शरारतें, छोटे बच्चों की शरण में हमारे जीवन में खुशियां भर देती है, उनकी शरारती जब याद आती है तो आप ही चेहरा खिल उठता है। मेरा नाती 2 साल का है, वो सारी छोटी छोटी चीजें छोटी जगह पर छिपा देता है, उसे याद भी रहता है कि कौन सी चीज उसने कहाँ रखी है। पूछो तो बताता है कि जब मैं गुस्सा करती हूँ तो मुझसे कहता है कि नानी मैं पुलिस बोल रहा हूँ, प्रिंस नाम है, और मुझे डांट लगाओगे तो आपको जेल में बंद कर दूंगा।
0: अरे
1: मैं कहती हूँ तुम नानी कहकर किसे बुलाओगे, तो कहता है मैं पहले दरवाजा खोलूंगा फिर आपको नानी कहकर बुलाऊंगा फिर बंद कर दूंगा। बहुत ही लटके झटके से बोलता है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, घर भरारा भरा रहता है। हमें सुन के ही इतनी हंसी आ रही है
0: हाँ, तो
1: तो
0: इनके
1: और
0: मतलब
1: जो
0: इन्हें तो डांटना भी मुश्किल हो जाता होगा। एक संदेश में बताया है कि हमारे पड़ोस में रहने वाले दंपति का बेटा अंशु भी बहुत शरारती है। अभी वो 3 वर्ष का है, उसने अभी साइकिल चलाना सीखा है और उसके दादाजी ने छोटी सी सुंदर साइकिल खरीद कर दी है। कुछ दिन पूर्व वो अपने मम्मी पापा के साथ नाना नानी के घर गया था, तो अपनी साइकिल की चाबी अपनी दादी के तकिए के नीचे छुपा कर गया था और दादी को बोल कर गया था कि दादी ध्यान रखिएगा कहीं दादाजी उसकी साइकिल लेकर ऑफिस ना चले जाए।
1: कितनी मासूमियत है कि उन्हें ऐसा लगा कि इतने लंबे चौड़े इतने ऊंचे दादाजी इतनी छोटी सी ट्राइसिकल कैसे
0: हाँ, और
1: चलाएंगे।
0: कितना ये भाव भी होता है ना बच्चों में कि ये मेरी चीज है, ये पता नहीं अभी ये ले लेंगे।
1: नहीं, और उन्हें ऐसा लगता है ना कि पापा के पास में बाइक है या कार
0: हाँ
1: है या फिर मम्मी के पास तो पूरा किचन है, उनकी सारी
0: हाँ
1: चीजें मम्मी की, तो ये मेरी साइकिल है या मेरे खिलौने ये मेरे
0: बिल्कुल
1: हैं। एक साथी ने लिखा है कि मेरा बेटा जब छोटा था तो पूरा दिन उधम मचा कर रखता था। छोटे बच्चों की शरारतें घर आंगन में हंसी खुशियां बिखेर देती है और उनकी मासूम हरकतें नटखट बातें और भोली मुस्कान सभी का मन मोह लेती है। कभी वो खिलौने बिखेर देते हैं तो कभी नई नई बातें सीखकर सबको चौंका देते हैं। उनकी शरारतों में मासूमियत छिपी होती है, इसलिए उन्हें प्यार और सही मार्गदर्शन के साथ समझना चाहिए।
0: और एक हमारे साथी ने एक बड़ी खतरनाक समस्या की तरफ इशारा किया है कि भाई आजकल तो छोटे बच्चों में भी इंटरनेट ने अपने गिरफ्त में ले लिया है और इसके चलते अपनों के आज्ञाओं का उल्लंघन सार्वजनिक रूप से ही देखा जा रहा है और उनके शैतानी भरी शरारत से ना ही उनकी आंखों पर ही चश्मे चढ़े हुए हैं और हम लोग अपने अपने आंखों पर चश्मे चढ़ाए हुए हैं। जाने कैसा ये आश्चर्य है जो उनके द्वारा किए जाने वाली शरारतें ही अब स्क्रीन पर ही देखा जा सकता है। मतलब वो वही शरारतें कर रहे हैं जो वो देख रहे हैं।
1: देख रहे हैं। वही एक साथी लिखते हैं कि बच्चों की शरारत बेहद पसंद आती है, तो कभी हंसी भी आ जाती है, तो कभी कभी नाक में दम भी हो जाता है, तो कभी माहौल एकदम खुशनुमा हो जाता है। हमारे घर में कई छोटे

0: बच्चे थे, एक बार वीसीआर के अंदर उन लोगों ने न्यूज़पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें डाल दिए।
1: ओ
0: अब वीसीआर चलना बंद हो गया। जब
1: हाँ
0: मैकेनिक को बुलाया तो उसने इतने सारे कागज निकाले, पूछने पर किसी ने भी नहीं बताया कि किसने काम किया था।
1: सच में ये शरारतें तो खत्म होने का मतलब
0: नाम ही नहीं
1: नाम
0: लेती।
1: नहीं लेती और लगता है कि चलती भी रहे, बाद में याद करके कितनी हंसी आती है।
0: हाँ
1: अच्छा, अब एक मुस्कुराहट और सज जाएगी अगर हम एक गीत सुन लें।
0: सुनते हैं गीत।
2: ओ मेरी ओ मेरी ओ

0: सोनाली, ब्रेक पूरा हुआ और हम लौट आए हैं ब्रेक के बाद।
1: कार्यक्रम है सखी सहेली।
0: सहेली
1: और एक साथी ने लिखा है कि बचपन में मैंने भी एक शरारत की थी। 1960 के आसपास हमारे घर बिजली का कनेक्शन आया था और उन दिनों कुतूहलवश वायर से जुड़े होल्डर में लैंप लगाकर वायर को सीधा प्लग में डालकर स्विच ऑन करके जो स्पार्क हुआ उससे मेरी उंगली को झटका लगा।
0: ओ
1: पर चीखने के बाद मेरे बड़े भैया ने स्विच ऑफ कर मुझे छुड़ा तो लिया, लेकिन उंगली पर स्पार्क के निशान के साथ काली पड़ गई थी उंगली, और ऊपर से डांट के साथ मार भी पड़ी थी। वो भी झटका अलग से लगा था। साथ ही एक साथी ने लिखा है कि खुद को ट्रंक के अंदर, वुलन कपड़े का जो ट्रंक होता है उसमें
0: हाँ,
1: सारे कपड़े निकाले और खुद को ट्रंक के अंदर बंद कर
0: ये
1: दिया
0: बहुत
1: था।
0: खतरनाक शरारत होती है जो बच्चे करते हैं, क्योंकि कई बार इससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता
1: बहुत
0: है,
1: ज्यादा
0: चोट
1: खतरा।
0: भी बहुत गहरी लग सकती है। एक बड़ी मासूम सी शरारत हमारे एक और साथी ने साझा की है कि सर्दियों के दिन में हमारे घर में परिवार और बच्चे आए थे। वो देख रही थी कि सभी बॉडी लोशन और क्रीम का प्रयोग अपने शरीर पे करते हैं। उसने अपने टेडी बियर को पूरा कोल्ड क्रीम निकाल कर टेडी लगा दिया। हाँ, और बहुत बहुत ज्यादा लगा देने पर उससे संभाला नहीं तो उसने उसे बेड के नीचे छुपा दिया। घर में महक आ रही थी और जहां फर्श पर भी गिरा तो पैर में चिपक रहा था। ओ, तो बच्ची की बड़ी बहन ने बताया कि इसने कुछ किया है, तो पूरे बेड पर उसने फैला दिया था। जब उसकी माँ ने डांटा तो बोली कि टेडी को ठंड लग रही थी तो इसलिए उसे मालिश कर रही थी, जैसे नानी मुझे करती है तो मैं टेडी को कर रही थी। तो फिर उसे समझाया गया कि भाई तुम टैडी को मत करो, तुम बच्ची हो, तुम्हारी मालिश होगी, तुम नाना नानी की कर दिया करो।
1: हाँ, कितना कितना मासूमियत भरा सवाल था और जवाब भी बड़ा ही मासूमियत भरा था। एक ने लिखा है कि एक बच्चा बहुत देर से एक घर की बेल बजाने की कोशिश कर रहा था लेकिन पहुंच नहीं पा रहा था, तो हमने सोचा कि उसकी मदद कर दे। हमने बेल बजा दिया, फिर बच्चों को वॉशरूम जाना था तो बोला अंकल अब भागो, वो घर का मालिक आ जाएगा तो हमें बहुत डांट
0: अरे
1: देगा।
0: बाप रे।
1: यानी उन्हें ऐसा लगा कि किसी उसे जाना है अंदर, तो बच्चा तो शरारत कर रहा था। उसके बाद में एक ने लिखा है कि मेरे बहन के छोटे बेटे ने उनके घर के बोरिंग यानी बोरवेल में पाना, पंचिश और ना जाने सारे औजार उसमें डाल दिए थे और सारे नए खरीदने पड़े।
0: क्या क्या तो गजब गजब शरारतें हैं। और बच्चों की ये जो मासूम शरारतें होती हैं, इन पर बिगड़ते भी हैं हम कई बार, लेकिन अगर इन्हें अगर इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो उन्हें ये शरारत करने देनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं शरारतों से उनके दिमाग का भी विकास होता है, उनके व्यक्तित्व का भी विकास होता है, और वो मिलजुल कर या किसी कठिन समय में अपने आप को कैसे निकालना है ये
1: जी।
0: भी सीखते हैं। तो बस नज़र रखनी पड़ती है बच्चों पे कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि एक बच्चा था, नया खिलौना जैसे ही उसको मिला तो वो तुरंत उसका सब ऊर्जा
1: खोल लिया
0: पुर्जा बराबर कर देता था।
1: उसने।
0: उसको बहुत शौक था मोटर कार का, हेलीकॉप्टर का, तो बस वो देखते ही तुरंत उसको
1: खोल
0: उसको
1: देता
0: चाहिए
1: था।
0: पेचकस, पेचकस से उसने तुरंत खोला वोला और सब अलग। तो भाई लोग कहते थे कि क्या करना है तुम्हें, तो कहता था मैं कोशिश कर रहा हूँ मैकेनिक बनने की, और बाद में आगे चल के वो वास्तव में
1: बहुत बड़ा इंजीनियर
0: इंजीनियर बना।
1: जी।
0: तो
1: तो
0: भाई ये कुछ
1: यानी
0: चीजें
1: उन्हें
0: होती है।
1: रोकी टोकी मत कि आपको लगता है कि भाई इतना महंगा खिलौना खरीदा और इसने तो दूसरे दिन तोड़ दिया, पर क्या पता उसकी जो क्रिएटिविटी है उससे वो उसे एक दिन बहुत बड़ा इंसान बना दे। साथ ही जो बच्चे ना क्रेयॉन होते हैं ना उससे दीवारें गंदी करते हैं, तो बहुत सारे लोग डांटते हैं पर उन्हें डांटे ना, एक छोटा सा कोना उन्हें दे दे,
0: हाँ
1: क्योंकि क्या होता है ना जो क्रेयॉन उंगलियों में पकड़ते तो उनकी उंगलियों के मसल मजबूत होते हैं,
0: हाँ
1: तो उन्हें गोदने दीजिए। ऐसा नहीं है कि हाँ पूरा ही घर गंदा मत करने दीजिए, पर उन्हें कह दीजिए कि ये जो है ना ये कोना तुम्हारा है, जहां जो या फिर व्हाइट बोर्ड आते हैं, ब्लैक बोर्ड आते हैं
0: वो लगा सकते
1: वो
0: हैं,
1: लगा सकते
0: बिल्कुल
1: हैं, या फिर ऐसे
0: कागज लगा दे, एक जो बड़े बड़े चार्ट पेपर्स आते हैं वो
1: हाँ वो
0: लगा
1: लगा
0: दें, और
1: दे।
0: कहें कभी कभी कोई कोई आए तो दिखाए भी कि देखिए भाई ये इसने बनाया है, देखिए कितना सुंदर बनाया है। बच्चों की अगर इस तरह से तारीफ भी करते रहें कि गोदने वाले बच्चे, ये गोदने वाली शरारतें बहुत होती हैं,
1: बहुत
0: तो
1: होती
0: बस ये कह दिया जाए कि भाई देखो तो कितने सुंदर सुंदर इसने कलर्स, देखा आपने कैसा इस्तेमाल किया है,
1: है।
0: तो बच्चे को लगता है कि हाँ कुछ बड़ा काम किया, और अगली बार जब वो गोदना शुरू करता है तो उसका ध्यान उन रंगों पर भी जाता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर की

0: रचनात्मकता विकसित हो रही है।
1: पर एक बात और है कि अगर उसने कुछ गलत शरारत की है, जैसे कि कैंची से काट दिया है, खुद के
0: हाँ
1: बाल ही काट देते हैं कभी
0: हाँ
1: कभी, कभी तो पलकों के बाल भी काटने से नहीं चूकते
0: हाँ
1: हैं
0: या
1: बच्चे।
0: छोटे भाई बहनों के काट देते
1: हाँ,
0: हैं।
1: तो उसकी ना बहुत बार बार लोगों को बता बता के तारीफ ना करे, तो
0: हाँ
1: उन्हें लगता रहे मैंने तो बहुत बड़ा तीर मार दिया। तब
0: हाँ
1: उन्हें समझाए कि भाई अगर ये आंख में लग जाती तो आंख हमेशा के लिए चली
0: चली
1: जाती,
0: जाती।
1: तो ये इन बातों का हमें बस ध्यान रखना
0: हाँ
1: चाहिए।
0: मतलब ऐसे चुभने वाली चीजें बच्चों की पहुंच से दूर ही रहें तो अच्छा है। नरम नरम से खेल, अच्छे अच्छे खिलौने, ये सब देकर बच्चों का बचपन ऐसा ही बना रहे जैसे कि
1: ये गाने में है।
0: हाँ।

0: सोनाली, देखिए शरारतों की बात चल रही है तो कैसे कैसे कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं। हमारी एक सखी बता रही है कि मेरा बेटा जब 6 साल का था तो एक दिन अकेले खेलते हुए किचन के स्लैब के नीचे छुप गया और सो गया। कुछ देर बाद जब उसके दादा दादी उसको ढूंढने लगे तो वो सोने के कारण रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। वो घबरा गए। मैं दूसरे शहर में थी, मुझे पता चला तो मैंने सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग में चेक किया तो पता लगा जनाब कहाँ छुपे थे। मैंने तुरंत उसके दादाजी को कॉल किया। जब वो वहां गए तो पता चला कि सो रहा है आराम से। खैर, जान में जान आई।
1: यानी दादाजी नाना जी रहे तो
0: ना
1: उसका भी कितना फायदा है ना।
0: बिल्कुल, मतलब बच्चों

0: की शरारतों के बीच में एक अंकुश भी रहता है, वैसे दादा दादी को भी अच्छा लगता है,
1: और एक है
0: अकेलापन
1: ना,
0: नहीं
1: ये
0: लगता।
1: नहीं, परिवार में पुल का काम करते हैं ना, ब्रिज का काम करते हैं,
0: बिल्कुल
1: कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो दादा दादी ब्रिज का काम करते हैं, कि उनकी बदौलत पूरा परिवार जुड़ा रहता है।
0: मूल से सूत ज्यादा प्यारा
1: प्यारा
0: होता
1: होता
0: है
1: है।
0: कहा भी जाता है, तो भाई वो अपने बच्चों को प्यार भी देते हैं, भरपूर प्यार भी देते हैं, और जो अनुभव होता है ना उनका अपने बच्चों को पालकर वो भी काम आता है।
1: बहुत काम आता है, पर अभी परिस्थितियां थोड़ी विकट
0: अलग हो
1: होने
0: गई
1: लग
0: है।
1: गई है।
0: हाँ
1: एक साथी लिखते हैं कि बुजुर्ग दादा दादी नाना नानी के साथ हम बहुत समय बिताते थे, अभी बच्चों में शायद वैसा समय नहीं है और न ही उतने शौक है उनसे कहानी सुनने के, किस्से सुनने के। सब कुछ तो उनको फोन में और टीवी में मिल जाता है, दादा दादी के साथ समय बिताना पसंद भी नहीं आता उन्हें। इसका नतीजा ये होता है कि अधिकतर बुजुर्ग अकेलेपन में ही समय बिताते हैं, जबकि बुजुर्गों के पास तो सजीव अनुभव और ज्ञान होता है, संस्कार देने की काबिलियत होती है, और सोशल मीडिया अब टीवी से जुड़ गए हैं। उस जमाने में कहाँ था सोशल मीडिया और टीवी।
0: बिल्कुल
1: तो ये एक थोड़ी सी समस्या है, परेशानी है ये।
0: परेशानी है, और इस बारे में हमारी एक सखी लिख रही है कि आजकल के समय में ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि परिवार बहुत छोटे हो गए हैं। हमारे घर में ये समस्या नहीं है, हमारा संयुक्त परिवार है, 13-14 लोग अभी साथ में हैं, तो बड़े बुजुर्गों को अकेलेपन की भावना नहीं आती है, चहल पहल हमेशा रहती है। मुझे लगता है कि एकल परिवार भी एक कारण है अकेलेपन का।
1: बहुत ही बड़ा कारण है अकेलेपन का, एकल परिवार। और सचमुच है ना, पुराने जमाने की बात की जाए ना राजुल जी, तो उस वक्त प्राइवेसी नाम की ऐसी चीज़ ही नहीं हुआ करती थी जो आजकल लोगों को चाहिए। लोगों को बस लगता है कि हमें बस हमारा स्पेशल यानी बेडरूम, उसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम उनका हो, उसमें किसी को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, बच्चों को भी सब प्राइवेसी की ज़रूरत है। पर पुराने ज़माने में सब एक दूसरे की चीज़ें इस्तेमाल करते थे, एक घर में रहते थे, लड़ते झगड़ते भी थे पर फिर एक हो जाते थे, तो एक बहुत सुंदर दिखता था ऐसा घर। पर अभी ये थोड़ा सा इसकी कमी नज़र आ रही है। एक साथ ही लिखते हैं कि बुजुर्ग अगर घर में है तो ये बात का सबसे हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास थोड़ी थोड़ी देर जाकर समय देना चाहिए, बैठना चाहिए, उनकी ज़रूरत का ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ हमारी सेवा और समय ही नहीं, उन्हें हमारा थोड़ा सा प्यार भी दे देना चाहिए, तो वे बड़े खुश हो जाते हैं।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जब रेडियो पर आपके कार्यक्रम सुनते हैं तो अकेलापन नहीं लगता, हार्ड कॉपी में किताब पढ़ते हैं जिससे मन के तूफान शांत होते हैं, सोशल मीडिया कम वापरता हूँ, कसरत करके तंदुरुस्त जीवन जीने का प्रयास है, डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखकर कहा खाओ पियो और मौज करो, सादा जीवन, किसी को मदद करने से भी अकेलापन महसूस नहीं होता।
1: क्या बात है। एक साथ ही लिखते हैं, एकल परिवारों में बुजुर्गों का अकेलेपन की समस्या बहुत ज्यादा है। बुजुर्गों का अकेलापन केवल एक भावनात्मक समस्या नहीं है, बल्कि उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसके कारण उनमें डिप्रेशन और याददाश्त कमजोर होने की जैसी समस्याएं बढ़ सकती है। इसके उनके इस खालीपन को दूर करने के लिए बातचीत, जुड़ाव और नियमित दिनचर्या बहुत जरूरी है। दो प्यार के बोल, सुविधापूर्ण उनकी दिनचर्या, इस उम्र में उनके अकेलापन दूर करने के लिए मेल मिलाप बहुत जरूरी है, जो आजकल बेहद कम हो गया है।
0: और ये एक हमारे श्रोता ने अंग्रेजी में संदेश भेजा है, आई एम अ सीनियर सिटीजन रिटायर्ड फ्रॉम बैंक एंड स्टार्टेड अ न्यू जर्नी इन रेडियो एज आरजे ऑन कम्युनिटी रेडियो, इंजॉइंग अ लॉट, आई लव रेडियो सिंस माई चाइल्डहुड, विविध भारती साथ हो तो बोर होने का सवाल ही नहीं है।
1: क्या बात है।
0: तो भाई इस तारीफ के लिए शुक्रिया, विविध भारती के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। और एक बात और इनके संदेश से पता लगती है कि अगर बुजुर्ग कोई अपना शौक डेवलप
1: जो
0: कर
1: रह
0: लेते
1: गया
0: हैं,
1: है।
0: हाँ डेवलप कर लेते हैं उस समय भी, ये सोचकर नहीं कि ये जिंदगी का अवसान है, बल्कि ये एक नया पड़ाव है, एक नई यात्रा है,
1: जी
0: और अगर वो एक कोई शौक अपना शुरू कर लेते हैं तो उससे निश्चित रूप से उन्हें अकेलापन कम महसूस होगा। ये तो सही बात है। एक हमारे पढ़ रही थी तो भी एक संदेश में शायद ये भी कहा गया कि आजकल बच्चों के पास समय नहीं होता। सही बात है, समय नहीं होता, बड़े जब होने लगते हैं तो कम समय रहता है
1: पर
0: उनके
1: अगर
0: पास।
1: ऐसा है ना कि बच्चे नहीं बात कर रहे हैं, तो बुजुर्ग खुद भी जाके बोल सकते हैं कि कैसे हो बेटा, क्या हाल चाल है, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। नहीं तो ऐसा लगता है ना कि अरे वो बात नहीं कर रहे, वो नहीं जा रहे, तो पहल दोनों तरफ से होनी
0: दोनों
1: चाहिए।
0: तरफ से होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए कि बच्चे बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, तो अगर बच्चे को उस समय उसको जो चाहिए, मान लीजिए कि बहुत व्यस्त है, पढ़ाई कर रहा है या किसी प्रोजेक्ट में अपने बिजी है, और आप सिर्फ इतनी सहायता कर रहे हैं।

0: हैं कि मान लीजिए प्रोजेक्ट बनाने में उसको कुछ काटने की जरूरत है, आप काट कर उसे वो पकड़ा देते हैं, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है।
1: उन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगता है,
0: और हमें गीत सुनना भी बहुत अच्छा लगता है।
1: सुनते हैं गीत।
2: सजना

0: भाई देखो, हमारे एक श्रोता ने अपनी दिनचर्या साझा करके बताया है कि सुबह पूजा पाठ, फिर शिवालय, फिर भोजन, फिर 1 बजे सुरीला सफर सफर, फिर सखी सहेली, फिर 5 बजे फिर आराम, और फिर 5 बजे 5 किलोमीटर वॉकिंग, फिर भोजन, फिर टीवी प्रोग्राम, फिर 5 या 6 घंटे नींद। यही है 70 साल के बुजुर्ग की दिनचर्या।
1: क्या बात है, ये तो किसी 17 साल के जो है ना युवा को भी शर्म आएगी, इतनी परफेक्ट दिनचर्या है
0: हाँ सही बात
1: आपकी।
0: है।
1: वैसे पानी पानी मुहावरे का मतलब है शर्म से पानी पानी होना। तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि पानी पानी होना, इस मुहावरे से एक बात याद आ गई। तब मेरा बेटा बहुत छोटा था और उसे लेकर मैं एक परिचित के घर गई। बातचीत के बाद मेरी परिचित चाय बनाने के लिए उठी, तो मैंने बोल दिया मैं चाय नहीं पीती, और मेरे बेटे से पूछा दूध पियोगे, तब भी मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरा बेटा भी दूध नहीं पीता था। लेकिन जैसे ही मैंने मना किया, मेरा बेटा तुरंत बोल पड़ा कि मुझे खूब गर्म दूध दीजिएगा। और आंटी सुनिए ना, मेरी मम्मा चाय नहीं कॉफी नहीं चाय नहीं कॉफी पीती
0: हाँ
1: है। इसलिए मम्मा के लिए कॉफी बना दीजिए। मुझे उस समय बहुत शर्म आई और शर्म से पानी पानी हो गई। ये
0: सही
1: सचमुच
0: बात है, बच्चे
1: बच्चे
0: पोल खोल देते
1: बहुत
0: हैं।
1: पोल खोलते हैं।
0: एक बच्चे ने कहा कि जब उसके पिताजी ने कहा कि भाई हम घर पर नहीं हैं, जाओ कह दो अंकल आए, कह दो घर पे नहीं है, तो उसने जाके कहा, पिताजी ने कहा है कि वो घर पर नहीं है। अब मतलब
1: उसने
0: पिताजी
1: बता
0: बिल्कुल,
1: दिया।
0: हाँ बिल्कुल पानी पानी, वो झक मार के फिर बाहर निकले और मिले अपने मित्र से, क्योंकि बच्चे ने बता दिया था कि पिताजी ने कहा है कि हम घर पे नहीं है।
1: एक बार एक एक व्यक्ति थे।

0: उनके मित्र आए थे, तो उन्हें अंदर से आने में थोड़ा टाइम लग रहा था, उनकी छोटी सी बेटी थी। तो अब क्या बात करें बच्चे से, तो उन्हें पूछा कि बेटा तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं, पहले नाम पूछा क्या नाम है आपका, फिर आपके पापा क्या काम करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरे पापा तो घर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, कपड़े धोते
1: सब पोल
0: हैं,
1: खोल दी।
0: सब पोल खोल दिया अंदर से। पापा ने सुना, अरे ये मैं तो वो पानी पानी हो गए शर्म से।
1: अच्छा वो बच्चा भी बेचारा क्या करे, उसने
0: हाँ
1: काम का मतलब यही
0: ये
1: समझा
0: समझा
1: कि
0: कि
1: हम, माँ कहती होगी कि हम काम कर रहे हैं, तो
0: ये
1: काम का मतलब झाड़ू लगाना। तो कभी कभी
0: पोछा
1: अगर पिताजी ने झाड़ू लगा भी दी तो उसने कह दिया कि वो ये भी काम करते हैं, ये भी काम करते हैं, मतलब वो तो बड़ा ही कर रहा था।
0: और एक बार ऐसे हुआ कि बैठे हुए थे लोग, तो छोटी बच्ची भी थी साथ में, तो उसकी मम्मी बोले कि चलो टाइम हो रहा है हम घर जा रहे हैं, तो बोले नहीं नहीं मम्मी रुको रुको, अंदर से कप प्लेट की आवाजें आ रही है, शायद चाय बनने
1: सच
0: वाली।
1: में ये स्थिति जो है बड़ी खतरनाक होती है। उस समय माँ बाप को समझ में नहीं आता कि देखें रुकें क्या करें। और कभी कभी ये भी कहना पड़ता है भाई बड़ा शरारती है। जैसे कह दे कि कई बार ऐसा होता है कि माँ कहती हैं बच्चा खाता ही नहीं, कुछ नहीं खाता, और इधर बच्चे ने जैसे ही नाश्ते की प्लेट आई और उसने खाना शुरू किया,
0: सब खा लिया।
1: सब खा लिया। तो ऐसे में एक बात बस यही कहेंगे कि अगर बच्चे हैं, ये तो बच्चे हैं, और हो सकता है कि सामने प्लेट में जो हो वो उन्हें पसंद आ रहा हो इसलिए वो खा रहे हो, तो घर में ऐसा रूल बनाए ना कि बहुत सी बार ऐसा होता ना कि बच्चे, हम बाहर जाके नहीं खाने देते बच्चों को, तो ऐसा रूल अगर आपने बनाया है कि बाहर जाके किसी के यहाँ खाना मत, तो बच्चे का मन फिर मचलेगा।
0: जिसके लिए हम खूब मना करते हैं।
1: हाँ खूब मना करते हैं, बल्कि इसके बजाय ये कर दें कि भाई अगर बच्चे को कोई चीज़ पसंद आ रही है, जैसे अगर बच्चे ने, छोटे बच्चे ने, मान लीजिए एक मैंने देखा था कि एक बच्चे घर गया, बच्चे, छोटी बच्ची थी उनके साथ, और उन्होंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लाकर उसमें रखे और उन्होंने कहा कि खाओ। अब जगह ऐसी थी कि जो माँ गई थी तो उसको लगा कि नहीं खाना चाहिए, तो वो उसने एक ले लिया और कुतरना शुरू कर दिया। बच्ची ने एक किशमिश उठाई, माँ ने देखा, फिर दूसरी किशमिश उठाई, माँ ने देखा, फिर तीसरी किशमिश उठाने वाली थी तो उसे लगा कि टोकना चाहिए, फिर उसे लगा कि अगर हम टोकेंगे तो बच्ची को गलत मैसेज जाएगा, तो उसने क्या किया कि कहा कि अच्छा तुम्हें किशमिश अच्छी लग रही है, और दो चार किशमिश बीन कर उसको अलग से दे दी। बच्ची अपना वो खाती रही, और इस तरह से उसको भी पानी पानी नहीं होना पड़ा और बच्ची की भी शरारत या जो बाल स्वभाव है
0: जी।
1: वो पूरा हो गया।
0: और जैसे पानी पानी होने की बात है, इसके तो कई उदाहरण हैं कि कई बार ऐसा होता है ना कि किसी को कुछ चीज़ खाने की मनाही होती है, और भाई इच्छा तो होती है, अब मिठाई खाने की मनाही है, घर वाले कह रहे हैं कि भाई डायबिटीज़ है खाओ मत मीठा खाओ, अब बहुत ललचाया है हलवाई के यहाँ जाके खा लिया, और घर वालों ने किसी ने देख
1: देखे
0: लिया।
1: तो पानी पानी हो
0: तो ऐसे लज्जित होना स्वाभाविक सी बात है, पर लज्जित हो गए हैं ना तो उसके बाद में अपराध बोध से ग्रसित नहीं होना है, उसे
1: बिल्कुल
0: वही छोड़ देना है कि ठीक है ना, गलती हो जाती है, बड़े हैं बूढ़े हैं कोई भी उम्र के लोग हैं, अगर गलती हो गई है तो उसको हंस के स्वीकार कर ले, उसका दिल पर बोझ ना रखे, उन्हें जिंदगी को हल्के में लेना चाहिए।
1: और देखो हमारे एक श्रोता ने बड़ा प्यारा सा संदेश हमारे साथ साझा किया है कि वो जो विविध भारती के कार्यक्रम होते हैं जिनमें वो अपने संदेश साझा करते हैं, जैसे सखी सहेली या सुरीला सफर, तो उसमें वो अपनी और अपनी धर्म पत्नी के प्रेम के बारे में अगर कभी कुछ संदेश देते हैं तो वो पढ़कर पत्नी पानी पानी हो जाती है शर्म से। वो तो ऑफिस में देते हैं, पत्नी वहां घर में पानी पानी हो जाती है। तो भाई लेकिन ये कितनी सुंदर यादें, स्मृतियां आप लोग साथ साथ संजो रहे हैं।
0: सचमुच, और ये यादें हैं ना, ये बहुत सुंदर यादों को हमें संजो कर भी रखना चाहिए कि ये पल ये क्षण जो है फिर से नहीं
1: फिर
0: आते।
1: से नहीं आएंगे, जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन हम ये समय नहीं बीतने देंगे, हम गाना सुनेंगे।
0: बिल्कुल सुनते हैं गीत।

0: तो भाई बड़ी रोचक रोचक बातें हो गई। हम लोगों ने काफ़ी किस्से सुन लिए और उन पानी पानी होने वाली स्थितियों के बारे में भी जान लिया जो कई बार एकदम ऐसा कर देती हैं कि समझ में नहीं आता इधर जाएं कि उधर जाएं, क्या करें कैसे करें।
1: तो बहुत मज़ा आया, सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद, इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिख कर भेजे। तो विविध भारती से जुड़े रहिए और हमें दीजिए इजाज़त। तो आप सभी को सोनाली पाठक
0: और राजुल का
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: जाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से न बहाया कर। शकील आजमी जो कहते हैं, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कई मशहूर फिल्मों के गाने उन्होंने लिखे। आर्टिकल 15 फिल्म मुल्क,
1: सब सखियों का पिया प्यारा, सब में है और सब सुनारा,
0: और फिल्म थप्पड़,
2: एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर सा।
0: जाने माने शायर शकील आजमी से बातें की हैं ममता सिंह ने। ये है इस कार्यक्रम का दूसरा भाग।
3: बेखबर दोस्तों, नमस्कार। रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज शायरी की दुनिया, गीतकारी की दुनिया और अदब की दुनिया की खास शख्सियत की आमद है विविध भारती के स्टूडियो में, जिन्हें हमने बड़े एहतराम से विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है। उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। वो शायर हैं, गीतकार हैं, शकील आजमी साहब। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी जबां देखता है। शकील आजमी साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
4: नमस्कार, बहुत शुक्रिया ममता जी, और बहुत शुक्रिया विविध भारती।
3: इन आपके ही चंद अल्फाज के साथ हमने आपका स्वागत किया, तो हमें बताइए कि ये जो अनुभव सिन्हा जी देर से मिले, लेकिन मिले तो दुरुस्त मिले।
4: हाँ।
3: बहुत सारी फिल्मों की आमद हुई आपकी फिल्में दुनिया में, आर्टिकल 15, भीड़, और इन सब में गाने लिखे, थप्पड़ के सारे गाने आपने लिखे।
4: हाँ, मुल्क के सारे गाने।
3: तो मुल्क के, हाँ। तो मैं चाहती हूँ कि मुल्क फिल्म का गाना, फिर आर्टिकल 15 का, क्रमवार आप बताएं और रचना प्रक्रिया बताएं।
4: मुल्क का गाना आप सुनाएं, पिया समाए।
3: जी,
4: बहुत अच्छा गाना है,
3: बहुत पसंदीदा कव्वाली।
4: हाँ,
3: कव्वाली है।
4: यस यस,
3: कव्वाली की शक्ल में है ये गाना। और हम आपको बताएं कि विविध भारती
4: उसमें हमारा पूरा हिंदुस्तान है उस गाने।
3: जी बिल्कुल। हाँ। पूरी फिल्म बड़ी बेहतरीन है। हाँ। इसमें अनुभव सिन्हा जी को बधाई जाती है सबकी ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से।
4: मैं समझता हूँ कि जो मुल्क फिल्म है
3: जी,
4: या आर्टिकल 15 है, ये ऐसी फिल्म है जो हमारे हिंदी सिनेमा में जो ऐसी फिल्में बनी हैं जो याद की जाएंगी,
3: बिल्कुल, जिनका जिक्र किया जाए,
4: जिक्र किया जाए,
3: दर्ज होती है आज के समय।
4: हाँ, वो ऐसी फिल्मों में ये फिल्में हमेशा जिंदा रहेंगी, जैसे थप्पड़ है, मुल्क है, आर्टिकल 15 है। और मेरी खुशनसीबी है कि मैं इन फिल्मों का हिस्सा हूँ।
3: शकील साहब, ये मुल्क फिल्म की बेहद मकबूल कव्वाली, और विविध भारती से एक प्रोग्राम होता है सुबह चित्रलोक, पहले ये भारत की गूंज के नाम से प्रसारित होता था, इसमें अक्सर हम विविध भारती से प्रसारित किया करते थे, और उसमें आपका नाम लेते हुए बड़ा फक्र महसूस होता था कि शकील आजमी ऐसे शायर गीतकार हैं जिन्हें हम निजी तौर पर भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि बात अनुभव सिन्हा जी की चली है, तो आर्टिकल 15, भीड़, कई फिल्में हैं आपके खाते में, तो क्रमवार इनका जिक्र करें, रचना प्रक्रिया बताएं इन गानों का। आर्टिकल 15, इंतजारी, जिसे आयुष्मान खुराना ने गाया भी है।
4: जी हाँ, जी हाँ, इंतजारी सुनवा सकते हैं आप।
3: जी
4: बिल्कुल।
3: तो
4: आर्टिकल 15 से,
3: तो कैसे वो गाना बना, वो बनने की क्या कहानी?
4: उस गाने की कहानी ये है कि
3: कोई दिलचस्प बात हो।
4: हाँ, दिलचस्प बात है। अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे ये कहा, कहने लगे यार सिचुएशन मैं नहीं बता रहा हूँ, आप यूं समझ लीजिए कि वो गुलजार साहब का वो एक गीत था, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास
3: पड़ा है इजाजत फिल्म
4: लौटा दो। हाँ, तो इसका उल्टा गाना चाहिए मुझे।
3: अरे क्या बात है। हाँ,
4: उल्टा मतलब कि
3: तो, सामान देना है।
4: हाँ, वो कह रहे लौटा दो।
3: हाँ,
4: और मुझे ऐसा चाहिए कि ले जाओ।
3: हाँ,
4: ठीक है,
3: संचय करना है यहाँ पर।
4: तो उसमें जो गाना है वो मैंने लिखा है।

एक जानी मानी शायर, एक जानी मानी गीतकार। वो कहते हैं, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग

0: है कि मोहब्बत में जो दो लोगों के आपसी जो मोमेंट्स होते हैं, है ना, हंसी है, गम है, रोना
1: जी
0: है,
1: जी जी
0: मुस्कुराना है ना, साथ में कुछ कहीं खा रहे हैं, कहीं चाय पी रहे हैं, कहीं आइसक्रीम खा रहे हैं, और कहीं किचन में थोड़ा झगड़ लिए हैं, तो ये सारे जितने भी मोमेंट्स हो सकते हैं, तो अब हम बिछड़ गए हैं और मैं इसको अकेला जी रहा हूं।
1: अच्छा, क्या बात है, ये
0: ठीक
1: सारा कुछ एक गाने में
0: हाँ,
1: आना।
0: तुम तो बिछड़ गए हो और खुश हो, लेकिन मैं वहां से निकल नहीं पा रहा हूं। वो साझा जो चीजें हैं हमारी, मैं उसको अकेला जी रहा हूं और मैं दुखी हो रहा हूं। तो तुम एक काम करो, ये आओ और इसको ले जाओ। तो ये मैंने एक मतलब स्टोरी बोर्ड बनाया और इसको मैंने शायरी में लिखा और वो इस तरह से गाना बना, इंतजारी।
1: जी,
0: हाँ
1: तो वो शायरी कैसे बनी वो बताइए, मतलब वो शेर अगर याद है
0: हाँ
1: तो।
0: इसी इसी तरह से बनी वो, कि आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी,
1: क्या बात है, वाह
0: ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी,
1: वाह
0: है
1: वाह, बहुत सुंदर।
0: है ना। अच्छा, पहले इसमें ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी, ये लाइन पहले नहीं थी, उसमें कुछ खुमारी राइमिंग की लाइन थी। तो अनुभव सिन्हा साहब ने कहा कि शकील भाई, ये इंतजारी लफ्ज बड़ा यूनिक है, इंतजार होता है, इंतजारी लोग नहीं लिखते हैं। तो हमारे बचपन में हम गांव में सुनते थे, अरे हम तुम्हारी इंतजारी देखत रहे हैं, है ना, इंतजारी कर नहीं रहे थे, इंतजारी देखत रहे हैं, पुराने लोग बोलते थे। तो अब हमारा जो मुल्क है ना, वो बहुत विशाल, बहुत बड़ा मुल्क है
1: विविधरंगी है।
0: और बहुत मतलब भाषाएं बहुत हैं, तो कोई भी शब्द कुछ अलग से आता है तो वो कानों को भला लगता है
1: बिल्कुल।
0: ना, कुछ नया लगता है। जब तो मैंने इंतजारी जानबूझ के, और बोले ये इंतजारी और रेजगारी बड़े कमाल, अरे इंतजारी बड़ा कमाल लग रहा है, ये खुमारी जो है इसको चेंज करो यार, कुछ नया लफ्ज ले आओ। तब उसकी जगह पे ये आया, आना आ भी जाना, ये ट्यून पे लिखा हुआ गाना है
1: जी।
0: और अनुराग साइकिया ने म्यूजिक किया है इसका। आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी, ले जा जो रिश्तों की
1: रेजगारी,
0: रेजगारी है तेरी, वो जो हम रोए साथ थे वो सब आके लेके जा। तो वो उसका उल्टा गाना था जो गुलजार साहब का था, ये उसके बरक्स था। तो
1: क्या बात
0: ये
1: है।
0: सारा मैंने एक स्टोरी बोर्ड बना लिया कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और फिर मैंने इसको लिखा और गाना इस तरह से बना।

0: जो गाना हम सुनते हैं बहुत एंजॉय करते हैं हम स्टूडियो में बैठकर और हमारे श्रोता स्टूडियो के बाहर, लेकिन उस गाने के बनने के पीछे कहानियां होती हैं और कई बार मुश्किलात भी होती हैं कि आप जैसे बता रहे हैं कि अनुभव सिन्हा जी आपको दृश्य बता रहे हैं और आप लिख रहे हैं फिर चेंजेस, तो एक कितना आसान नहीं होता है सफर। तो फिल्म मुल्क में जो कव्वाली है बड़ी हिट, पिया समय हम सबका पसंदीदा कव्वाली हम सबकी, इस गाने की बनने की क्या कहानी थी?
1: ये तो बहुत ही मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने, और वो तो चले गए शूटिंग करने। मेरे साथ अक्सर होता है यही उनकी फिर उनके गानों को लेके कि हाँ हाँ कर लेंगे, और ऐसा फिर वो शूटिंग पे चले जाते हैं और फिर जब जरूरत होती है तब कहते जल्दी करो गाना चाहिए। तो अब वो शूटिंग कर रहे हैं उधर लखनऊ के पास मलिहाबाद वगैरह में,
0: और ये अभी गाना लिख दो जल्दी।
1: और हम जो हैं मैं और अनुराग साइकिया ने ये इसका किया था म्यूजिक वो, और
0: थप्पड़ में भी अनुराग साइकिया का संगीत था। हाँ, आर्टिकल 15 में भी
1: थप्पड़ सोलो था
0: और मुल्क में,
1: और मुल्क में एक ही गाना था उनका ये, बाकी प्रसाद साष्ठे ने दो गाने किए थे
0: जी जी। हाँ,
1: तो हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है, वो रूट पता नहीं चल रहा है कि जाना किधर है।
0: यहाँ पर अनुभव सिन्हा जी का भरोसा भी आप पर अटूट है।
1: हाँ,
0: कि वो गाना देकर चले गए हैं।
1: हाँ, अब मैं फोन कर रहा हूँ कि इसमें लिखना क्या है। अब वो क्योंकि उधर बिजी है शूटिंग में, ध्यान उधर लगा हुआ है, कह रहे मैं बताता हूँ। अब हम इंतजार कर रहे हैं, फिर उनका फोन आया, कह रहे हैं मैंने आपको एक वीडियो भेजा है वो देख लीजिए आप, सुन लीजिए। मैंने कहा सर आप बताइए ना कि उसमें क्या है और आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि साइंस ये कहती है कि जब सारे रंगों को हम मिलाते हैं तो सफ़ेद रंग बनता है, सारे रंगों को मिलाने से सफ़ेद रंग
0: जी,
1: बनता है
0: जी।
1: मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है सर?
0: बिल्कुल सही बात है, सफेद रंग तो अपने आप में सफेद रंग है, उसको कोई भी रंग मिलाएंगे तो वो तो दूसरा हो जाएगा।
1: तो, हाँ, तो बोले नहीं ऐसे ही होता है, यही थॉट है। और ये गाना मुझे देशभक्ति इसमें होनी चाहिए और कौमी एकजहती होनी चाहिए,
0: जी, जी, जी।
1: ठीक है, पूरा देश एक साथ चलना चाहिए इस गाने में। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उसको लिखा, मुश्किल गाना था बहुत
0: जी।
1: मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी,
0: बेहतरीन फिल्म थी,
1: डिफिकल्ट सिचुएशन थी
0: जी।
1: तो मैंने लिखा उसमें कि पिया समाए जिया में मोरे पिया समाए, ये हुक है, उससे पहले लाइन आती है सात रंग हैं सातों पिया के,
0: सात रंग हैं सातों पिया के।
1: हाँ, सात रंग होते हैं
0: जी।
1: अब मुझे सफेद पर खेलना है और उसको ऐसा बनाना है उसमें पूरा देश एक साथ जुड़ना चाहिए, ठीक है, सारे समुदाय जो हैं वो एक साथ जुड़ने चाहिए, तो वो सारे जो हैं एक साथ जुड़ने चाहिए। तो अच्छा, अभी इसमें जो पिया है ये वो भी पिया है जो मतलब जो जमीन पे है ना, और वो

0: वो भी पिया है जो खुदा है, ईश्वर
1: ऊपर
0: है, भगवान है,
1: ईश्वर खुदा
0: ठीक
1: है।
0: है, हाँ, और महबूब भी है हमारा, ठीक है, डबल मीनिंग है। इस तरह के बहुत सारे लगा चुनरी में दाग और फलाना, वो
1: छुपाऊं
0: है
1: कैसे,
0: ना, घर
1: बिल्कुल
0: जाऊं, घर जाने का मतलब वो मरने के बाद की जिंदगी
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: बिल्कुल, दो
0: तो
1: अर्थी है।
0: हाँ, तो ये दो अर्थी, ये भी मैंने इसको करके आगे बढ़ाया। सात रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के, है
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
0: ना। तो ये दूसरे वाले को वो कटाक्ष कर रही है कि तू भी कभी लगा के देख, तुझे भी वो सब पिया के ही लगेंगे,
1: रंग दिखाई
0: हाँ, अलग
1: पड़ेगा।
0: अलग मत देख, हम सब एक हैं। सात रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के, सातों से मिलके भई मैं उजली,
1: वाह क्या बात है
0: सातों से मिलके
1: भाई, मैं
0: भई मैं
1: उजली,
0: उजली,
1: वाह वाह
0: कोई हरा कोई गेरुआ बताए,
1: क्या बात
0: पिया
1: है,
0: समाए पिया समाए, जिया में मोरे पिया समाए। अब ये देखने वालों की नजर है कि कोई मुझे हरा बता

0: उजली,
1: वाह क्या बात है,
0: सातों से मिलके
1: भई
0: में उजली,
1: वाह वाह,
0: कोई हरा कोई गेरुआ बताए,
1: क्या बात,
0: पिया समाए जिया में मोरे पिया समाए। अब ये देखने वालों की नजर है कि कोई मुझे हरा बता रहा है कोई गेरुआ बता रहा है, लेकिन मैं तो सातों से मिलके उजली हो गई हूँ।
1: जी जी,
0: और तू भी लगा के देख कभी। तो ये बड़ा ही मतलब टेढ़ा गाना था और ऐसा वो सटीक आया है ऐसा कि एक लाइन भी चेंज नहीं हुई, बड़े खुश हुए, बोले आगे बढ़ो।
1: तो ये जो फिल्म है वो एक संदेश देती है, ये गाना भी संदेश देता है, सब एकजुटता का संदेश है और बेहतरीन फिल्म का बेहतरीन गाना, ये सुनवाते हैं हम।

0: शकील साहब, अभी आपकी जर्नी के बारे में बहुत सारी बातें करनी हैं। अब यहाँ हम आते हैं आपके फिल्म धोखा में। फिल्म धोखा
1: हाँ
0: एम एम करीम साहब ने गाया है और
1: जी
0: कंपोज भी किया है गाना।
1: जी
0: इसके बारे में एकदम संक्षेप में बताएं, क्योंकि
1: मतलब
0: आपके
1: आप भट्ट साहब के दरवाजे पर पहुंची हैं।
0: पहुंच गए, दस्तक दे रहे हैं। और महेश भट्ट साहब के साथ आपने बहुत सारा काम किया है और आपकी फिल्मी दुनिया में उनका बहुत बड़ा योगदान, कह ले योगदान भी है, और काफी दोस्ती मित्रता है।
1: हाँ, प्यार रहा बहुत उनका, भट्ट साहब का उस जमाने में। तो ये फिल्म उनकी जो बेटी
0: पूजा
1: है
0: भट्ट,
1: पूजा भट्ट, उन्होंने डायरेक्ट की थी। और ये गाना जो है एम एम करीम साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, मेरे पसंदीदा कंपोज़र हैं वो, और उनको हिंदी नहीं आती ठीक से, है ना। तो भट्ट साहब के ऑफिस में उन्होंने मुझे धुन दी, ट्यून बताई हारमोनियम प्ले करके। मैंने उसको तब वो छोटे वाले जो टेप चलते थे मैंने रिकॉर्ड किया उसमें, और वहीं बैठ के मैंने गाना लिखा वो। और गाना लिखा जब उन्होंने उसको गाना शुरू किया, कहीं कहीं अटके लेकिन फिर वो रवा हो गया। जब उनके मीटर में पूरी तरह से रवा हो गया वो गाना
0: जी।
1: तो मुस्कुराहट उनके चेहरे की बढ़ती गई,
0: क्या बात है।
1: हाँ, वो जो ट्यून में पूरी तरह से वो गाना, तो वो गाना जो है वो पूजा को भी बहुत पसंद था, बहुत खुश थी उस गाने से वो। लेकिन इससे पहले भट्ट साहब के यहाँ मेरी पहली जो फिल्म थी वो थी जहर, हाँ,
0: जिसका गाना बहुत मशहूर हुआ था। फिल्म का गाना इनकी आवाज, श्रेया घोषाल की आवाज में जो गाना था, अगर तुम मिल जाओ, बहुत बहुत मशहूर हुआ था।
1: जी जी। तो ये गाना दरअसल पाकिस्तानी गाना था, ये उसको यहाँ पर अनु मलिक साहब ने रिक्रिएट किया था। रेशमा की आवाज में भी आपको मिल जाएगा वो गाना, कई लोगों ने गाया हुआ है, पुराना गाना है। और ये फिल्म मोहित सूरी की भी पहली फिल्म थी, मोहित सूरी थे इसके डायरेक्टर, वो भी मतलब उनके भट्ट साहब के भांजे होते हैं
0: जी।
1: और ये फिल्म बड़ी कामयाब रही, इसके सारे गाने सुपरहिट हुए और सारे गामा म्यूजिक कंपनी ने इसके गाने रिलीज किए थे। और हमें जो है वो पहली बार आउटस्टैंडिंग म्यूजिक सेल नाम से हमें ट्रॉफी बांटी गई, उसका एक फंक्शन हुआ, एक तकरीब हुई उसकी, और बड़े खुश थे वो लोग क्योंकि म्यूजिक बहुत बड़ा हिट था और फिल्म भी हिट हो गई थी, सिल्वर जुबली का भी उसका ट्रॉफी मिला था हम लोगों को। तो उसमें गाना था वो के ने गाया था वो, अए बेखबर अए बेखबर,
0: जी जी जी,
1: तो वो भी बहुत बेहतरीन गाना था। और एक गाना वो था जाने जा तुझसे बिछड़ के मैं जाऊं कहां, वो भी बहुत, सारे गाने ही बहुत हिट हुए थे उसके और बड़ी कामयाब फिल्म रही वो। तो वो पहली फिल्म थी मेरी भट्ट साहब के यहाँ।
0: जी जी। तो यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाया श्रोताओं को?
1: आए बेखबर
0: सुनते हैं। हाँ। ये गाना

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 4:30 हो रहे हैं। हम उपस्थित हैं अपने सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ और इस सभा की शुरुआत हम कर रहे हैं युवा श्रोताओं के मनपसंद कार्यक्रम युववाणी से।

0: नमस्कार श्रोताओं, युवानी के इस खूबसूरत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं हूं आपकी अपनी साथी अंबिका, और आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ अश्मिता। युवाणी के इस मंच पर आप सभी का दिल से स्वागत है। इस कार्यक्रम में हमेशा से युवाओं की सोच, उनकी ऊर्जा, उनकी प्रतिभा और उनके सपनों को एक नई दिशा देने का प्रयास करता है।
0: बिल्कुल अस्मिता, आज का युवा नई सोच, नई ऊर्जा और नए सपनों के साथ आगे बढ़ रहा है। जरूरत है तो बस सही मार्गदर्शन और सकारात्मक सोच की। युवानी इसी उद्देश्य के साथ आप सभी श्रोताओं तक पहुंचता है।
1: तो अंबिका, क्या क्या है आज आपके पिटारे में?

0: आज के कार्यक्रम में स्मिता हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस की और अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस की।
1: और बीच में गीत संगीत का दौर तो चलता ही
0: बिल्कुल
1: रहेगा।
0: बिल्कुल।
1: हाँ, और आपको एक लघु नाटक भी सुनाएंगे।
0: और अस्मिता, अंत में रोचक तथ्य एवं जॉब अपडेट्स की तरफ भी चलेंगे।
1: तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले श्रोताओं को सुनाते हैं एक प्यारा सा गीत।
0: बिल्कुल।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से राज भदकाई पंचायत से ओम प्रकाश कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: मैं ओम प्रकाश कुमार ग्राम पंचायत राज भटगाई और अपने पंचायत के हर दुख सुख में रहें। हमारे पंचायत बहुत पिछड़ा हुआ पंचायत है, दलित बस्ती बहुत सारे हैं, जहां सड़क नहीं था वहां सड़क बनवाएं, स्कूल में चार दीवारी करवाएं। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। धन्यवाद।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से उमना पंचायत से धर्मेंद्र कुमार सिंह बने हैं यशस्वी मुखिया।
2: दिन है कि आज मैं उमना पंचायत को बिहार के पोर्टल पे एक नंबर स्थान पे रखने का काम किया। चाहे वो खेल मैदान हो, बाजार हाट हो, सामुदायिक भवन हो, छठी मैया घाट हो, रोड हो, नाली हो, तमाम कार्य हमने कराया है। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय कुमना पंचायत की जनता।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नीरज श्रीधर की आवाज में फिल्म हम शक्ल से ये प्यारा सा गीत।
4: दोस्तों, आज तारीख है 30 जून। कैलेंडर पे तो ये जून का आखिरी दिन है, लेकिन दुनिया भर के लोकतंत्र और हम जैसे युवाओं के लिए आज का दिन बेहद खास है। जी हाँ, आज है इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म, यानी अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस।
3: अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, अरे यार ये बोरिंग पॉलिटिकल टॉपिक शाम शाम को क्यों? रुकिए रुकिए, चैनल मत बदलिए, क्योंकि आज हम कोई बोरिंग लेक्चर नहीं देने वाले। आज हम बात करेंगे कि देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी हमारी पार्लियामेंट का हम युवाओं से, हमारी पॉकेट मनी से, हमारी नौकरियों से और हमारे फ्यूचर से क्या कनेक्शन है।
4: तो दोस्तों, बात ऐसी है कि आज ही के दिन यानी 30 जून 1889 को IPU इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना हुई थी। इसी को याद करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने इस दिन को मनाना शुरू किया।
3: सरल शब्दों में कहें तो पार्लियामेंट्रिज्म का मतलब है संसद की व्यवस्था, वो जगह जहां देश के अलग अलग कोनों से चुनकर आए लोग एक छत के नीचे बैठते हैं।
4: बिल्कुल अंबिका, कोई बिहार से आते हैं, कोई केरल से, कोई असम से, तो कोई कश्मीर से। सब अपनी अपनी जनता की समस्याएं लेकर आते हैं और फिर बनते हैं वो कानून जो हमारे देश को चलाते हैं। संसद हमारी आज़ादी और हमारी आवाज़ का सबसे बड़ा सिंबल है।
3: तो दोस्तों, अक्सर हम युवा कहते हैं, अरे यार मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सब बेकार है। लेकिन सच बताऊं, आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लें या ना लें, पॉलिटिक्स आप में पूरा इंटरेस्ट लेती है। कैसे, चलिए समझाती हूँ।
4: कॉलेज की फीस कितनी होगी ये संसद तय करती है। आपके शहर में नया स्टार्टअप हब या 5G 6G का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आएगा ये संसद में तय होता है। यहाँ तक कि जो रील्स और सोशल मीडिया आप दिन भर स्क्रॉल करते हैं, उनके डेटा प्रोटेक्शन के नियम भी हमारी संसद ही बनाती है।
3: अच्छा स्मिता, यानी जो कुछ भी हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है उसका रिमोट कंट्रोल संसद के पास है।
4: बिल्कुल।
3: अच्छा, अगर हम युवा इससे दूर भागेंगे तो फिर हमारे हक की नीतियाँ कौन बनाएगा? आज संसद को नए कानून वगैरह, नई सोच और टेक्निकल माइंडसेट वाले युवाओं की ज़रूरत है। हमें सिर्फ वोटर नहीं बल्कि एक सजग और सजग पूछने वाला नागरिक बनना होगा।
4: बिल्कुल अंबिका,
3: जो सजग सवाल पूछे।
4: बिल्कुल। तो दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस पर खुद से एक वादा कीजिए, देश के सिस्टम को सिर्फ कोसने के बजाय उसे समझने की कोशिश कीजिए। संसद की बहसों को सुनिए।

0: अपने इलाके के संसद एमपी के काम पर नजर रखिए और जब भी मौका मिले अपने वोट की ताकत का सही इस्तेमाल कीजिए।
1: तो दोस्तों, लोकतंत्र की रीढ़ है संसद, और संसद की ताकत है आप और हम। जब तक युवा आवाज नहीं उठाएगा, तब तक देश का कल बेहतर कैसे कहलाएगा?
0: तो दोस्तों, बातों का सफर यूं ही जारी रहेगा। अगले सेगमेंट शुरू करने से पहले मूड बनाते हैं इस हल्के फुल्के गरक गाने के साथ। सुनिए और एंजॉय कीजिए।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। राज भासर मच्छा पंचायत से अजीत कुमार बने हैं अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया।
1: अल्ट्राटेक तो बहुत अच्छी सीमेंट है, उससे मैंने अपना घर भी बनवाया है और योजना में भी मैक्सिमम टाइम हम लोग वही यूज करते हैं। और हिंदुस्तान अखबार तो बचपन से जब से पढ़ने आया तब से पढ़ते ही हैं, तो ये बहुत अच्छी पहल है जो हम लोगों के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ला करके और बिहार पे हमें अपने पंचायत का नाम रोशन करने का मौका मिला है, जिसके लिए अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान दोनों को बहुत बहुत बधाई। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। छतरहार पंचायत से अनीता मिश्र बनी है यशस्वी मुखिया।
2: अल्ट्राटेक का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि गांव बनेगा तो हमारा देश बढ़ेगा। तो गांव बनाने की जो अहम भूमिका है वो अल्ट्राटेक सीमेंट का है। चाहे मेरे यहाँ पंचायत सरकार भवन बने, घाट बने या स्कूल बने, बिल्डिंग बने, अल्ट्राटेक सीमेंट हमेशा आगे बढ़े, क्योंकि गांव के निर्माण में उसका बहुत योगदान है कि वो लोग सहयोगी बन करके सुचारू रूप से सफल बनाया।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जुबिन नौटियाल और उनके साथियों की आवाज में फिल्म ड्रीम गर्ल 2 से ये प्यारा सा गीत। तो आज हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही रोचक और अंतरिक्ष से जुड़ा विषय, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस। यह दिन हमें अंतरिक्ष में मौजूद उन विशाल चट्टानी पिंडों के बारे में जागरूक करता है जिन्हें हम क्षुद्रग्रह यानी एस्टेरॉयड्स कहते हैं।
4: श्रोताओं, आपने रात के आसमान में चमकते सितारे तो देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में लाखों बड़े पिंड घूम रहे हैं? इन्हीं में से कुछ को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मुख्य रूप से चट्टान, धातु और अन्य पदार्थों से बने होते हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं।
3: स्मिता, क्या आप हमारे श्रोताओं को बताएंगी कि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया जाता है और इसे मनाने का क्या कारण है?
4: बिल्कुल अंबिका, हर साल 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को
3: बिल्कुल क्षुद्रग्रहों के बारे में जानकारी देना और यह समझाना है कि अगर कोई बड़ा क्षुद्रग्रह पृथ्वी के करीब आए तो उससे बचाव के लिए वैज्ञानिक तैयारी कितनी जरूरी है ना?
4: बिल्कुल, और इस दिन की शुरुआत एक ऐतिहासिक घटना की याद में हुई है, 30 जून 1908।
3: बिल्कुल, 1908 को रूस की साइबेरिया क्षेत्र में एक बड़ा विस्फोट हुआ था जिसे तुंगुस्का घटना कहा जाता है। माना जाता है कि एक क्षुद्रग्रह या धूमकेतु के टुकड़े के वायुमंडल में प्रवेश करने के कारण हुआ था ऐसा।
4: जी हाँ, इस घटना ने वैज्ञानिकों को ये सोचने पर मजबूर किया कि अंतरिक्ष से आने वाले पिंडों की निगरानी कितनी आवश्यक है।
3: आज वैज्ञानिक दूरबीनों और अंतरिक्ष मिशनों की मदद से ऐसे क्षुद्रग्रहों का अध्ययन करते हैं और उनकी गति पर नजर रखते हैं।
4: श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में एक विशाल क्षेत्र ऐसा है जहां बहुत सारे क्षुद्रग्रह पाए जाते हैं?
3: बिल्कुल, इसे एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से जाना जाता है स्मिता। यह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित है।
4: बिल्कुल अंबिका, क्षुद्रग्रह केवल खतरे का कारण नहीं है बल्कि वे वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है।
3: इनके अध्ययन से पता चलता है कि सौरमंडल

0: के निर्माण और पृथ्वी के इतिहास को समझने में कितनी मदद मिलती है।
1: बिल्कुल, आज के समय में अंतरिक्ष अनुसंधान तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: बिल्कुल, और कई अंतरिक्ष एजेंसियां क्षुद्र ग्रहों पर मिशन भेज रही हैं ताकि उनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके।
1: इस अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस पर हमें ये याद रखना चाहिए कि अंतरिक्ष केवल रहस्यों से भरा स्थान नहीं है, बल्कि ये हमारे भविष्य से भी जुड़ा हुआ है।
0: विज्ञान और जागरूकता के माध्यम से हम आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। तो श्रोताओं, उम्मीद है आपको आज का यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अंतरिक्ष के इन अद्भुत पिंडों के बारे में जानना हमेशा रोमांचक होता है।
1: इसी संदेश के साथ जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम के साथ और विज्ञान की दुनिया को जानने का प्रयास कीजिए।
0: बिल्कुल, और अब सुनाते हैं अपने श्रोताओं को एक लघु नाटक।
2: अभी तक वेबसाइट क्यों नहीं खुल रही है? लोड ही हुए जा रही है। चलो, आखिरकार खुल गई। रोल नंबर 4210, डेट ऑफ बर्थ सबमिट। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरा नाम लिस्ट में क्यों नहीं है?
3: आर्यन बेटा, रिजल्ट आ गया क्या? क्या हुआ?
2: हाँ माँ, आ गया।
3: तो क्या हुआ, बताओ तो सही।
2: कुछ नहीं माँ।
3: कुछ नहीं? कुछ नहीं का क्या मतलब है बेटा? और चेहरा क्यों उतरा हुआ है? दिखाओ तो मुझे मोबाइल। हे भगवान, ओह।
4: अरे भाग्यवान, क्या हुआ? आर्यन का सिलेक्शन हो गया क्या?
3: नहीं हुआ।
2: दो साल, पूरे दो साल की मेहनत, रोज सुबह 5 बजे उठना, दोस्तों की शादियां पार्टियां सब छोड़ देना, हफ्तों तक मोबाइल से दूरी, सब बेकार हो गया। मेरी इतनी मेहनत की कोई कीमत नहीं थी। रोहित का मैसेज, भाई रिजल्ट कैसा रहा? रिया का मैसेज, सिलेक्शन हो गया क्या? बस अब मुझे किसी से बात नहीं करनी, किसी का सामना नहीं करना।
3: आर्यन,
2: दीदी प्लीज, अभी नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे कोई संतावना नहीं चाहिए।
3: ठीक है, मैं तुमसे पूछने या कोई ज्ञान देने नहीं आई हूँ, बस थोड़ी देर तुम्हारे साथ बैठने आई हूँ। जानते हो आर्यन, जब 3 साल पहले अपने ड्रीम कॉलेज के फाइनल इंटरव्यू में जब मैं रिजेक्ट हुई थी ना, तो मुझे लगा था कि मेरी सारी दुनिया ही खत्म हो गई है, अब जिंदगी में जैसे कुछ बचा ही ना हो।
2: दीदी, आपकी और मेरी बात अलग है, आपने इतनी बड़ी असफलता नहीं देखी।
3: नहीं छोटे, बात अलग नहीं है। दर्द का सिलेबस हम सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन उस दर्द का एहसास, वो टूटना सबका लगभग एक जैसा ही होता है।
2: मैं कल सुबह उठकर पापा का सामना कैसे करूंगा? मोहल्ले वालों को, दोस्तों को क्या जवाब दूंगा?
3: देखो आर्यन, तुम्हें अभी किसी को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? और सबसे पहले तो तुम खुद को कटघरे में खड़ा करके खुद को जवाब देना बंद करो। तुम खुद इस वक्त क्रिमिनल बने बैठे हो, और खुद ही जज भी बन गए हो, और खुद को सजा भी सुनाई जा रहे हो। ऐसा मत कर छोटे।
5: मुझसे उसका रोता हुआ चेहरा देखा नहीं जा रहा है जी। दोपहर से ही उसने पानी की एक बूंद तक नहीं पी है।
4: मुझसे भी कहाँ देखा जा रहा है, पर मैं क्या करूं?
5: आप जाइए ना उसके पास, कुछ बोलिए ना उससे, ढांढस तो बंधाइए।
4: क्या बोलूं उसे? यह कहूं कि कोई बात नहीं, जब मुझे अच्छी तरह पता है कि उस बच्चे ने पिछले 2 सालों में कितनी जी तोड़ मेहनत की है, मैं उसकी मेहनत को कोई बात नहीं कहकर छोटा नहीं करना चाहता।
5: पर दुख तो हमें भी है ना, हम भी तो उसके साथ ही जी रहे थे ये सपना।
4: हाँ, हम जी रहे थे, लेकिन इस समय हमारा बेटा अंदर से टूट चुका है। उसे इस वक्त हमारे किसी सलाह या नसीहत की जरूरत नहीं, उसे सिर्फ हमारे साथ की जरूरत है। उसे यह एहसास चाहिए कि हम उसके साथ खड़े हैं।

0: फिर से रोहित का फोन? यार ये लोग समझते क्यों नहीं है?
1: आर्यन देखो बाहर तुम्हारे दोस्त रोहित और सिया आए हैं।
0: माँ प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से बात नहीं करनी, किसी का सामना नहीं करना।
2: आंटी इसे बता दीजिए कि हम दोनों ने इसकी आवाज सुन ली है।
3: और हाँ आंटी इसे ये भी बता दीजिए कि हम यहाँ से बिना मिले जाने वाले नहीं हैं।
2: वाह भाई वाह, जनाब तो ऐसे मुंह फुला के बैठे हैं जैसे दुनिया का आखिरी रिजल्ट आ गया हो।
0: मजाक मत कर यार रोहित, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, मेरा मजाक बनाने?
1: रोहित चुप रहो थोड़ा।
2: देख भाई आर्यन, हमें पता है कि तू दुखी है, लेकिन तू अकेला दुखी नहीं है यार। हम भी दुखी हैं क्योंकि हमारा सबसे प्यारा दोस्त पिछले 24 घंटे से गायब है।
0: तुम लोग नहीं समझोगे भाई, तुम दोनों का कॉलेज जो चल रहा है।
1: तो समझाओ ना हमें, हम समझने ही तो आए हैं।
2: आर्यन एक बात पूछूं, सच सच बताएगा? मान ले आज तेरी जगह मैं फेल हो गया होता तो क्या तू मेरे पास आकर मुझे नालायक बोलता या मुझसे दोस्ती तोड़ देता?
0: बिल्कुल नहीं यार, कैसी बातें कर रहा है।
2: तो फिर मेरे भाई जो सहानुभूति तू अपने दोस्त के लिए रखता है वो खुद के लिए क्यों नहीं रख पा रहा?
1: आर्यन एक बार ठंडे दिमाग से सोच, तू इस वक्त उस रिजल्ट के नंबरों से दुखी है या लोगों की बातों से?
0: शायद दोनों से। मुझे अंदर से महसूस हो रहा है कि मैंने सबको निराश कर दिया, मम्मी पापा को, दीदी को, तुम लोगों को, सबको।
1: आर्यन निराशा और असफलता ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। असफलता सिर्फ एक परिणाम है, लेकिन कोशिश करना छोड़ देना वो तो असली हार होती है ना। तुमने एग्जाम हारा है यार, जिंदगी नहीं।
2: और सुन भाई, तुझे लग रहा है तेरे 2 साल बर्बाद हो गए? चल बता, इन 2 सालों की तैयारी में तूने खुद के अंदर एक अनुशासन देखा, टाइम टेबल फॉलो करना सीखा?
0: हाँ सीखा।
2: मेहनत करना और एग्जाम का भयंकर प्रेशर झेलना सीखा?
0: हाँ सीखा।
2: तो फिर मेरे भाई, जिस इंसान ने अनुशासन, मेहनत और प्रेशर झेलना सीख लिया वो बर्बाद कैसे हो गया? ये सारी चीजें जिंदगी की हर परीक्षा में काम आएंगी।
0: मैंने इस नजरिए से तो सोचा ही नहीं था यार।
1: चलो सब लोग आ जाओ, डाइनिंग टेबल पे खाना लग गया है।
4: आर्यन बेटा तुमसे एक बात कहनी है। कल जब रिजल्ट आया था तो मैं भी कुछ पल के लिए शांत हो गया था, लेकिन बेटा मेरी इस चुप्पी को कभी भी अपने प्रति निराशा मत समझना। हमें तुम पर गर्व सिर्फ तब नहीं होता जब तुम टॉप करते हो, हमें इस बात पर भी उतना ही गर्व है कि तुमने 2 साल तक पूरी ईमानदारी से कोशिश की, तुमने मैदान छोड़ा नहीं था।
5: और सच कहूँ बेटा, जब बाहर के लोग पूछते हैं कि आपका बेटा क्या कर रहा है तो हमेशा मैं गर्व से ये कहती हूँ कि मेरा बेटा मेहनत कर रहा है, और मेरे लिए तुम्हारी ये मेहनत किसी भी रिजल्ट से छोटी नहीं है।
0: मम्मी पापा आई एम सॉरी।
6: और सुन छोटे, हम सब तेरी ही टीम में हैं, बस कभी कभी ज्यादा चिंता की वजह से लोग सही शब्द ढूंढ नहीं पाते, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनका प्यार कम हो गया।
1: आर्यन उठ गए बेटा, चाय रख दो क्या कमरे में?
0: हाँ माँ मैं उठ गया हूँ, और आज चाय में चीनी थोड़ी कम रखना।
1: अरे वाह, लगता है हमारा पुराना आर्यन वापस आ रहा है।
0: रोहित का मैसेज, भाई आज से दोबारा पढ़ने ना, वरना अगली बार मुझे ही ट्रीट देनी पड़ेगी। सिया का मैसेज, एक नई और मजबूत शुरुआत मुबारक हो।
6: हमेशा याद रखना आर्यन, एक सिंगल रिजल्ट तुम्हारी जिंदगी की पूरी कहानी का अध्याय नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक छोटा सा पन्ना था जो अब पलट चुका है।
4: और बेटा इस बार तैयारी करते समय रिजल्ट की चिंता थोड़ी कम करना, अपनी मेहनत और कमियों को सुधारने की चिंता ज्यादा करना, बाकी जो होगा हम देख लेंगे।
0: हाँ पापा आपने बिल्कुल सही कहा, इस बार मन में कोई डर नहीं होगा, सिर्फ मजबूत तैयारी होगी। इस बार कोई हार और निराशा नहीं होगी, सिर्फ एक नई सीख होगी, और कुछ हो भी जाए तो रुकना तो बिल्कुल नहीं होगा।
7: तो श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे एक लघु नाटक, और

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सलीम मर्चेंट और सुनिधि चौहान की आवाज़ में फिल्म बैंड बाजा और बारात से ये प्यारा सा गीत।
1: तो दोस्तों, कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है।
0: पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती।

0: है एक छोटा सा विचार, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हौसला हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता।
1: तो श्रोताओं, आपको सुनाते हैं इस प्रेरक पंक्ति के साथ एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सिद्धार्थ महादेवन की आवाज़ में फिल्म धूम 3 से ये प्यारा सा गीत। तो दोस्तों, अब वक्त

0: चला है स्पोर्ट्स अपडेट का। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है।
1: अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में ग्रेबियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल किया। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट का था, नॉर्वे से होगा।
0: एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया।
1: तो स्पोर्ट्स अपडेट में काफी बातें कर ली हमने, अब सुनाते हैं अपने श्रोताओं को एक प्यारा सा गीत।

0: तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे किया किया फिल्म वेलकम। इसके गायक है आनंद राज आनंद।
1: श्रोताओं, आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही खास विषय, भारत के प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों से जुड़े कुछ रोचक तथ्य।
0: बिल्कुल अंबिका, पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। ये पुरस्कार हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित किए जाते हैं और देश के अलग-अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित करते हैं।
1: क्या आप जानते हैं अस्मिता, पद्म पुरस्कारों की शुरुआत साल 1954 में हुई थी। शुरुआत में इसकी श्रेणियां अलग नामों से थी, जिन्हें बाद में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री नाम दिया गया।
0: हाँ अंबिका, और सबसे रोचक बात यह है कि ये सम्मान केवल बड़े प्रसिद्ध लोगों के लिए नहीं है। कला, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में असाधारण काम करने वाले आम लोगों को भी ये सम्मान मिल सकता है।
1: पद्म पुरस्कारों की तीन श्रेणियां होती है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इनमें पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा के लिए दिया जाता है।
0: एक और खास बात यह है कि पद्म पुरस्कार के लिए आम नागरिक भी नामांकन कर सकते हैं, यानी प्रतिभा किसी पहचान की मोहताज नहीं होती है।
1: बिल्कुल, कई बार ऐसे लोगों को भी पद्म सम्मान मिला है जिन्होंने बिना प्रसिद्धि की चाह के समाज के लिए वर्षों तक काम किया है।
0: यही इन पुरस्कारों की खूबसूरती है कि ये भारत की विविधता और प्रतिभा को सामने लाते हैं। गांव से लेकर शहर तक अलग-अलग क्षेत्रों के लोग इस सम्मान से जुड़ते हैं।
1: तो श्रोताओं, पद्म पुरस्कार सिर्फ एक सम्मान नहीं बल्कि मेहनत, समर्पण और देश सेवा की पहचान है।
0: इसी संदेश के साथ जुड़े रहिए और अपने आसपास छिपी प्रतिभाओं को पहचानते रहिए।
1: और सुनिए ये प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पूरन चंद वादली की आवाज में फिल्म तनुवेड्स मनु से ये प्यारा सा गीत। तो अब चलते हैं रोजगार अपडेट्स की तरफ। कर्मचारी चयन आयोग SSC 10+2 कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के कुल 3522 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है, जिसकी शैक्षणिक योग्यता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। इसकी आयु सीमा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ssc.government.in से प्राप्त किया जा सकता है।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर PO के कुल 1500 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। इसकी शैक्षणिक योग्यता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। इसकी आयु सीमा है। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.sbi.bank.in से प्राप्त किया जा सकता है।
0: तो अब सुनाते हैं अपने श्रोताओं को एक और गीत।

0: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीत मैं और तू, फिल्म धुरंधर द रिवेंज। इसके गायक हैं शाश्वत सचदेव और जैस्मिन सैंडलास।
1: तो
0: ठीक है आवाज में।
1: श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी कर रही है अब इशारा, हमारे जाने का समय हो चला है। तो आप सबको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें मेल द्वारा जरूर सूचित करें। हमारा मेल आईडी है feedback@patna@therateofgmail.com।

अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त शाम के 5:30 हो रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं मगही कार्यक्रम मागधी।

मागधी सुनिहार के नीलाद्री के प्रणाम। आय हन मंगलवार हमनी प्रस्तुत हियन अपने लेल मागधी कार्यक्रम लेके। तो जैसे बतबहियन अपने के बराबर बताबहियन कि हमनी के जे कार्यक्रम है ओकरा से संबंधित विवरण हमनी दहिए आ चर्चा करहिए आपस के बातचीत में। तो आय जे है चर्चा के विषय है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मजबूती में महिला उद्योग के योगदान आओ अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस। हमनी लोकगीत सुनबे कलाकार अन्नपूर्णा कुमारी से आ साथे साथ सुनबे एगो कविता पाठ कवि होथिन राम गोविंद यादव जानकिंदु आ समसामयिकी पर त हमने जरूर बातचीत करबे। तो आय जे 30 जून के दिन है

ई दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के रूप में मनावल जा है। ई जे दिवस है ई दुनिया भर में संसद के उपलब्धि के जश्न मनवे लेल आ आम लोगन के जीवन के नीमन बनाबे में जे संसदीय प्रणाली है एकर भूमिका के चिन्ह है आ हुनका लेल समर्पित है। ई जे दिन है एकर शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा से 2018 में पारित एगो प्रस्ताव के माध्यम से करल गेले हल। 30 जून के तारीख ई लेल चुनल गेले कि इहे दिन 1889 में अंतर संसदीय संघ के स्थापना होले हल। विश्व भर के संसद के ई एगो वैश्विक संगठन है। ई दिन संसद के ई सुनिश्चित करे लेल प्रोत्साहित करे है कि उ मजबूत रहथिन, पारदर्शी रहे, जवाबदेह रहे और आम जनता के सही प्रतिनिधित्व करे। संसदीय लोकतंत्र के बढ़ावा दे लेल आ नागरिक के अधिकार के रक्षा करे में हमर संसद कैसे काम करे है ई संबंध में जे बेसी जानकारी चाही तो अंतर संसदीय संघ के जो पटल है ओकरा पर मौजूद है आ ओकरे पर मिलतन। जो लोकतंत्र के फले फूले के है तो एकर आधार के रूप में संसद के मजबूत होना जरूरी है। ई दिवस पर प्रतिनिधि आ प्रमुख लक्ष्य के प्राप्त करे में करल गेल प्रगति शामिल होबे है। बातचीत हमनी के आगू जारी रहते तो कहे ने अब हाँ एगो तो याद पड़लन कि अब हमनी के विवाह के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं 22 जून से मलमास खत्म होले आ अभी विवाह के सीजन जे है एकदम जने सुनथिन तने ढोल बजा बज रहे हैं तो कहे ने अबरी है हम पहने एगो विवाह के गीत सुन लिये कलाकार हथिन अन्नपूर्णा कुमारी।

0: अभी सुन रहलखिन हल ई बियाह के गीत। गीत हलन जखने दुआरी लगे है लड़का तखने परिछल जा है, तो ई परिछन के गीत हले। हिनका से आरो लोकगीत सुनबे। आ अब जे है से देखबे हमनी जे गांव के अर्थव्यवस्था है उ कैसे मजबूत होवे, खास कर जे महिला हथिन गांव में हुन उ सब जे छोट छोट कुटीर उद्योग भाई अपन घर के काम काज करते तनी मनी काम कर रहा हथिन हस्तशिल्प के भाई बीनी बनेनाए, तो ऐ सब नियर जो छोटका चीज होब है एकर योगदान गांव के अर्थव्यवस्था में बड़ी महत्तम स्थान रखे है। कुटीर आ लघु उद्योग के माध्यम से महिला उद्यमिता जो है स्थानीय स्तर पर रोजगार के सृजन करे है, गरीबी के कम करे है, पलायन के रोके है। ये महिला के जे है आत्मनिर्भर बना के लैंगिक समानता आ समावेशी विकास के बढ़ावा दे है। गांव घर में देखा होथिन कि कृषि के जे उत्पाद है खेती किसानी से जे आवे है, अचार होल, पापड़ होल, मसाला होल, एकरा बनाबे में हस्तशिल्प के काम, बांस के टोकरी बनेनाए, सुजनी बनेनाए, आरो छोट छोट बहुत सन चीज होबे है, वो सब बना के उद्यम के जरिया से स्थानीय कच्चा माल के बेहतर उपयोग करल जाए। आ एकरा से जो है उत्पादन के लागत कम होबे है आ स्थानीय स्तर पर जो है उ टिकाऊ उत्पाद के निर्माण होबे है, रोजगार के अवसर बढ़े है, आमदनी के नया साधन होबे है, ग्रामीण बेरोजगारी के दरों कम है। पारंपरिक खेतीक अलावा महिला सब जे डेयरी उद्योग चला ले हथिन, मुर्गी बकरी पोस ले हथिन, मशरूम के उत्पादन हो कर ले हथिन, मधुमक्खी पालन, अब ई सब नियन ढेरे किसानी से संबंधित जे व्यवसाय है सफलता से उ चला रहलखिन हैं। आमदनी के बढ़ा के खेती के जे जोखिम होबे है, जे अनिश्चितता है, ओकरा कम कर हथिन। स्थानीय स्तर पर काम के अवसर मिलला से परिवार भाई कोनो कमाऊ सदस्य के पलायन नहीं होबे है, जे आमदनी होबे है उ सीधे परिवार के स्वास्थ्य पोषण आ बचपन के शिक्षा पर खर्च होबे है। आत्मनिर्भर भारत के जे सपना है एकरा साकार करे लेल लोकल से वोकल अभियान के एकरा से मजबूती मिले है। तो एकर बाद अब एकर बाद हमने सुनबे एगो कविता पाठ। कवि हथिन राम गोविंद यादव जानकिंदु।
1: हमर मगही कविता के शीर्षक है आजकल, आरंभ तोरे नाम पर आउ तोरे नाम पर अंत, हेमंत में सुतल सांप उठल ऋतु बसंत, आरंभ तोरे नाम पर आउ तोरे नाम पर अंत, बुधवार के श्री गणेश सन 2014 बुधे के भेले अंत, दुनिया के जान लया के तनी मानी श्रीमन, आरंभ तोरे नाम पर आउ तोरे नाम पर अंत, देख दिन के देखे में काहे करह तू देर, दिन के ना देखब तरतिया अकेले तो तोरा घेर, 2000 शनि रवि अधि वरिष एक भेगेल फेर।

2001 सोम से सोम हो गेल शेर, 2002 के मंगर, 3 के बुध, शुरू आउ अंत। 2004 शुरू शुक्र अधि बरिस भे गेल श्रीमंत। 5/6 2007 शनि रवि सोम जानल शुरू आउ अंत। 2008 अधि बरिस मंगर आउ बुध भे गेल श्रीमंत। आरंभ तेरे नाम पर आउ तोरे नाम पर अंत, आरंभ तोरे नाम पर आउ तोरे नाम पर अंत। सुनल हो भैया 2012 अधिवर्ष रवि तो सोम अंत। 2013 गंगा मंगर 14 बुध 15 गुरु श्रीमंत। इहे तरह धरती के दिनचर्या होइत हे श्रीमंत। एही तरह जाड़ा गर्मी बरसात हो जाहे श्रीमंत। 15 दिन के पखवारा 16 के सोहराई हो जाहे श्रीमंत। एही तरह दिन महीना समवंतर बीत जाहे श्रीमंत। आरंभ तोरे नाम पर आऊ तोरे नाम पर अंत। हमार दूसर मगही कविता के शीर्षक है परमात्मा। परमात्मा सिंधु सन गहरा बहुत विस्तार हो है, जेकरा में संसार के सब नदियन के पानी समा जाए। परमात्मा हिमालय सन ऊंचा बहुत विशाल हो है, जेकरा में ऊंचा नीचा वन उपवन सब समा जाए। परमात्मा 17 36 18 पुराण 19 कन्या 20 से बर हो है, जेकरा में सौंसे जग के ऋषि मुनि देव किन्नर नाग समा जाए। आदमी जोग भोग साथ करे बोला सब प्राणी से उत्तम हो है। आदमी में जग जुग जीव संपदा के संरक्षण के क्षमता हो है। राम कृष्ण बुद्ध बापू वर्धमान के आदमियत निखरल है संसार में। गौतम कनाद मुहम्मद कबीर के आदमियत बिखरल है आजो। सूर तुलसी रसखान बिहारी के आदमियत के आभा हो आभा है आजो। सूरज चांद सितारा के आदमियत के आभा है आजो। जबले चांद सितारा के आभा आवित रहत आकाश में, सुनो हो भाई तबले आदमी हो के जियत रहम आकाश में। हमार तीसरी मगही कविता के शीर्षक है बैसाख। तनिया रायल की गर्मी चढ़ल परमान, किसान बिरहा गावित थपन खरिहान। किसान बिरहा गावित थपन खरिहान। गर्मी चढ़ल बेसुमार की सुखल फसल के साख। चैत गेल की आ गेल महीना बैसाख, चैत गेल की आ गेल महीना बैसाख। भोरे पूर्वा दोपहर में लूक धुनई थे, कपार पर बोझ देह से गतर गतर पसेना चलई थे। सुन तरी में ककरी फरई तारी खूब चुबई थे। चैत के बाद बैसाख अब कहाँ सुनई थे। पेड़ बगात पहनलक नया बस्तर, खेत बधार के खुल गेल पुरनका बस्तर। धरती के खुल गेल आँख की आ गेल महीना बैसाख। साड़ी साया खुलल खुल गेल चोली बूटीदार। कहूँ धसल धरती कहूँ फटल दरार। केवाल में देखा जाके पुनपुल दरधा किनार। फल्गु गंगा के अगल बगल नालंदा के बधार। नदी नाला सूखल सूखल हरा पोखरा, देखेला हव त पहुँच जरा संध अखारा। जहवा लड़लन आके भीम सन जोधन, जहवा के माटी महावीर बुध के शोधल। जेकरा से निकल हल शांति अहिंसा के गंध, आज काहे निकले थे इतना दुर्गंध। हमार तीसरी रचना है जेकर शीर्षक है भारत हमर देश। धरती

0: के गुणगान करही, चरण छू प्रणाम करही, आ भारत मैया के गोदी में बुतरू के सम्मान करही, पुरखन के अरमान करही, उनका सत सत नमन करही, अपाद मस्तक अर्पण कर उनका लाक्रंदन करही, कुंवर भगत आजाद राजगुरु के याद करही हम, हुनकर राह पर चले ला पाद करही हम, गांधी नेहरू बोस के नीति अलगे छटा दिखावहे, नेक राह पर चल के जीवन जिए के राह दिखावहे, राम कृष्ण बुद्ध वर्धमान के सोधल जे ई धरती हे, लोहिया जे पी अम्बेडकर के बोधल जे ई धरती है, पग बढ़ा के चल के देखा हुनके ई उपदेश है, सब चीज से भरल पुरल ई भारत है हमर देश है, आव हम अरमान करही, चरण छू प्रणाम करही, भारत मैया के गोदी में बुतरू के सम्मान करही, भारत मैया के गोदी में बुतरू के सम्मान करही।
1: अभी अपने सुन रहलखिन हल ई कविता पाठ, कवि हलखिन राम गोविंद यादव जानकिंदु, हिनका ई कविता पाठ लेल हमनी देहिए धन्यवाद। अब समय जो हो है से हो गलन है समसामयिकी के, तो हमनी समसामयिकी में बातचीत करबे आए अंतर्राष्ट्रीय राहत मिशन पर। अंतर्राष्ट्रीय राहत मिशन जो है वो वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त क्षेत्र में जीवन बचबे लेल, चिकित्सा सहायता पहुँचाबे लेल आ पुनर्निर्माण के लेल चलबे वाला अभियान है। जैसे वेनेजुएला में भूकंप अले हल तो भारत सरकार ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत एगो बड़का राहत मिशन चलेलखिन हल, जेकरा में राहत सामग्री आ भीष्म क्यूब नियर उन्नत उपकरण जे है वो भेजल गेले हल। एकर अलावा भारत जे प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अभियान चलेलकै ओकरा में ऑपरेशन मैत्री हले, जे नेपाल में सहायता देवे लेल करल गेले, ऑपरेशन कावेरी हले जे सूडान में फंसल भारतीय के निकाले लेल राहत पहुँचाबे के लेल हले, ऑपरेशन दोस्त हले जे सीरिया आ तुर्की में भूकंप के समय में बचाव दल आ चिकित्सा उपकरण के तैनाती से संबंधित हले, स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन शक्ति, ई सब परमाणु परीक्षण से संबंधित हले। तो अब समसामयिकी में हम आर बात करबे ओकर पहिने कहने सुन लेवल जाए ई लोक भजन, कलाकार हथिन एक बार फिर से अन्नपूर्णा कुमारी।

अभी अपने सुनलखिन ई लोकगीत लोक भजन कलाकार हलखिन अन्नपूर्णा कुमारी। आ अब जे है हमनी समसामयिकी से संबंधित जे बातचीत करबे ओकरा में देखथिन कि आय हन हूल दिवस, आदिवासी स्वाभिमान संघर्ष आ बलिदान के अमर प्रतीक ई दिन के मानल जा है। आई 30 जून के हूल दिवस मनावल जा है। भारत के जे है स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में आदिवासी समाज के अद्वितीय साहस, स्वाभिमान आ स्वतंत्रता के प्रति अटूट समर्पण के ई प्रतीक है। वर्ष 1855 में सिद्धू कान्हू चांद आ भैरव मुर्मू हिनका नेतृत्व में संथाल समुदाय जे है अंग्रेजी शासन आ शोषणकारी जे व्यवस्था हले ओकरा विरुद्ध ऐतिहासिक हूल मने कि क्रांति के बिगुल फूकलखिन। तो ई खाली विद्रोह नहीं हले बल्कि अन्याय शोषण आ दमन के विरुद्ध न्याय सम्मान के लड़ाई हले। अब एगो हमनी सुनहिए चौहट कलाकार एक बार फिर से अन्नपूर्णा कुमारी।

देखथिन, हमनी के जे बिहार में है, लोकगीत के रंग बिरंग के विधा है। अभी हमने जे चौहट गीत सुन रहलिए हल, ये उत्तर प्रदेश आ बिहार के लोक संस्कृति में गाए जाए वाला पारंपरिक लोकगीत है। खास करके शादी ब्याह आ जे त्योहार अर होबा है भादो महीना में, ओकरा में गांव घर के महिला घर के जे चौखट होबा है हुआ ई गीत गावा हथिन। तो ई सब लोकगीत लेल हमनी दहिए धन्यवाद अन्नपूर्णा कुमारी के। आ समसामयिकी में हमनी एगो भारत के परमाणु कार्यक्रम जे है ओकर प्रमुख उद्देश्य पर जरूर बातचीत करबे, जे हमनी के यहाँ भारत देश में परमाणु कार्यक्रम चल रहले हैं। दो गो प्रमुख उद्देश्य है ऊर्जा उत्पादन आ राष्ट्रीय सुरक्षा। होमी जहांगीर भाभा ई कार्यक्रम के जनक हलखिन आ अभी ई तीन चरण के रणनीति में चल रहले हैं। तो एकरे साथ अब हमनी के समय ओरिया रहलन है, विदा दथिन, फेर मिलबन, प्रणाम।

अभी आप सुन रहे थे मगही कार्यक्रम मागधी। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बज रहे हैं। श्रोता लीजिए अब सुनिए आज सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से कुछ ही देर में, यानी शाम 6:05 पर आप सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन। शाम 6:10 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत।

आंखों देखा हाल, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। प्रायोजित कार्यक्रम जो फिट है वो हिट है, आप सुनेंगे 7 बजे। पुनः 7:15 पर आप सुनेंगे आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में खेले जा रहे ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे 7:30 पर। फिर से आप सुनेंगे आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच द किया ओवल लंदन में खेले जा रहे पहले सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत समाचार प्रसारित किए जाएंगे शाम 6:20 पर और शाम 6:30 पर आप सुनेंगे आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच द किया ओवल लंदन में खेले जा रहे पहले सेमीफाइनल मैच का

0: और आज 10:45 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। तो ये थी आज सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, अगला प्रसारण बस कुछ ही देर में।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल आज
0: भी बॉस है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन।

प्रणाम, ई आकाशवाणी के पटना केंद्र है। अब रउआ चंद्रमोहन से भोजपुरी में समाचार सुनी। राज्य में 53,000 करोड़ रुपया के लागत से 5 गो प्रमुख सड़क आ पुल परियोजना सबके निर्माण कल जाय। इस प्रस्ताव के जल्दीये केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिले के संभावना बा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कल नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन आ राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ भइल बैठक में ए पर सहमति बनल बा। केंद्र सरकार जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करे के आखिरी तारीख 31 जुलाई तक बढ़ा देले बिया। वित्त मंत्रालय के मुताबिक पिछला साल सितंबर में जारी भइल अधिसूचना में अपील दायर करे के आखिरी तारीख 30 जून तय कइल गइल रहे। अलग अलग हितधारक न्यायाधिकरण में भारी संख्या में अपील दायर होखे के चलते आयल तकनीकी खराबी के हवाला देके सरकार से आखिरी तारीख बढ़ावे के आग्रह कइले रहलन। सरकार करदाता लोगन के भी सलाह देले बिया कि उ लोग समय रहत ही अपील दायर कर देस आ आखिरी तारीख के इंतजार ना करस। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज कहले कि भारतीय सेना के आपन ताकत कोनो एक व्यक्ति से ना बल्कि आपन सैनिक, कमांडर और पूर्व सैनिक, उनकर परिवार आ देश के नागरिक के अटूट विश्वास से मिलेला। जनरल द्विवेदी आज सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गइलन। आपन विदाई समारोह में सेना प्रमुख द्विवेदी नई दिल्ली में मौजूद राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कइले। इस मौका पर उ कहले कि 4 दशक से बेसी समय तक भारतीय सेना में सेवा कइल उनकरा खातिर सबसे बड़ सौभाग्य के बात रहल। नया सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आपन जिम्मेदारी संभाल लेले बाड़न। केंद्र सरकार पेट्रोल आ डीजल के बिक्री पर लगावल गइल अस्थायी प्रतिबंध हटावे के फैसला कइले बिया। पेट्रोलियम आ प्राकृतिक गैस मंत्रालय

0: कहले बा कि सार्वजनिक क्षेत्र के तेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर काल से ई प्रतिबंध लागू ना रही। ध्यान देवे लायक बात बा कि पश्चिमी एशिया संकट के दौरान पेट्रोलियम उत्पाद सबके बिक्री पर 12 जून के अस्थायी प्रतिबंध लगावल गेल रहे। एकरा तहत एक ग्राहक के एक दिन में बेसी से बेसी 200 लीटर डीजल देवे के सीमा तय कल गेल रहे। मंत्रालय कहलस कि अब देश में पेट्रोल आ डीजल के आपूर्ति सामान्य हो गई बा, यही से जनहित में अस्थायी प्रतिबंध वापस लेवे के फैसला कल गेल बा। गांव देहात के विकास के बढ़ावा देवे वाली महत्वाकांक्षी योजना विकसित भारत जी राम जी काल से पूरा प्रदेश में लागू कल जाई। एकरा तहत हर वयस्क व्यक्ति के साल में 125 दिन के रोजगार के गारंटी दिहल जाई। ग्राम पंचायत सब योजना के निर्माण करी हैं आ मजदूर के बैंक खाता में मजदूरी के सीधा आ समय से भुगतान कल जाई। जी राम जी योजना अभी चल रहल मनरेगा योजना के जगह ली। राज्य के उत्तरी हिस्सा में मानसून के सक्रिय होखे से कई गो जिला में झमाझम बारिश भइल बा। मौसम विभाग आज गोपालगंज आ पश्चिमी चंपारण जिला खातिर भारी बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी कइले बा। ओहिजा दरभंगा पूर्वी चंपारण मधुबनी शिवहर सीतामढ़ी आ वैशाली जिला में भी कुछ जगह पर भारी बारिश के चेतावनी जारी कइल गइल बा। एने पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्सा में भी कुछ जगह पर बारिश होखे से लोग के गर्मी से राहत मिलल बा। सुप्रीम कोर्ट भोजपुरी के कथित फर्जी पुलिस मुठभेड़ मामला के सीबीआई जांच के मांग वाली याचिका पर सुनवाई करे से इनकार कर देले बा। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश आ न्यायमूर्ति शीलनागु के अवकाशकालीन पीठ याचिकाकर्ता के इस मामला में पहले हाई कोर्ट जाए के कहले बा। याचिका अधिवक्ता विशाल तिवारी दाखिल कैले रहन। ध्यान रहे कि राज्य सरकार के निर्देश पर इस मामला के न्यायिक जाँच अभी चल रहा बा। कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार कहले बाड़न कि राज्य के 26 गो संग्रहालय में सांस्कृतिक विरासत के बचावे और संजोए के काम के और मजबूत कल जाई। श्री कुमार पटना के विकास भवन में आयोजित विभागीय नियुक्ति पत्र बांटे के कार्यक्रम में बोलत रहले। इस मौका पर सहायक संग्रहालय अध्यक्ष के पद खातिर चुनल गई 9 गो उम्मीदवार के नियुक्ति पत्र दिहल गई। उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी कहले बाड़न की राज्य में आवे वाली बाढ़ और सुखाड़ के स्थिति से निपटे खातिर पूरा तैयारी कल गई बा। श्री चौधरी पटना में जदयू ऑफिस में पत्रकार से बातचीत करत कहले कि सरकार एगो नई योजना के तहत बाढ़ के पानी के नहर और दूसर माध्यम से बटोरे के इंतजाम शुरू कैले बिया। ऐसे सुखाड़ के घड़ी किसान के फायदा मिली। उ कहले कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अगुवाई वाली सरकार केंद्र सरकार के साथ नीमन तालमेल बना के कई गो जरूरी योजना के आगे बढ़ा रहल बिया। एकरे साथे ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक हिजा समाप्त भइल।
1: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 6:10 हो रहे हैं। श्रोता आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: मनोज मुंतशिर के बोल, अम्माल मलिक का संगीत, पलक मुच्छल की आवाजों में आप सुन रहे थे फिल्म एमएस धोनी से लिया गया ये गीत। श्रोताओं, आकाशवाणी पटना पर आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:20 होने को हैं। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जा रहा है। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। आदौ मुख्याः वार्ताः। यूरोबैंक संस्थया ग्रीसतः भारतं प्रति यूपीआई आधारित धनप्रेषण सेवा समारब्धा। उपक्रमोयम् ऐतिहासिकः वर्तते इति वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः सबलम् अवोचत्। पाकिस्तानस्य FATF संस्थायाः ग्रे लिस्ट इत्यस्य निरीक्षणस्य आलोचनायाः अनन्तरं भारतेन एतां संस्थां प्रति स्वीय दृढ समर्थनं पुनः प्रकटीकृतम्। जनरल धीरज सेठः जनरल उपेन्द्र द्विवेदितः भारतीय सेनायाः 31वें सेनाध्यक्षत्वेन पदभारं गृहीतवान्। अमेरिका ईरानयोः शान्तिवार्तायाः भविष्यं प्रति अनिश्चितता वर्तते, यतोहि तेहरान प्रशासनेन अमेरिका राष्ट्रपतिनः ट्रम्पस्य दोहा नगरे मेलनस्य विषयः दृढतापूर्वकं खण्डितः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन उत्तर प्रदेश बिहार मध्य महाराष्ट्र कोंकण गोवा राज्येषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रख्यापितम्। अपि च क्रीडा वार्तासु, फीफा विश्वकप स्पर्धा मालिकायां मोरक्को देशेन नीदरलैंड दलं पराभूय राउंड ऑफ 16 इत्यत्र प्रवेशम् अवाप्तम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। ग्रीस देशस्य यूरो बैंक इति संस्थया भारते सीमापार धन प्रेषणाय यूपीआई आधारित सेवा समारब्धा, येन भारतीय ग्राहकाः अत्यल्प व्ययेन अतीव तीव्र गत्या धनं स्थानांतरितं कर्तुं शक्नुवन्ति। अयम् अभिनव पदक्षेपः यूरोबैंक संस्थायाः भारतस्य नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इत्यस्य च अन्ताराष्ट्रिय शाखया सह कृतेन रणनीतिक सहयोगेन संभवो जातः। सामाजिकान्तर्जालीय पटले प्रसृते संदेशे भारतस्य वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः संसूचयत् यत् यूरोबैंक संस्थायाम् अस्याः सेवायाः उद्घाटनं भारतस्य अंकीय पारिस्थितिकी तंत्रस्य वैश्विक विस्तारे एकम् अपरम्

0: निर्वाचन कार्यालयैः सह सम्बद्धाः नवपञ्चाशत् सहस्रतोपि अधिकाः BLO अधिकारिणः नियुक्ताः सन्ति। मेघालय राज्ये च ईस्ट खासी हिल्स जनपदस्य उपायुक्तः अभिलाष वरणवालः सूचितवान् यत् BLO अधिकारिणः जनपदे स्थितेषु सर्वेषु एकविंशत्युत्तरैकसहस्र मतदानकेन्द्रेषु गत्वा तेभ्यः मतदातृभ्यः प्रपत्राणि वितरिष्यन्ति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन आगामी द्विदिवसेषु उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवाषु अतिवृष्टेः कृते नारंगी वर्णीया संचेतना प्रकटिता। एतादृशी एव स्थितिः अद्य सिक्किम, असम, मेघालय, केरल, माहे, उपहिमालयी, पश्चिम बंगालस्य च भागेषु सम्भाव्यन्ते। अपरपक्षे विभागेन अद्य दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ इत्यादिषु राज्येषु उष्णतरंगस्य पूर्वानुमानं प्रकटितम्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः न्यगादीत् यत् भारतेन षड्विंशतितोप्यधिक देशैः सह अष्टाविंशति प्रवासन गतिशीलता सहभागिता सहमति पत्रेषु हस्ताक्षराणि विहितानि। तेन अवैध प्रवासं, शोषणात्मक प्रथाः, कपटपूर्त मध्यस्थतां च प्रतिरोद्धुं राष्ट्राणां सामूहिक उत्तरदायित्वं प्रति विशेषरूपेण उपादिष्टम्। हूल दिवसावसरे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विदेश शासनस्य अन्यायस्य विरुद्धं दृढतया समुपस्थितेभ्यः सिंधो काहू, चंद भैरव, फुलो झानु इत्यादिभ्यः सहैव सर्वेभ्यः वीर जनजातीय जनेभ्यः भावपूर्णां श्रद्धांजलिं समर्पितवान्। फीफा विश्व कप स्पर्धा मालिकायां मोरक्को पैराग्वे देशौ राउंड ऑफ 16 चरणे स्वस्थानं सुरक्षितवन्तौ। मैक्सिको देशस्य ग्वाडालूप नगरे आयोजिते रमणीये द्वन्द्वे मोरक्को दलेन नीदरलैंड दलं 3-2 इत्यंकैः पराजितम्। अद्य रात्रौ अमेरिका देशस्य टेक्सास प्रान्ते आइवरी कोस्ट तथा नॉर्वे इत्यनयोः मध्ये स्पर्धा भविष्यति इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे आकाशवाणी है। आईसीसी विमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20।
2: दिस इज आकाशवाणी। We now bring you the ball-by-ball commentary of the first semi-final T20 cricket match to be played between Australia and West Indies of the ICC Women's T20 World Cup 2026. Before that, listen to a special program, First Ball.
3: संभावित बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त तैयारी की गई है। श्री चौधरी ने पटना स्थित जदयू कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार ने नई योजना के तहत बाढ़ के पानी को नहरों और अन्य माध्यमों से संग्रहित करने की व्यवस्था शुरू की है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में NDA सरकार सुशासन और विकास के एजेंडे पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण सहयोग मिल रहा है। केंद्र सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून यानी आज तक निर्धारित की गई थी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए। अपनी विदाई समारोह के तहत सेना प्रमुख द्विवेदी ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 4 दशकों से अधिक समय तक भारतीय सेना में सेवा करना उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। उन्होंने नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए शुभकामनाएं दी हैं। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर कल से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। गौरतलब है कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री पर 12 जून से अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। ग्रामीण

0: विकास को बढ़ावा देने वाली महत्वाकांक्षी योजना विकसित भारत जी राम जी कल से प्रदेश भर में लागू कर दी जाएगी। इसके तहत हर वयस्क व्यक्ति को वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। ग्राम पंचायतें योजना का निर्माण करेंगी और श्रमिकों के बैंक खातों में मजदूरी का सीधा और समयबद्ध भुगतान किया जाएगा। जी राम जी योजना वर्तमान में चल रही मनरेगा योजना का स्थान लेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने भोजपुर कथित फर्जी पुलिस मुठभेड़ मामले की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति शील नागू की अवकाशकालीन पीठ ने याचिकाकर्ता को इस मामले में पहले उच्च न्यायालय का रुख करने को कहा है। यह याचिका अधिवक्ता विशाल तिवारी ने दाखिल की थी। गौरतलब है कि राज्य सरकार के निर्देश पर मामले की न्यायिक जाँच हो रही है। रोहतास जिले के काराकाट प्रखंड में फर्जी डिग्री के आधार पर कार्य कर रहे 13 शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से सेवा से हटाने का निर्देश दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी मदन राय ने अपने आदेश में कहा है कि आरोपी शिक्षकों से मानदेय की वसूली की जाएगी, साथ ही उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा है कि राज्य के 26 संग्रहालयों में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का कार्य सुदृढ़ बनाया जाएगा। श्री कुमार पटना के विकास भवन में आयोजित विभागीय नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर सहायक संग्रहालय अध्यक्ष पद पर चयनित 9 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे राज्य में सक्रिय हो गया है। इसके कारण कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार खगड़िया, समस्तीपुर और जमुई में आज सुबह तेज बारिश हुई। पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, कटिहार, शिवहर, सीतामढ़ी, भागलपुर, पूर्णिया समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी पटना में कार्यरत वरीय अभियंता सहायक बिपिन चंद्र गुप्ता आज सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर आयोजित विदाई कार्यक्रम में केंद्र अध्यक्ष एचडी सिडाम समेत अधिकारियों और कर्मियों ने उन्हें सफल और स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं दी। एफएम पर समाचार समाप्त हुए।
1: आकाशवाणी का ये विविध भारती केंद्र पटना है। हम आपको कार्यक्रम संबंधी एक सूचना दे दें। श्रोताओं, आपका मनपसंद कार्यक्रम फोन इन फरमाइश आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार को प्रातः 10:35 से 11:30 बजे तक। फोन इन फरमाइश कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग प्रत्येक बुधवार को 11 बजे से की जाती है। अगर आप अपनी पसंद की फिल्मी नगमे सुनना चाहते हैं तो कल यानी बुधवार को 11 बजे फ़ोन कीजिए हमारे इन नंबरों पर 0612-454-1651। दूसरा नंबर है 0612-222-500। ये विविध भारती का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आप ही के गीत। सुनने वाले दोस्तों को उपेंद्र का प्यार भरा नमस्कार।

जी हाँ दोस्तों, कहीं कहीं रिमझिम बारिश हो रही है और ज़ोरदार बारिश भी आ चुकी है। तो ऐसे मौसम में कार्यक्रम का ये पहला गीत आपने सुनना चाहा है, फिल्म है मोहरा। इस गीत को हमारे इन श्रोताओं ने पसंद किया है। आप हैं नरहन स्ट्रीट से उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, बेबी आराध्या, ललन मिश्रा, मिसर मोहल्ला नरहन बाज़ार से बीके मिश्रा, गुंजन परासर, डब्लू मिश्रा, छोटू और यहीं से लल्लू सूरगुनैया। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी ठाकुर, सूरज, ज्योति और रियांश। आप सभी मित्रों ने सुना चाहा है मोहरा फिल्म का ये गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत आप सब श्रोताओं की पसंद पर। आप हैं नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी बिहार से, अकरम हुसैन प्रिंस बेगम इशरत अकरम नवासा, रहान बाबू नवासा, हुमेरा नाज नवासी, सुमेरा नाज, नुसरत जहां, साजिया शाही नाज और बच्चू शेख। अंटाघाट सब्जी मंडी पटना से आप हैं विजय कुमार, अवधेश कुमार और आप हैं शत्रुघ्न चौधरी। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरवा से कार्यकारी मीनाकारी पुंजराज आर्यन, आरती पुंज आकर्षण, जयश्री पिंकी रिंकी नीतू मोहम्मद फारूक ललन मिश्रा और जयंत कुमार बैरागी। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत आप सबकी पसंद पर। फिल्म है सबक, स्वर दिया है मुकेश ने।

मजबूर फिल्म का ये गीत लीजिए सुनिए, मोहम्मद अजीज़ अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में इस गीत को सुनना चाहा है। बोरिंग रोड पटना से रमेश, आदित्य सुनैना, प्रेमलता, विनय, राहुल और बंदर बगीचा पटना से आप हैं पूजा, पल्लवी, प्रतीक, स्नेहा, तमाम दोस्त। ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी ठाकुर, सूरज, ज्योति ठाकुर, रियांश और गुड़िया ठाकुर। ग्राम सामस बुजुर्ग पोस्ट बरबीघा जिला शेखपुरा से आप हैं गरीबन पासवान, मोतीलाल, धीरेंद्र पासवान, मोहन पासवान और तमाम दोस्त आपके।

सिर्फ तुम। इस फिल्म का ये गीत पेश है अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में। इसे लिखा है समीर ने और धुन बनाई है नदीम सरवण ने। पसंद करने वाले श्रोता साथी हैं राजनगर चांदनी चौक से राजू कुमार गुप्ता, विनीता गुप्ता, रविराज, आशुतोष, संजय सिंह और उनके सभी साथी। महावीर स्थान सीतामढ़ी से प्रभात कुमार गुप्ता, निक्की गुप्ता, मदन गोपाल गुप्ता और वैद्यनाथ प्रसाद गुप्ता।

0: सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 7 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम जो फिट है वो हिट है, और मैच का आंखों देखा हाल इस प्रायोजित कार्यक्रम के बाद पुनः आप सुन सकेंगे।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं साई हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर पटना।

0: यही है।
1: नमस्कार, मैं हूँ राजेश और एक बार फिर से आप सबों के घर आंगन में आ गया, आ गई नी, हाँ, कार्यक्रम लेके। कार्यक्रम के नाम है हाँ, जो फिट है वो हिट है। सही में जिंदगी में जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, वही जीवन का आनंद ले पाता है, ऐसा हमने पर्सनली फील किया है और आप लोगों से भी जाना है। ये कार्यक्रम जो फिट है वो हिट है में हम बातें करते हैं पुरान से पुरान हड्डी या नस के। कौनो समस्या हो, कोई भी समस्या हो, तो आप आ सकते हैं यहाँ डॉक्टर राजीव कुमार सिंह के पास। जी हाँ, आप हमें मोबाइल से भी खबर कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और ये कार्यक्रम जो फिट है वो हिट है हम लेकर आते हैं साई हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर की तरफ से। हम कहनी हा साई हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर, जे पूर्वी बोरिंग कैनाल रोड विष्णु प्लेस के बगल वाला गली में, हाँ पटना में हा, बोरिंग रोड में हा, वही जे हाँ वही जे के तरफ से हम ये कार्यक्रम लेके आ रहे हैं। ये कार्यक्रम हम लेके आ रहे हैं साई हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर की तरफ से। ढेर सारी बातें होंगी, हाँ बहुत सारी बातें, डिस्काउंट पर, इन चीजों पर आपने पूछा था, बच्चों की समस्या पर, तो आज हम सारे सवाल डॉक्टर राजीव से पूछेंगे।

0: डॉक्टर राजीव का नंबर एक बार लिख लें, अगर आपको ऐसा लगे तो जरूर बात कर लीजिएगा, 8877372299। हम हिंदी में तो बता दिए, अंग्रेजी में 8877372299। छूट गई, बताइए आगे फिर से। हाँ बताएंगे, आगे फिर से बताएंगे। फिलहाल बहुत सारे सवाल आज हैं जिसका जवाब डॉक्टर राजीव कुमार सिंह से चाहिए, और डॉक्टर राजीव कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं, हमारे सवालों का, हमारे बोले तो राजेश का नहीं, आप सबों का, आप मतलब राजेश जी हाँ, आपकी तरफ से जो सवाल आए हैं हम वही सवाल इनसे पूछेंगे। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है पहले आज के इस कार्यक्रम में।
1: आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? अभी तो गर्मी बहुत है, फिर भी आप लोग इतने प्यार से यहाँ पे आ रहे हैं, अपने इलाज करवा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है कि अब धीरे धीरे इतनी अवेयरनेस हो गई कि लोग अब बहुत दिन तक दर्द को नहीं खींचते हैं, जल्दी आ जाते हैं, अपना इलाज कराते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट है। वैसे लोग जो बहुत दिनों के बाद आते थे, पहले क्या होता था कि बहुत लंबा टाइम दवा खाते थे, उसके बाद आते थे तो जल्दी रिजल्ट नहीं आता था, जल्दी बीमारी ठीक नहीं होती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जब भी दर्द हो रहा है उसके एक हफ्ते के अंदर आ जा रहे हैं आप लोग, और देखते देखते आपका मजाक मजाक में दर्द ठीक हो जा रहा है। तो ऐसे ही अवेयरनेस पूरी दुनिया में फैलनी चाहिए, जो आप लोग फैला सकते हैं, जो लोग ठीक होके जा रहे हैं वो फैला सकते हैं कि कोई भी बीमारी है दर्द का तो उसमें ज्यादा समय नहीं लगाना है, जल्दी आके ठीक करवाना है।
0: डॉक्टर साहब एक बात बताइए, बहुत दिनों से हम सोच रहे थे आपसे बातें करें, हाँ, कि कुछ किफायती डिस्काउंट कुछ हो जाता, ऐसी व्यवस्था हो जाती कि जिससे लोगों को राहत हो जाती, खास करके जो लोग इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से इसे सुनकर आपके क्लिनिक में आ रहे हैं।
1: देखिए राजेश जी, सबसे बड़ी बात है डिस्काउंट तो ऐसा नहीं है, जितने सीनियर सिटीजन आते हैं हमारे यहाँ स्पेशल डिस्काउंट होता ही होता है, और जो आयुष्मान कार्ड धारक है उनके लिए भी स्पेशल डिस्काउंट होता है, ऐसा नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि सारा इलाज आयुष्मान कार्ड से हो जाए, तो ये टेक्निकल इलाज है, ये संभव नहीं है कि सारा कार्ड से इलाज हो जाएगा। लेकिन जहां भी कार्ड का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है कुछ तो जरूर होता है, और वैसे सीनियर सिटीजन और जिनके पास आयुष्मान कार्ड है वैसे लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कार्ड लेके आए, उसमें जितना भी डिस्काउंट हो पाएगा आपके लिए किया जाएगा। पहले ही बता देना है कि हमारे पास कार्ड है, तो जो 600 रुपया फीस है देखने का, उस देखने के बाद जब भी आप भर्ती होते हैं तो उसमें कार्ड का इस्तेमाल होता है, दिखाने में इस्तेमाल नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। और किसी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम ज्यादा है या कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो आप 8877372299 पे फोन करिए और पूछ लीजिए सवाल, और आपको जवाब मिल जाएगा। और हाँ, किसी भी तरह का अगर आपको परेशानी है दर्द का, किसी भी हड्डी नस से संबंधित, जिसमें आपको लगता है कि ऑपरेशन की ही जरूरत होगी, इसके अलावा नहीं ठीक हो सकता है, या कोई डॉक्टर आपको ऑपरेशन का सलाह दिया है, तो आप ऑपरेशन में जाने से पहले जरूर यहाँ मिलिए, हो सकता है कि आपके ऑपरेशन को टाला जा सके, आपके ऑपरेशन के बिना ही आपको ठीक कर दिया जाए।
0: डॉक्टर साहब बच्चों को लेकर सवाल है, बच्चों में अभी से ही हाँ पेन, दर्द की समस्या, ये सारी चीजें हो रही हैं जिससे बच्चे बहुत परेशान हैं, और हमें लगता है आगे चलकर और परेशानी बढ़ सकती है, क्या कहिएगा लोगों से?
1: देखिए राजेश जी, छोटे बच्चों में दर्द की समस्या आने का कारण हो रहा है एक तो खान पान, उसके बाद लैकिंग ऑफ एक्टिविटीज। आजकल लोग मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं, सारे बच्चे बाहर निकल नहीं पाते हैं, ठीक है ना। जो बच्चे बाहर के गेम खेलेंगे, माने फुटबॉल, क्रिकेट, इस तरह का जो भी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, जो भी बाहरी गेम, आउटडोर गेम जिसको बोलते हैं, वो खेलेंगे ना तो तकलीफ नहीं होगी। दूध की लैकिंग हो रही है, दूध की जगह कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, और क्या क्या सब आजकल नया नया सब ड्रिंक आ गया वो पी रहे हैं। भैया ये सब छोड़ो, आप दूध पियो, जूस पियो, फल फ्रूट्स खाओ, तो देखो ना ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर फिर भी जिनको प्रॉब्लम हो रहा है वो जरूर साईं हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर आए, जो कि पूर्वी बोरिंग कनाल रोड में है, राय जी की गली पटना में है। किसी के भी बच्चे को इस तरह का परेशानी हो रही है कि उसको दर्द की समस्या रहती है सुबह में, रात में, दिन में, कभी भी, तो ज्यादा लेट नहीं करना है, उनको लेके आइए, दिखलाइए, और उसको हम लोग ठीक करेंगे।
0: डॉक्टर राजीव, हमने देखा है कि ज्यादातर परेशानियां जो है ना हमारे खान पान या हमारे दिनचर्या में या हमारे जीवन शैली में अगर कहीं से कोई परिवर्तन होता है ना तो उसका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। अब बच्चे हैं, कोमल हैं, उनके खान पान में अरे भैया दाल भात

0: रोटी, हाँ सलाद, फल, बहुत सारी चीज ऐसे हैं, दूध, शक्कर, ये सब खाओ ना। आप अपने आप को स्वस्थ बनाइए, तंदुरुस्त बनाइए। बच्चे में तो आधार मजबूत करने की जरूरत होती है। बहरहाल हम डॉक्टर साहब का नंबर बताए देते हैं, आप उस पर चाहें तो बात कर लें। गार्जियन जिनके बच्चों के साथ ये समस्याएं हो रही हैं, 8877372299 8877372299। कार्यक्रम चल रहा है, जो फिट है वो हिट है। जी हाँ, जो फिट है वो हिट है, जिसे हम लेकर आते हैं साईं हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर की तरफ से, जो पटना के बोरिंग कैनाल रोड में है, पूर्वी बोरिंग कैनाल रोड, हाँ राय जी की गली है, यही है ये। डॉक्टर राजीव से यही मुलाकात हो सकती है। और अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, शुगर पेशेंट हैं, हाँ कंधा जाम हो जा रहा है, बहुत परेशानी में रहते हैं। एक सीधा सवाल आपसे, कि आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में कोई ऐसा इलाज है जिससे शुगर पेशेंट का जो कंधा जाम हो रहा है उसको ठीक किया जा सके, उनको राहत दी जा सके, उनको आराम पहुंचाया जा सके, उनको जीवन जीने के लिए एक अच्छा माहौल, दर्द निवारण करके दिया जा सके?
1: हाँ राजेश जी, क्यों नहीं होगा। जिनका कंधा जाम है वो फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं, उसके लिए आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। फ्रोजन शोल्डर तो हमारे 3 दिन 4 दिन 5 दिन में ठीक हो जाता है। बस आपको आना है और फोन करना है 8877372299 पे फोन करिए और इधर आके और अपना इलाज कराइए। मेरे को लगता है कि आपका अगर कंधा 3 महीना का है तो 3 दिन में ठीक हो जाएगा, 2 महीना से दर्द है तो 2 दिन में ठीक होगा, 1 महीना से है तो 1 दिन में भी ठीक हो सकता है, अगर 6 महीना से है तो थोड़ा समय लग सकता है। तो आपको बस ये देखना है कि आपका शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में रहना चाहिए और किसी तरह का बीपी यूपी का, कभी कभी पता है आपको राजेश जी, जिसको हार्ट में दिक्कत होने लगता है तो उसके बायां कंधा जाम होने लगता है, तो उससे भी एक हम लोग इवोल्यूशन कैलकुलेशन करते हैं अपना उसमें कि कहीं हार्ट से तो रिलेटेड इशू नहीं हो रहा है। तो इसलिए कंधा जाम जो है आपके हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। इसलिए जिसको भी ये रेडियो प्रोग्राम सुन रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके कंधा जाम हो रहा है तो तुरंत परामर्श ले आके इलाज करवाएं, क्योंकि अगर वो जाम रहेगा तो आपके हार्ट का जो है वो नसों को ब्लॉक करना शुरू करेगा, उसमें खून का संचार कम करेगा। ध्यान दीजिएगा कि ऐसे केसेस आपको आते हैं, अगर कोई भी इर्द गिर्द दिखता है तो आप पटना में जरूर मेरे नंबर को दे दीजिए और भेज दीजिए साई हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर में, और आपको 1 हफ्ता 10 दिन जो भी रहना पड़ेगा रह के इसको इलाज कराया जाएगा और उसको ठीक कर दिया जाएगा।
0: अगला सवाल पूछें डॉक्टर राजीव से, उससे पहले डॉक्टर साहब का नंबर है 8877372299 8877372299। डॉक्टर राजीव, एक सवाल है, जिनमें घुटनों की समस्या रहती है और घुटने सट गए हैं, बहुत पीड़ा में हैं, तो क्या उनके लिए कोई इलाज है, वो क्या करें कि उन्हें सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए और जिंदगी आसानी से जी सकें?
1: देखिए राजेश जी, जिनके घुटने की समस्या है उनको तो मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ, बहुत सालों से, आज से 10-15 सालों से लोग इलाज कराते हैं यहाँ आके, जिनके घुटने में ग्रीस की कमी हो जाती है इसलिए ज्यादा दर्द होता है तो ग्रीस डलता है। अब तो नया चीज ऐसा आ गया है कि आपका सटा हुआ घुटना बिना काटे हुए खुल जाता है, उसको रोबोटिक नी डिकम्प्रेशन बोलते हैं, मतलब मशीन जो होती है, रोबोट, आदमी नहीं, आदमी पहले घुटना को खींचता था, मशीन उसको गैपिंग को बनाता है। तो बहुत कुछ धीरे धीरे धीरे बदलते गया है, और वैसे में हम बार बार कहते हैं कि जिसको भी घुटना का ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है या डॉक्टर ने लिख दिया कि ऑपरेशन कराना है तो आप घबराए नहीं, आपके पास एक साई हेल्थ केयर ऑप्शन है पटना में जहां पे आपके घुटने का ऑपरेशन को बचाया जा सकता है। और मेन कारण यही होता है कि घुटने का ग्रीस खत्म होना, ग्रीस अगर घुटने के अंदर साइनोवियल फ्लूइड अगर डल जाता है तो आधा रोग तो वैसे ही ठीक हो जाता है, बाकी आप दवा खाते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, और अभी जो गैपिंग सिस्टम आ गया, गैप बनाने वाला मशीन, तो उसको आके आपको गैप बनवा लेना है, जिससे बहुत हद तक आपका घुटना, मतलब जिसका पूरा खराब हो गया उसका 50% तक भी ठीक हो सकता है, इसकी गारंटी है।
0: और अंतिम सवाल, गर्मी का मौसम है, हीट स्ट्रोक लगने की संभावना बहुत ज्यादा है, अगर लग जाए हाँ तो बहुत स्थिति गड़बड़ हो जाती है, हाँ क्या कहिएगा इस विषय में आप, और कैसे ठीक किया जा सकता है?
1: देखिए ठंडा का दिन में जो लकवा मारता है वो रिकवरी हो जाती है, लेकिन गर्मी के दिन में जो लकवा मारता है वो हीट उस

0: हीट स्ट्रोक होता है। सोच लीजिए कोई चीज गर्म चीज क्या होता है, ठंडा चीज तो रिकवर करेगा, जैसे शरीर अगर खत्म भी हो जाता है बर्फ में रखते हैं तो बहुत दिन तक जिंदा रहता है, ठीक है ना। वैसे जिंदा मतलब मरा हुआ इंसान भी उसका शरीर एक्टिव रहता है, वो जल्दी खराब नहीं होता है। वैसे ही अगर उसको गर्म में डाल दीजिएगा तो जल के राख बन जाएगा। वैसे लकवा क्या होता है कि अगर जो गर्मी के दिन में होगा वो हीट स्ट्रोक होता है, वो बहुत खतरनाक होता है, वो जला देगा एक तरह से समझिए, ब्रेन हैमरेज कर देता है। तो धूप से तो बचना ही बचना है, ठीक है ना, धूप से कोई कंट्रोल नहीं करना है। वैसे लोग जिनको हार्ट की समस्या है, दिल की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, बीपी की बीमारी है, तो वो धूप से बचे। और अगर किसी को लकवा मार देता है हीट स्ट्रोक तो उसको शरीर को एकदम ठंडा करते रहे, बहुत गर्मी नहीं होने देना है। और बाकी हमारे पास लेके आइए, अगर वैसा कोई कंडीशन का मरीज होता है जिसमें लगता है कि बहुत सीरियस हो गया है, या नहीं भी सीरियस है तभी भी उसको थोड़ा सा भी अगर लगता है एक साइड वीकनेस हो रहा है, तो वैसे पेशेंट को जरूर लेके आए। और मेरे को लगता है कि वैसा पेशेंट जरूर रिकवरी हो जाएगी। तो जिसको भी हीट स्ट्रोक का प्रॉब्लम है उसको आना है और आके इलाज करवाना है। आप आइए हमारे यहाँ, आपको पहले से बेहतर बनाएंगे। अब बेहतर कितना होगा क्या होगा ये तो भगवान जाने, और भगवान ही सब कुछ करते हैं, हम लोग तो एक माध्यम है, जरिया है। गर्मी के दिनों में आप ये खाइए, ये पीजिए, ये रहिए, ठंडा चीजों का ज्यादा यूज करिए, ठंडा पानी पीजिए जो आपके सेहत के लिए अच्छा रहेगा, जूस पीजिए, आम खाइए, कच्चा आम खाइए, कोई भी आम पौधा पेड़ से फल गिरा हुआ तुरंत नहीं खाना है, उसको पानी में ठंडा करना है फिर खाना है, तब देखिए आपको किसी तरह का कोई भी बीमारी नहीं होगा, आप स्वस्थ रहेंगे, खुशहाल रहेंगे और आपकी फैमिली का भी पैसा बचेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब के लिए गुड नाइट, सभाकर नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल।
1: डॉक्टर साहब ने तो दुआ सलाम किया और निकल गए। हाँ हाँ, बहुत तेजी में थे, बहुत सारे पेशेंट इंतजार कर रहे थे। अच्छा लगा डॉक्टर साहब आए, आपने जवाब दिया। और डॉक्टर राजीव का नंबर है 8877372299, 8877372299। और ये कार्यक्रम जो फिट है वो हिट है हम लेकर आ रहे हैं, साई हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर, पूर्वी बोरिंग कैनाल रोड, विष्णु प्लेस के बगल में राय जी की गली है, उनकी तरफ से अगला एपिसोड एक बार फिर से लेके आएंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और जिंदगी का मजा लेते रहें। और राजेश आप सबों को कहता है,
2: साई हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर पटना,
3: जिसके पास बल्ले पासों की एक सॉलिड फहरिस्त है, इसके अलावा गेंद पासी में भी कमाल का प्रदर्शन, 5 के 5 मैचेस जीते उन्होंने।
4: सुनना न भूलें प्रतिदिन सुबह और शाम 6:45 पर विविध भारती का कार्यक्रम संगीत सरिता।

इल्ज़ाम इस फिल्म का गीत सुनिए आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज़ों में। गीतकार हैं अनजान, संगीत है बप्पी लहरी का।

जवानी इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज़ों में। गीतकार हैं गुलशन बावरा, संगीतकार हैं राहुल देवबर्मन।

श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 7:25 हो रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: और इस गीत के बाद
3: छाया गीत।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। ग्रामीण विकास को समर्पित महत्वाकांक्षी योजना विकसित भारत जी राम जी कल से प्रदेश भर में होगी लागू। प्रत्येक वयस्क को 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, राज्य की एनडीए सरकार सुशासन और विकास के एजेंडे पर कार्य कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने भोजपुर कथित पुलिस मुठभेड़ मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। और दक्षिण पश्चिम मानसून का राज्य भर में हुआ विस्तार। मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, कटिहार, शिवहर, सीतामढ़ी समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने वाली महत्वाकांक्षी योजना विकसित भारत जी राम जी कल से प्रदेश भर में लागू कर दी जाएगी। इसके तहत हर वयस्क व्यक्ति को वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। ग्राम पंचायतें योजना का निर्माण करेंगी और श्रमिकों के बैंक खातों में मजदूरी का सीधा और समयबद्ध भुगतान किया जाएगा। जी राम जी योजना वर्तमान में चल रही मनरेगा योजना का स्थान लेगी। राज्य में 53,000 करोड़ रुपए की लागत से 5 प्रमुख सड़क और पुल परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। इस प्रस्ताव को जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कल नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है। इनमें पटना पूर्णिया मार्ग, वाराणसी कोलकाता कॉरिडोर के 2 पैकेज, गंडक नदी पर पुल, मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी राष्ट्रीय राजमार्ग और अनीसाबाद दीदारगंज एलिवेटेड रोड सहित कई परियोजनाएं शामिल हैं। बिहार विधान परिषद में नवनिर्वाचित सदस्यों का कल शपथ ग्रहण होगा। परिषद के उप सभागार में अपराह्न 4 बजे आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह, भाजपा नेता संजय मयूख, लोजपा रामविलास के अशरफ अंसारी और राजद के सुनील सिंह समेत 10 नवनिर्वाचित पार्षदों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई जाएगी। कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा है कि राज्य के 26 संग्रहालयों में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का कार्य सुदृढ़ बनाया जाएगा। श्री कुमार पटना के विकास भवन में आयोजित विभागीय नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर सहायक संग्रहालय अध्यक्ष पद पर चयनित 9 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। राज्य के सरकारी स्कूलों में आगामी 4 जुलाई को अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी किया है। संगोष्ठी के दौरान स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति और

0: ड्रॉपआउट, सरकारी योजनाओं तथा स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं पर चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि 27 जून को भीषण गर्मी और अवकाश के कारण कई स्कूलों में संगोष्ठी का आयोजन नहीं हो सका था। रोहतास जिले के काराकाट प्रखंड में फर्जी डिग्री के आधार पर कार्य कर रहे 13 शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से सेवा से हटाने का निर्देश दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी मदन राय ने अपने आदेश में कहा है कि आरोपी शिक्षकों से मानदेय की वसूली की जाएगी, साथ ही उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी।
1: काराकाट प्रखंड में हमारे 13 ऐसे शिक्षक थे जो अमान्य संस्थान में भारत शिक्षा परिषद उड़ीसा से उपाधि प्राप्त किए थे, उन्हीं के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और सभी की सेवा समाप्ति के लिए प्रखंड के जो हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी सह सचिव है उनको लिखा गया है कि अगर बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अगर ये सब सेवा में है तो फिर उनको सेवा से मुक्त किया जाए और जो राशि लिए है उनकी वसूली की जाए।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी है।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध कल से हट जाएंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से एक दिन में अधिकतम 200 लीटर पेट्रोल या डीजल देने की सीमा समाप्त कर दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया गया है। गौरतलब है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण 12 जून से पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने भोजपुर कथित फर्जी पुलिस मुठभेड़ मामले की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति शील नागू की अवकाशकालीन पीठ ने याचिकाकर्ता को इस मामले में पहले उच्च न्यायालय का रुख करने को कहा है। यह याचिका अधिवक्ता विशाल तिवारी ने दाखिल की थी। गौरतलब है कि राज्य सरकार के निर्देश पर मामले की न्यायिक जांच शुरू की जा चुकी है। उप मुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए सरकार सुशासन और विकास के एजेंडे पर कार्य कर रही है। श्री चौधरी ने पटना स्थित जदयू कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि विकास कार्यों में केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण सहयोग मिल रहा है।
3: सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे और इस दरमियान सरकार ने अपनी विश्वसनीयता कई मायने में प्रमाणित की। बिहार सरकार जो जनता की अपेक्षाएं हैं उसी के अनुरूप चल रही। सम्राट चौधरी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं इन्होंने घोषणा जारी रखी है कि सरकार के चलने की दिशा जो नीतीश कुमार जी ने तय की थी वही रही।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि राज्य में संभावित बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राज्य

0: सरकार ने पर्याप्त तैयारी की है। सरकार ने नई योजना के तहत बाढ़ के पानी को नहरों और अन्य माध्यमों से संग्रहित करने की व्यवस्था की है।
1: बाढ़ के समय में गंगा गंडक से पानी निकाल के जो हमारे अलग अलग जलाशय जिनमें सिंचाई के लिए पानी कम उपलब्ध रहता है, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए बाढ़ के समय में नदियों के पानी को स्थानांतरित करके हम लोग इन जलाशयों में फिर से सुरक्षित जमा करेंगे, जिससे कि अल्पवृष्टि का समय हो तो वैसी हालत में हम लोग अपने जलाशयों से किसानों को सिंचाई के लिए पानी दे सकें।
0: दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे राज्य में सक्रिय हो गया है। इसके कारण कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार खगड़िया, समस्तीपुर और जमुई में आज सुबह तेज बारिश हुई। पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, कटिहार, शिवहर, सीतामढ़ी, भागलपुर, पूर्णिया समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
2: दिनांक 1 जुलाई राज्य के पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में मेज गर्जन वज्रपात तथा अत्यधिक भारी वर्षा के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के शिवहर एवं सीतामढ़ी जिलों में मेज गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। बांका, भागलपुर एवं पूर्णिया जिलों में मेज गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: केंद्र सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून यानी आज तक निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों न्यायाधिकरण में शामिल अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला देते हुए सरकार से अंतिम तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया था। सरकार ने करदाताओं को भी सलाह दी है कि वे समय रहते ही अपील दायर कर दें और अंतिम तिथि का इंतजार न करें। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज सेवानिवृत्त हो गए। अपने विदाई समारोह के तहत उन्होंने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 4 दशकों से अधिक समय तक भारतीय सेना में सेवा करना उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए उनके सफल भविष्य की शुभकामना दी। आकाशवाणी पटना में कार्यरत वरीय अभियंता सहायक बिपिन चंद्र गुप्ता आज सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर आयोजित विदाई कार्यक्रम में केंद्र अध्यक्ष एचडी सिडाम समेत अधिकारियों और कर्मियों ने उन्हें सफल और स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं दी। शेखपुरा जिले के कई पंचायत में आज सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर आयोजित विशेष शिविरों में वरीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने लोगों की समस्याएं सुनी। रोहतास जिले के बौलिया रोड स्थित सुराज संस्था के कार्यालय में एचआईवी एड्स की ऑनलाइन काउंसिलिंग को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मास्टर ट्रेनर शैलेंद्र कुमार शुक्ला ने एड्स संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए स्लॉट बुक करने की प्रक्रिया बताई। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुहन ने जिले में चलाई जा रही प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्यघर बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। शिवहर के एडीआर भवन में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से स्थायी लोक अदालत के संचालन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की गई। इसकी अध्यक्षता प्राधिकार के सचिव सह न्यायाधीश ललन कुमार रजक ने किया। मुंगेर के स्थानीय प्रेक्षागृह में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत आज कन्या जन्मोत्सव सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी निखिल धनराज निपणिकर ने इसका शुभारंभ किया। सारण जिले के चिरांद में आज 19वें चेतना महोत्सव का शुभारंभ हुआ। कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार ने महोत्सव का उद्घाटन किया। महोत्सव के दौरान गंगा पूजन, महाआरती, चित्र प्रदर्शनी और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुपौल जिले के स्थानीय मेडिएशन सेंटर में स्थायी लोक अदालत की जानकारी देने के लिए जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। लोक अदालत के अध्यक्ष संजय कुमार झा ने अदालत के क्षेत्राधिकार और कार्य प्रणाली की जानकारी दी। सीवान पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 35 लोगों को उनके गुम और चोरी हुए

मोबाइल फोन लौटा दिए। पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने वास्तविक मालिकों को उनके फोन सौंप दिए। अरवल जिले के कोनिका गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में देसी शराब नष्ट कर दिया। उत्पाद अधीक्षक ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि मौके पर मौजूद शराब भट्टी को भी ध्वस्त कर दिया गया। जहानाबाद जिले के काको प्रखंड अंतर्गत आमथुआ में जागृति योजना 2025 के तहत सुरक्षित बचपन सुरक्षित भविष्य विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत दियारा इलाके में गंगा नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राज्य सरकार के कई मंत्रियों विधायक और पार्षद ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्रामीण विकास को समर्पित महत्वाकांक्षी योजना विकसित भारत जी राम जी कल से प्रदेश भर में होगी लागू। प्रत्येक वयस्क को 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा राज्य की एनडीए सरकार सुशासन और विकास के एजेंडे पर कार्य कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने भोजपुर कथित पुलिस मुठभेड़ मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। और दक्षिण पश्चिम मानसून का राज्य भर में हुआ विस्तार। मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण कटिहार शिवहर सीतामढ़ी समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कैमूर जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता श्रीकांत पांडे।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जिले के भगवानपुर प्रखंड के मुंडेश्वरी धर्मशाला परिसर में आयोजित सहयोग शिविर में भाग लेते हुए कैमूर जिले के लिए लगभग 196.60 करोड़ रुपए की लागत वाली 60 विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मां मुंडेश्वरी मंदिर और करकटगढ़ जलप्रपात तक पर्यटकों की सुविधा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार न्याय के साथ विकास की नीति पर कार्य कर रही है। इधर कैमूर जिले के सभी 146 पंचायतों में 28 जून को पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायतों को सशक्त बनाकर गांवों के समग्र विकास को गति देना, आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना तथा सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना रहा। जिले के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन मोहनिया प्रखंड की उसरी पंचायत में हुआ, जहां प्रभारी मंत्री संजय सिंह टाइगर ने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पंचायतें विकास की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है और जन भागीदारी के बिना समग्र विकास संभव नहीं है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक पदाधिकारियों तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भागीदारी रही। विभिन्न विभागों ने सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और प्राप्त शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया शुरू की। कैमूर जिले में मुहर्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण और सौहार्द वातावरण में संपन्न हुआ। जिला मुख्यालय भभुआ सहित विभिन्न प्रखंडों में ताजिया जुलूस निकाले गए। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने जिले के 242 स्थानों पर

0: दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की थी। जिलाधिकारी नितिन कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने लगातार विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की। मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी नितिन कुमार सिंह ने समीक्षा के दौरान कार्य में शिथिलता पाए जाने पर 72 पंचायत रोजगार सेवकों और 6 कार्यपालक कार्यक्रम पदाधिकारियों से जवाब तलब करते हुए उनके मानदेय एवं वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्यों में तेजी लाने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। बीते दिनों जिले में जिलाधिकारी नितिन कुमार सिंह की अध्यक्षता में बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि पिछले 3 महीने में जिले में बाल श्रम से मुक्त कराए गए 13 बच्चों का सफल पुनर्वास किया गया है। परवरिश योजना के तहत 404 बच्चों तथा प्रयोजन एवं स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत 248 बच्चों को नियमित सहायता दी जा रही है। वहीं विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान के माध्यम से अब तक 73 बच्चों को दत्तक ग्रहण कराया जा चुका है। जिलाधिकारी ने सभी योजनाओं के प्रभावी संचालन के निर्देश दिए। भीषण गर्मी के बीच मंगलवार को जिले में मौसम में अचानक बदलाव आया और कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं किसानों के चेहरे भी खिल उठे। कृषि कार्य के लिए तैयार धान के बिचड़े को इस वर्षा से विशेष लाभ मिला। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के तहत कैमूर जिले के 1,18,350 किसानों के खातों में 23,67,00,000 रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। जिला कृषि पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि किसानों के खाते में 2,000 रुपए पहुंचने के बाद बड़ी संख्या में किसानों ने योजना के प्रति संतोष व्यक्त की। भभुआ प्रखंड के सिक्ठी गाँव में आयोजित सखी वार्ता कार्यक्रम में महिलाओं और किशोरियों को सामाजिक कुरीतियों, महिला अधिकार, घरेलू हिंसा, दहेज निषेध, बाल विवाह रोकथाम, बालिका शिक्षा तथा साइबर अपराध से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। महिला एवं बाल विकास निगम के जिला प्रबंधक कुमारी प्रियंका राज ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का भी आह्वान किया। भभुआ प्रखंड कार्यालय के पुराने भवन एवं परिसर में अधिकारियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए आवासीय परिसर के निर्माण की तैयारी शुरू की गई है। जिला प्रशासन ने लगभग 1 एकड़ 42 डिसमिल भूमि के लिए प्रस्ताव तैयार कर सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है। स्वीकृति मिलने के बाद भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कैमूर जिले के न्यायपालिका, जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग, पतंजलि परिवार तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से अनेक स्थानों पर योग शिविर आयोजित किए गए।
1: अभी आप सुन रहे थे कैमूर जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता श्रीकांत पांडे।

अभी आपने सुना पॉप गीत गुल सक्सेना की आवाज में। गीतकार संगीतकार थे किरण प्रगति और सौरभ ठाकुर।

साथियों, कार्यक्रम की अंतिम पेशकश सुनिए कनिका कपूर और विक्की चंदेल की आवाजों में। गीतकार संगीतकार भी हैं विक्की चंदेल।

0: पर तो हेवन की चाबी है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस में कुछ पॉप गीत।

0: आज के हवा महल में सुनवा रहे हैं नाटिका उनके महबूब।
1: उनके
0: लेखिका
1: महबूब
0: हैं बिमला रैना,
1: बिमला
0: निर्देशक
1: रैना।
0: लोचन बख्शी।
2: मंजू, ओ मंजू, अरे मंजू कहाँ हो भाई, जल्दी आओ।
3: क्या है शील, बस जब आती है तो आंधी की तरह आती है और तूफान की तरह चली जाती है। आखिर ऐसी क्या बात हुई जो आज तेरी आंखों में बिजलियां कौंध रही है?
2: अरे बिजली बिजली कहाँ कौंधी, मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि बहुत मजा आया।
3: तू इतना ही जान कर रुक जा,
2: नहीं तो नहीं तो मजे में दर्द भर जाएगा। अब तेरी शादी हो जाएगी।
4: शादी वादी बच्चे बच्चे मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि लाइफ इज वंडरफुल फॉर मी।
2: बात सुनो, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है लेकिन मैं तो अभी इंडिपेंडेंट हूँ। तुम दोनों को बारी बारी एक दूसरे का हुक्म मानना पड़ता है, फिर मुझ पर कोई हुक्म नहीं चला सकता। हाँ मेरा हुक्म मेरा राजा जरूर मानता है।
3: राजा? कौन राजा?
2: है एक राजा। हाय काश तुम भी चलती मेरे साथ टेनिस मैच में, इतना मजा आया कि।
3: मैं तो चाहती हूँ तू अब जल्दी से जल्दी अपना मैच बना ले। कितने रिश्ते आए पर तू अभी अकेली ही घूमती है। मैं पूछती हूँ आखिर तुझे कैसा लड़का चाहिए?
2: ओह लड़का, कैसा लड़का? जैसा मेरा राजा है।
3: अरे रे रे, ये किस राजा महाराजा के सपने देख रही है तू?
2: अपने राजा के। ओ मंजू हाउ ही लव्स मी।
3: हु? कौन? हु लव्स यू? कौन है, कहाँ से आया, क्यों आया, क्या करता है, किसका बोटा है, किसका पोता है?
2: ओफो, तुम्हारे सवालों की तो बाढ़ बढ़ती ही जा रही है, मेरे दिमाग में फ्लड आ गया। तो पहले किस बात का जवाब दूं? मुझे बताओ नहीं तो डूब जाऊंगी।
3: ओहो उसके खानदान का भी कुछ पता है?
2: अरे मंजू जी जी उसका खानदान पानदान पीकदान सबका पता है। मेरा राजा ऐसा वैसा नहीं है, भगवान कसम वो तो अकेला कमरे में दरवाजे पर टकटकी लगाए मेरे इंतजार में बैठा होगा।
3: टकटकी लगाए? उसे अपने साथ नहीं ले गई थी? किसका मैच देखने गई थी?
2: दीपक का। बहुत अच्छा खेला, वो यूनिवर्सिटी का चैंपियन बन गया है।
3: दीपक? कौन दीपक?
2: हाँ वो कौन सा दीपक या किसका दीपक है ये मैं क्या जानू, वहाँ सब बकअप दीपक, वेल डन दीपक, लवली शॉट दीपक कह रहे थे तो मैं जान गई उसका नाम दीपक है बस।
3: सुन कहीं हमारा दीपक तो नहीं है?
2: ये तो मैं नहीं जानती कि वो किसका दीपक है, पर आपका घर रोशन करते कभी नहीं देखा उसे?
3: नहीं देखा तो क्या हुआ? सुन वो कुछ गोरा गोरा सा, कुछ लंबा सा, हंसोड़ सा था।
2: अब मैंने गोरा बोरा लंबा उम्बा हंसोड़ सोड़ की बात तो ठीक से देखी नहीं, पर हाँ टेनिस बहुत अच्छा खेलता है।
3: तो क्या आंखें बंद करके टेनिस मैच देख रही थी?
2: नहीं आंखें तो खुली थी पर उसके खेल पर लगी थी। अभी याद करती हूँ। हाँ

0: गोरा गोरा लंबा सा ही है, पर आपके घर तो शायद मैंने कभी नहीं देखा उसे।
1: तुझे मेरे पास आए अभी कौन ज्यादा दिन हुए हैं, और फिर तुझे अपने राजा से फुर्सत कहाँ है, आता है तीज त्योहार पर।
0: अच्छा, मुझे क्या मालूम, जहाँ भी जाऊँ दिखते तो रहते हैं, पर ठीक से कभी बात नहीं हुई, नहीं तो ये तो पता चल ही जाता कि वो आपके दीपक हैं। अच्छा मंजू, राजा बेचारा इंतजार करता होगा, बाय बाय।
1: कर दिया।
2: भाभी भाभी भाभी, वो मतलब भाभी, हाँ। वो आपकी बहन है ना,
1: हाँ।
2: उससे मिलना चाहता हूँ।
1: क्यों, टेनिस चैंपियन हो गया है इसलिए?
2: अरे तुम्हें कैसे मालूम भाभी?
1: अरे वही बता रही थी, तुम्हारे खेल की बहुत तारीफ कर रही थी।
2: कौन? वो मेरे खेल की तारीफ?
1: हाँ हाँ, कह रही थी दीपक बहुत अच्छा खेला।
2: वो मेरा नाम जानती है?
1: क्या तुम उसका नाम नहीं जानती?
2: नहीं, मतलब हाँ, मतलब मैं उनका नाम जानता हूँ। दरअसल मंजू भाभी, बात यह है भाभी कि मैं उनके करीब से जब भी गुजरा बहुत चाह कि एक बार शील जी कहकर उन्हें पुकारूं, पर जाने क्या हो जाता है भाभी, मुंह से आवाज ही नहीं निकलती, जुबान को जैसे लकवा मार जाता है। और फिर भाभी, अगर सबके सामने वो मेरी तरफ अजनबी निगाहों से देखकर मुंह मोड़ लेती है तो मेरा कलेजा फ्लैट हो जाता है। और भाभी, फिर पता चला वो तुम्हारे पास रहने लगी है तो
1: के बच्चे, तो तुझे भाभी की याद आई, चल कुछ कहेगा अभी?
2: जरूर कहूंगा।
1: तो कहना।
2: कहूं? कह दूं भाभी? भाभी असल में बात यह है भाभी, भाभी मैं उनसे
1: हाँ?
2: शादी करना चाहता हूँ। लो कह दिया,
1: हाँ, कह दिया भाभी, कह दिया। अब जब अपने राजा के गुण गाया करती है।
2: राजा के? कहाँ के राजा के?
1: अब ये तो तुम उसी से पूछो, और अगर पूछने की हिम्मत ना हो तो दुम दबा के चले जाओ। डरपोक कहीं के, कब से मैंने सोच रखा था कि एक दिन शील और दीपक की सगाई करवाऊंगी, मगर वो निर्लज्ज शील तजाने कहाँ से एक राजा नाम के लड़के को पकड़ लाई है और उसे अपने ही पास ठहराया हुआ है। निर्लज्ज कहीं थी, छोड़ उसका ख्याल।
2: भाभी ये सब तुम किसके लिए कह रही हो? भाभी वो तो देवी है, देवी, कभी उसे किसी लड़के से हंसी मजाक करते हुए नहीं देखा। इतने कोमल गंभीर था, इतने आत्म गौरव से आती जाती है, तभी तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी बात करने
1: की। अब मैं क्या करूं, जिसकी हिम्मत पड़ी वो आ गया, अब शील से मिलकर कौन सी पहलवानी दिखाओगे?
2: पर भाभी ये राजा है कौन, कब से उसके साथ रहता है?
1: मैं क्या जानू कौन राजा है निगोड़ा, ये बात तो अभी मालूम हुई जब वो तुम्हारा टेनिस मैच देख के लौटी।
2: ओ भाभी, शील जी मुझसे कभी नहीं बोली तो क्या, बरसों साथ एक ही कॉलेज में पढ़ी है, एक बार तुम मुझे मिलवा दो, प्लीज भाभी एक बार मिलवा दो मुझे, मैं अकेले में कुछ बातें कर लूं। भाभी आखिर मैं इंसान हूँ, कोई उल्लू तो नहीं हूँ, उन्हें मालूम तो हो जाए कि मैं भी उन्हें चाहता हूँ, फिर देखूं उनका राजा मेरे सामने कैसा लगता है।
1: अच्छा सुन दीपक, मुझे ख्याल आया।
2: क्या?
1: हा? मैं शील को बुलाती हूँ, और सुन उसे शेर शायरी का बहुत शौक है, जब वो आए तो तू उसे बेखबर सा बनकर कोई गजल वजल सुनाने।
2: तुम फिक्र ना करो भाभी, एक से एक बढ़िया शेर मुझे याद है, देखो तो सही उनका राजा मेरे आगे कैसे ठहरता है। भाभी ये राजा का नाम सुनकर तो मुझ में बजरंग बली का बल आ गया है। पर भाभी शील जी से मिलने से पहले मुझे एक झलक उनके महबूब की दिखा तो दो, आखिर मुझे मालूम तो हो जाए मुझे मुकाबला किससे करना है।
1: उस दरवाजे के पीछे शील का कमरा है। अरे उधर कहाँ जा रहा है? इधर आ। देख मैं नौकर को भेजकर उसे अभी बुलवाती हूँ।
2: अच्छा,
1: तू शेर शायरी का ध्यान रखना। अरे नंदू, ओ नंदू, जरा शील से कह मैंने बुलाया है, जरूरी काम है, जल्दी आए। अच्छा सुन, इधर आ, उधर पीठ कर ऐसे खड़े होकर कोई फड़कती हुई गजल गुनगुनाना शुरू कर दे, जैसे तुझे मालूम ही नहीं कि वो आ रही है। मैं तेरा छुपे जाती
2: हूँ। तुम छुप जाओ भाभी।

0: क्या हुआ?
1: शॉक लग गया बिजली को।
0: माफ करिएगा, मुझे नहीं मालूम था कि आप आ रही हैं।
1: वरना आप मेन स्विच शायद ऑफ कर देते।
0: जी
1: नहीं तो कयामत आ जाती।
0: जी जी मैं आपका मतलब समझा नहीं शील जी।
1: शील सुन तो, ये वही हमारा दीपक है कि वो कोई दूसरा दीपक था? मैं क्या जानू, पर हाँ शायद यही थे। ये मेरी बहन शील है दीपक।
0: जी जानता हूँ।

0: जी मतलब ये जानता तो नहीं था पर भाभी अब जान गया।
1: मैं अभी कॉफी को कहा।
0: हाँ भाभी तुम कॉफी लेने जाओ। मंजू भाभी से सुना आपको टेनिस मैच बहुत पसंद आया।
1: जी
0: हजार हजार धन्यवाद शील जी।
1: हजार हजार किस बात के?
0: अरे हजार हजार बातों के।
1: पर मैंने तो आपसे पहले कभी बात नहीं की।
0: ओ शील जी पर मैंने तो आपसे हजारों बातें की हैं, बहुत ख्वाब देखे हैं जिनमें आप शरीक थी।
1: ओ
0: न जाने क्या क्या कहा मैंने, न जाने आपने मुझसे क्या क्या कहा, हजारों बातें।
1: हो सकता है पर ख्वाबों का क्या।
0: एक शेर कहा है सुना दूं?
1: जरूर।
0: हमें गिला न होता हकीकत से, ख्वाबों का अगर जरिया होता वो सामने होते साहिल पर, जज्बातों का मैं दरिया होता, कभी मेरी तमन्ना भी सज कर

0: क्या होता।
1: वाह वाह,
0: पसंद आया?
1: क्या शेर है जी, बहुत अच्छा।
0: आपको मेरा खेल पसंद आया, मेरे शेर पसंद आए, बस मैं ही पसंद नहीं आया। सुना है कोई राजा साहब है जिन पर आपकी बड़ी इनायत है, क्या ये सच है शील जी?
1: जी जी हाँ, सच तो है।
0: सच है? तो क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ?
1: उनसे मिलकर क्या करेंगे, आप तो शायद मुझसे मिलना चाहते
0: हैं। शील जी प्लीज मजाक मत करिए, असल में बात ये है कि मैं आपसे।
1: जी जी जी, क्या?
0: देखिए शील जी, अगर आप बीच में यूं ही टोकते रहीं तो मैं आपसे जो आज कहने का फैसला करके आया हूँ कह ना पाऊंगा। मुझे यूं ही ये बात कहने की हिम्मत बटोरने में इतने दिन लग गए, साहे के समान आपका पीछा करता रहा पर आपसे भूल न सका। अब आप प्लीज उधर को मुंह कर लीजिए ना, जिससे मैं एक बार आपसे कहकर अपना जी तो हल्का कर लूं।
1: जी बहुत भारी है क्या?
0: शील जी प्लीज, शील जी प्लीज आप उधर देखिए ना। खैर खैर कोई बात नहीं, आप नहीं देखती तो मैं ही इधर देख लेता हूँ और कहता हूँ। शील जी मैं मतलब आई मतलब मैं मतलब I love you।
1: लेकिन क्यों?
0: क्यों? क्यों क्या? राजा आपको क्यों लव करता है जी?
1: पता नहीं।
0: पता नहीं? तो आप उसे क्यों लव करती हैं जी?
1: क्योंकि वो मुझे बहुत लव करता है।
0: तो मैं भी तो आपको बहुत बहुत मतलब वेरी वेरी मच लव करता हूँ।
1: वो बहुत बहादुर है।
0: आपको मेरी बहादुरी पे शक है क्या?
1: पर वो बहुत वफादार, बहुत लॉयल है।
0: और मैं वफादार नहीं, मेरी लॉयल्टी पे शक है आपको, तो इम्तहान ले लीजिए, अपने राजा से एक बार मिलवा तो दीजिए, जरा मैं भी तो देखूं मैं उससे किस बात में कम हूँ।
1: वो मेरा हर हुक्म मानता है।
0: आप मुझे भी कोई हुक्म देकर देखिए।
1: देखो।
0: देखिए।
1: अच्छा देखूंगी।
0: शील जी आपके महबूब आपके कमरे में है क्या, मैं उनसे मिलने जा सकता हूँ?
1: शौक से जाइए, मगर जरा संभल के जाइएगा, बड़े बड़े पहलवान भी उनसे डरते हैं।
0: आप फिक्र न करिए शील जी, वो कट लगाऊंगा कि मेरी गेंद उठाए ना उठेगी। और फिर शील जी अगर मैं मर भी जाऊं तो क्या, कम से कम आपको मेरी बहादुरी का यकीन तो आ जाएगा।
1: तो जाइए, कमरा खुला है।
0: कमरा खुला है, लेकिन लेकिन आप साथ नहीं चलेंगी क्या?
1: हाय राम, आपको मेरे साथ उसने देख लिया तो आपकी जान पर बन आएगी। वो बहुत जेलस है।
0: अच्छा।
1: वैसे मेरी जरूरत पड़ी तो आ जाऊंगी।
0: कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, तो मैं ही जाता हूँ। आपके कमरे में जाने की इजाजत तो है ना?
1: मेरे कमरे में जाने की इजाजत तो राजा ही दे सकता है।
0: ये बात है, तो हो जाए आज फैसला। मेरी महबूबा के महबूब ने ललकारा है, मौत बेहतर है जिसे जिंदगी ने मारा है। अरे शील जी मैं जाता हूँ।
1: जाइए।
0: ओह माय गॉड, ये राजा, इनका महबूब। सच में शील जी, ये कुत्ता तो बहुत हैंडसम है, बहुत बहुत ही हैंडसम, मुझसे भी ज्यादा, बहुत बहादुर है, बहुत वफादार है। शील जी आपने एक काम बड़ा अच्छा किया जो इसे चेन में बांध रखा था, नहीं तो ये तो सचमुच मेरे फाड़ गया।

0: मेरे राजा? हाँ, तो आपने देख लिया मेरे राजा को?
1: देख पाया आपके राजा को बर्शील जी, मतलब आप मतलब समझ गई ना?
0: समझ तो गई, पर आप मेरे राजा को मुझसे अलग तो नहीं करेंगे?
1: कभी नहीं, कभी नहीं। तुम मेरी महबूबा हो, वो तुम्हारा महबूब सही। खुशी महबूबा की अपनी खुशी बना दूंगा, उनके महबूब के यानी कुत्ते के कदमों पे सर झुका दूंगा।
2: उनके महबूब, अभी आपने विमला रैना की लिखी ये नाटिका सुनी। निर्देशक थे लोचन बख्शी। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक, बस थोड़ी ही देर में।

विविध भारती से प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। लीजिए सुनिए सलमान खान श्रेया घोषाल की आवाजों में उस गीत को जिसे लिखा है कुमार ने। संगीत है मीत ब्रदर्स अनजान का और फिल्म का नाम है किक।

0: किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम

चित्रलोक कार्यक्रम की अगली पेशकश आपको सुनवाते हैं मोहित चौहान, तरन्नुम मलिक और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार हैं कौसर मुनीर, संगीत है सोहिल सेन का और फिल्म का नाम है एक था टाइगर।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके

0: संग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आइए सुने शान और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में स्वानंद किरकिरे का लिखा गीत। संगीत है शांतनु मोइत्रा का, फिल्म का नाम है पीके।

कार्यक्रम में आइए सुने अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। गीत है AM तुरास का, संगीत है संजय लीला भंसाली का, फिल्म का नाम है पद्मावत। नाम एक बार फिर सुनिए, इस गीत को लिखा है AM तुरास ने।

साथियों, चित्रलोक कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं सिद्धार्थ महादेवन और शिल्पा राव की आवाजों में। गीत को लिखा है समीर अनजान ने और फिल्म का नाम है धूम 3।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, इसके साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक अब समाप्त होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा।
1: मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
2: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
1: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किया।

0: जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
1: One key pillar which has brought about a transformation.
2: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
0: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
4: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया।

0: और राष्ट्र राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
2: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आमतौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थयात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिद्धो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सस में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कारोबार करने और रहन सहन में आसानी को गैर इंज़िबाती बनाने के सिलसिले में सेक्रेटरी साहिबान से बातचीत की है। उन्होंने आत्मनिर्भरता को फरोग देने पर भी तबादला ख्याल किया। रोजगार और आजीविका के लिए विकसित भारत गारंटी मिशन ग्रामीण VBG रामजी एक्ट 2025 कल से नाफिज हो जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तलबा पर जोर दिया है कि वो कमजोर तबकात की बेहतरी के लिए काम और मुल्क की तामीर में तआवुन करें। रेलवे मवासलात और अपनी कारकर्दगी के निजाम को बेहतर बनाने की खातिर 1,100 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 3 प्रोजेक्टों का आगाज करेगा। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोटर फहरिस्तों के खुसूसी तफसीली नजरसानी का आगाज हो गया है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के उस हुक्म को मंसूख कर दिया है जिसमें शहरियत के पैदाइशी हक को खत्म कर दिया गया था। और फीफा आलमी कप में न्यूयॉर्क में फ्रांस का मुकाबला स्वीडन से और टेक्सास में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से होगा। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में मुख्तलिफ वजारतों के कई सेक्रेटरी साहिबान से बातचीत की। 2 अहम मौजूद पर तबादला ख्याल किया गया। पहले का ताल्लुक कारोबार करने और रहन सहन में आसानी से मुतालिक गैर इंज़िबाती तरीक़ाकार और दीगर असलाहत से था, जबकि दूसरा आत्मनिर्भरता को फरोग देने से मुतालिक था। मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने मजमूई हुकूमत के तरीक़ाकार को अख्तियार किए जाने और महकमा जाति सिलसिले को खत्म करने की अहमियत पर जोर दिया। जामे मनसूबाबंदी और तालमेल की अहमियत को उजागर करते हुए उन्होंने बैन महकमा जाति इश्तराक और मालूमात पर मबनी फैसला साजी के लिए PM गति शक्ति को एक मौसर प्लेटफॉर्म के तौर पर वसी पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने की हौसला अफजाई की। बातचीत के दौरान सेक्रेटरी साहिबान ने इन 2 अहम मौजूआत से मुताबिकत रखते हुए उनकी वजारतों और महकमों की जानिब से किए गए इकदामात को उजागर किया। विकसित भारत रोजगार की गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी एक्ट 2025 कल से पूरे देही भारत में नाफिजुल अमल हो जाएगा। VBG रामजी एक्ट 2025 के मुल्की सतह पर आगाज के मौके पर देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी अहल देही वर्कर एक दिन के लिए भी काम से महरूम नहीं रहना चाहिए। जनाब चौहान ने कहा कि नए फ्रेमवर्क के बिला रुकावट निफास को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ नजदीकी तालमेल कायम किए हुए है और सभी इंतजामी, माली और तकनीकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तलबा पर जोर दिया है कि वो तालीम को एक मसावी और सबकी शमूलियत वाले मौशरे की तश्कील की खातिर वसीला बनाए। उन्होंने कहा कि तालीम याफ्ता नौजवानों को न सिर्फ खुद आगे बढ़ने के लिए काम करना चाहिए बल्कि कमजोर तबकात की बेहतरी और मुल्क की तामीर के लिए भी तआवुन करना चाहिए। आज विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश की मरकजी कबायली यूनिवर्सिटी के पहले जलसे तकसीम इस्नाद से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने ये बात कही। सदर जमहूरिया ने कहा कि हर तालीम याफ्ता नौजवान को जो पीछे रह गए हैं उन्हें आगे लाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए और 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क के हदफ को हासिल करने के लिए तआवुन करना चाहिए।
1: बस 2047 विकसित भारत बनाने का हमारा लक्ष्य है। मुझे विश्वास है कि आंध्र प्रदेश का एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अपना सार्थक, समावेशी और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित व्यवहारिक शिक्षण पद्धति से इस लक्ष्य प्राप्ति करें और उसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
0: इस मौके पर तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र

प्रधान ने तलबा पर जोर दिया कि वो रोजगार तलाश करने वालों के बजाय रोजगार के मौके पैदा करने वाले बने। भारतीय रेलवे ने 499 करोड़ रुपए की लागत से मशरकी वस्ती रेलवे के 44 किलोमीटर से ज्यादा मानसी सहरसा हिस्से को डबल किए जाने की मंजूरी दी है। ये प्रोजेक्ट इस अहम रास्ते पर आमदोरफ्त को मौसर बनाएगा, मुसाफिरों की बढ़ती तादाद को सहूलत फराहम करेगा और नकलोहमल में आसानी पैदा करेगा। सिलसिलेवार मंजूरियों के तहत भारतीय रेलवेज ने मशरकी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के 27 स्टेशनों या केबिन की इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग को भी मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट की लागत 400 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। रेलवेज ने जुनूब मशरकी रेलवे में तकरीबन 200 करोड़ रुपए की लागत से बैलेंस 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल को भी मंजूरी दे दी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा है कि मजबूत मईशत मजबूत दिफाई सलाहियतों की बुनियाद है। आज वडोदरा में दरख्शां गुजरात इलाकाई कॉन्फ्रेंस के अख्तितामी

और भोग नदी में यादगारी मकाम पर हुल इनकलाब के शहीदों को हजारों लोगों ने खराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि हुल दिवस कबायली बरादरियों के गैर मामूली हौसले और गैर मुतजलजल जज्बे की एक मजबूत अलामत है, जिन्होंने मादर वतन के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी। सियाहत की वजारत ने मुल्क के सियाहती मकामात के डिजिटल वसीले से फरोग को मुस्तहकम करने के लिए नई दिल्ली में गूगल इंडिया के साथ एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब शेखावत ने कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज के जरिए भारत के सकाफती मकामात की शान शौकत को पूरी दुनिया के सामने मुतासर कुन अंदाज में पेश किया जा सकता है। शराकत दारी के तहत गूगल इंडिया आलमी सफरी रुझानात, मुसाफिरों के रवैये और शवाहिद पर मबनी सियाहती तरक्की में फरोग के लिए डिजिटल तरीकाकार के जरिए मालूमात फराहम करेगा। जनरल धीरज सेठ ने आज फौजी अमले के 31वें सरबरा की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। वो जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह इस ओहदे पर फायज हुए हैं, जो चार दहाई से ज्यादा मुल्क की गरां कदर खिदमात के बाद अपनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार हुए हैं। जनरल सेठ नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे के साबिक तालिब इल्म हैं और उन्हें दिसंबर 1986 में फौजी कोर में शामिल किया गया था। जनाब रवि अग्रवाल को कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर बराह रास्त टैक्सों से मुतालिक मरकजी बोर्ड का एक मरतबा फिर चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। उनकी मुद्दत कार कल से 31 दिसंबर 2026 या आइंदा अहकामात जो भी पहले हों तक होगी। तकरूरियों से मुतालिक काबीना की कमेटी ने उनकी दोबारा तकरूरी को मंजूरी दी है। उत्तराखंड के मदरसा तालीमी निजाम में कल से एक बड़ी तब्दीली का निफाज होगा। नए इंतजाम के तहत उत्तराखंड मदरसा तालीमी बोर्ड को खत्म कर दिया जाएगा। नए फ्रेमवर्क के तहत रियासत के सभी अकलियती तालीमी इदारों का इंतजाम रियासत के तहत होगा। रियासती सरकार ने उत्तराखंड अकलियती तालीमी इदारों के एक्ट के तहत नया निजाम मुतारिफ किया है, जिसके तहत उत्तराखंड रियासती तालीमी अथॉरिटी अकलियती तालीमी इदारों को तस्लीम करने, उनके कामकाज की निगरानी करने और तालीमी मेयार को यकीनी बनाने की जिम्मेदार होगी। यह नया निजाम मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी बिरादरियों के तालीमी इदारों का अहाता करेगा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस अदालती हुक्म को कलअदम करार दे दिया है, जिसका मकसद पैदाइश की बुनियाद पर शहरियत के हक को खत्म करना था। अदालत ने इस बात की तौसीख की कि अमरीका में पैदा होने वाला तकरीबन हर शख्स खुद ब खुद अमरीकी शहरियत हासिल करता है। मुकदमे में अदालत ने कहा कि पैदाइश की बुनियाद पर शहरियत को खत्म करने का हुक्म अमरीकी आईन की 14वीं तरमीम के खिलाफ है। अक्वामे मुत्तहिदा में अफगानिस्तान के मुस्तकिल मिशन ने पक्तिका, पक्तिया और कुनार सूबों में पाकिस्तान की जानिब से हवाई हमले किए जाने की सख्त मजम्मत की है। इन हमलों में औरतों व बच्चों समेत 36 शहरी हलाक और 160 जख्मी हुए हैं। मिशन ने पाकिस्तान से अफगानिस्तान की हदूद में भी फौजी हमलों को फौरी तौर पर रोकने और बैन अल-अक़वामी कानून की मुबैना खिलाफ वर्जियों की पूरी जिम्मेदारी कबूल करने के लिए कहा है। अफगान मिशन के मुताबिक ये हमले अफगानिस्तान की इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। जुनूब मगरबी मानसून के आइंदा 2 से 3 रोज के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की जानिब बढ़ने का इम्कान है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कहा है कि इसी अरसे के दौरान शिमाली बहर अरब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। IMD ने जुलाई के दौरान मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में मामूल से कम बारिश की भी पेशगोई की है। फीफा आलमी कप में मराकेश और पैराग्वे प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मराकेश ने सनसनीखेज तौर पर मैच 1-1 से बराबरी के बाद नीदरलैंड्स को 2-3 गोल से हरा दिया। अमेरिका के बोस्टन में पेनाल्टी शूटआउट में पैराग्वे से 3-4 गोल से हारने के बाद जर्मनी हैरान कुन तौर पर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। कल देर रात अमरीका के ह्यूस्टन में जापान पर 2-1 से जीत हासिल करके ब्राजील ने भी प्री क्वार्टर फाइनल के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। आज रात अमरीका के टेक्सास में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से हुआ है। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक 10:30 बजे से खेला जाएगा। एक दूसरे मुकाबले में आज देर रात फ्रांस का मुकाबला स्वीडन से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक 2:30 बजे से खेला जाएगा। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कारोबार करने और रहन सहन में आसानी को गैर इंज़िबाती बनाने के सिलसिले में सेक्रेटरी साहिबान से बातचीत की है। उन्होंने आत्मनिर्भरता को फरोग देने पर भी तबादले ख्याल किया। रोजगार और आजीविका के लिए विकसित भारत गारंटी मिशन ग्रामीण VBG रामजी F 2025 कल से नाफिज हो जाएगा।
صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے طلبہ پر زور دیا ہے کہ وہ کمزور طبقات کی بہتری کے لیے کام کریں اور ملک کی تعمیر میں

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

लेकिन कल्याण जी और आनंद जी की जोड़ी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में ज्यादा जिक्र तो कल्याण जी का होगा, लेकिन कुल मिलाकर ये बात कल्याण जी और आनंद जी पर केंद्रित रहेगी। यानी जोड़ी कल्याण जी आनंद जी की बातें होंगी आज के इस प्रोग्राम में।

कल्याण जी भाई दोनों भाइयों में सबसे बड़े हैं। 1929 में उनका जन्म हुआ था, जबकि आनंद जी का जन्म कच्छ में सन 1933 में हुआ था। मजे की बात यह है कि आनंद जी तो बचपन में कच्छ गुजरात में रहे, लेकिन कल्याण जी मुंबई में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने चले आए। आगे चलकर इनका परिवार मुंबई आ गया। दोनों भाई चाल के अपने घर में पड़ोसियों के घरों में रेडियो सुना करते थे, क्योंकि रेडियो तब एक लग्जरी हुआ करता था और सबके घरों में रेडियो नहीं होता था। जब घर में ग्रामोफोन आया तो दोनों भाई मिलकर सुरेंद्र, शांता आप्टे, कुंदनलाल सहगल और पंकज मलिक के गीतों को बड़े चाव से सुना करते थे। सन 1954 अचानक कल्याण जी वीर जी शाह शोहरत की ऊंचाई पर पहुंच गए। दरअसल शशधर मुखर्जी की फिल्म नागिन में उन्होंने संगीतकार हेमंत कुमार के निर्देशन में क्ले वॉयलिन पर बीन की आवाज निकाली थी। ये अपने आप में एक करिश्मा था, क्योंकि इससे पहले फिल्म संगीत में जब भी बीन के सुर सुनाई पड़ते थे तो वो असली बीन होते थे, लेकिन इस बार वाद्य बदल गया था और सुर कुछ तरोताजा हो गए थे।

0: इस गाने के वादक, जी हाँ वादक यानी म्यूजिशियन कल्याण जी को बड़ी प्रसिद्धि मिली। कल्याण जी वीरजी शाह ने बतौर अकेले संगीतकार फिल्म सट्टा बाजार में भी संगीत दिया था। अभी तक आनंद जी उनके साथ नहीं आए थे।
1: जरा ठहरो जी, जरा ठहरो जी, अब

0: ले जाना।
1: सन 1958 में निर्माता निर्देशक कीकू भाई देसाई ने दोनों भाइयों को सम्राट चंद्रगुप्त नामक फिल्म में बतौर स्वतंत्र जोड़ी पहला मौका दिया। हम आपको बता दें कि कीकू भाई मनमोहन देसाई के पिता थे।

दिलचस्प बात यह है कि मनमोहन देसाई ने सन 1960 में जब छलिया फिल्म बनाई तो भी कल्याण जी आनंद जी को मौका दिया। छलिया का संगीत बड़ा ही लोकप्रिय हुआ।

सन 1964 की बात है। मनोज कुमार फिल्म उपकार बना रहे थे। उनकी इच्छा थी कि इसका संगीत शंकर जयकिशन दें, लेकिन इस जानी मानी जोड़ी के बीच तनाव चल रहा था, इसलिए बात कुछ बनी नहीं। लेकिन जयकिशन ने कल्याण जी आनंद जी के नाम की सिफारिश मनोज कुमार से की।

कार वो फिल्म है जिसने कल्याण जी आनंद जी को शंकर जयकिशन के प्रभाव से मुक्त किया। यहां से वो संगीत आया जिसमें रिदम का अनूठा पैटर्न था।

सिने संगीत के कद्रदान केवल रिदम और अरेंजमेंट को सुनकर कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी का फर्क समझ लेते हैं।

कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ये गाना मेरे छोटे भाई आनंद जी ने कई सालों पहले इंदिरा जी का लिखा हुआ वो तैयार करके रखा हुआ था। तो मनोज जी नए नए डायरेक्टर हुए थे, उपकार पिक्चर बना रहे थे, तो उनको ये गाना बहुत पसंद आ गया। उन्होंने बोला कि कल्याण जी भाई ये गाना मेरे लिए रख लीजिए, मैं उपकार फिल्म में प्राण जी के पास गाऊंगा। तो हमने सोचा कि ये उसको उस टाइम प्राण जी फिल्मों में गाया नहीं करते थे, तो हमने सोचा कि बिल्कुल नए डायरेक्टर हैं और शायद हमें भी नए कर देंगे। लेकिन मनोज जी ने उपकार फिल्म में वो गाना प्राण जी से इतना अच्छा गवाया और प्राण जी ने भी इतना अच्छा गाया है कि जब अपन फिल्म देखते हैं तो लगता नहीं है कि किसी प्लेबैक सिंगर ने ये गाना गाया होगा। बिल्कुल प्राण जी ऐसी इसी तरह गा रहे हैं कि जैसे वो ही गा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली गाना मन्ना डे जी ने गाया हुआ है।

मुकेश और कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने कुछ बड़े अद्भुत नगमे दिए हैं। दरअसल शंकर जयकिशन के बाद अगर मुकेश की प्रतिभा को किसी ने पहचाना तो वो कल्याण जी आनंद जी ही थे।

तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। आपको शायद मालूम होगा कि ये गाने के लिए हम लोगों को सिने म्यूजिक डायरेक्टर का फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला था। और मुझे एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कोई भी गाना मैं जब अनाउंस करता हूँ तो सब लोग चाहते हैं कि इसके साथ कोई हंसी मजाक जरूर होनी चाहिए। तो इसमें तो सही वाकया हो गया था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। क्योंकि मुझे एक दिन एक ये गाना रिकॉर्ड होने के बाद किसी एक लड़की का फ़ोन आया कि भाई हमें आपका मैं तो एक ख्वाब हूँ ये गाना बहुत पसंद आया और मैं चाहूँगी कि आपके मुँह से ये गाना सुनूँ। तो हमने उनको म्यूज़िक हॉल पर बुला लिया, तो एक दफ़े सुनाया। उसके बाद फिर वो दो चार दिन के बाद आई कि मुझे हमें ये फिर गाना सुनाइए। तो तीन चार दफ़े उन्होंने जब हमसे सुना तो मैं उनके सामने देख रहा था। तो बाद में चौथी दफ़े जब मैंने ये गाना सुनाया तो मैंने ये गाना बोला कि मैं तो एक बाप हूँ, इस बाप से तो प्यार न कर, क्योंकि उसकी निगाहों से लग रहा था कि इसमें और कुछ चक्कर है।

0: कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य संगीत को मिला दिया। वे प्रगतिशील संगीतकार थे। प्रगतिशील इस मायने में कि उन्होंने संगीत के बने बनाए ढर्रे को तोड़ा, लगातार नए प्रयोग किए, नई ध्वनियां अपने संगीत में पिरोई और बनाया अद्भुत संगीत।
1: ढोल बजा

चाहे उदास नगमा हो या ढमाढम संगीत, कल्याण जी आनंद जी की कोई सानी नहीं। आइए कुछ उदास नगमे सुने जाएं इस संगीतकार जोड़ी के।

0: फिल्म समझौता।
1: समझौता गमों से कर लो जिंदगी में।
2: समझौता गमों से कर लो जिंदगी में गम भी मिलते हैं। ये गाना मेरे एक डॉक्टर दोस्त हैं, उन्होंने एक दिन मुझे कांग्रेचुलेशन दिया। मैं बोला किस बात की कांग्रेचुलेशन दे रहे हैं आप? तो बोले भाई आपका मैं गाना लेके गया था और उससे मेरा एक पेशेंट बहुत अच्छा हो गया। मतलब गाने से पेशेंट अच्छा हो गया? बोले आपके गाने के कुछ वर्ड्स ऐसे थे कि उसकी लाइफ में कुछ चेंज आ गया। तो अरे सही वाक्य है कि अगर इस गाने को करेक्ट कोई मीनिंग समझे तो जिंदगी की काफ़ी उलझने कम हो जाती है।

आपको ये जानकर अचरज होगा कि कल्याण जी आनंद जी की इस सदाबहार और सुपरहिट जोड़ी को जीवन में केवल एक बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1974 में ये फिल्म थी कोरा कागज। कल्याण जी आनंद जी की संगीत यात्रा इतनी लंबी है कि आधे घंटे के सीमित समय में हम सिर्फ ऊपर ऊपर से उनके सफर पर नजर डाल सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये जोड़ी लगातार हिट संगीत देती रही, लगातार लोगों के दिलों पर राज करती रही।

कल्याण जी आनंद जी की ये जोड़ी टूट गई है। टूटना शायद आपको सही शब्द ना लगे, ये जोड़ी एक दूसरे से बिछड़ गई है। आज कल्याण जी नहीं हैं, लेकिन आनंद जी हैं, और है इस जोड़ी का अनूठा संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

ये विविध भारती का पटना केंद्र है, एफएम बैंड के 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसमें रात्रि के ठीक 10 बजे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम छाया गीत। छाया गीत कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। कभी कभी जिंदगी में कोई चेहरा यूं ही सामने आ जाता है और फिर वो चेहरा एक आदत, एक दुआ, एक धड़कन बन जाता है। उसे देखते ही मन अनायास कह उठता है, तुझे देखा, लगता है तुझे चाहा। और शायद यही तो प्रेम की सच्ची और मासूम परिभाषा होती है। प्रेम को हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती, कई बार एक नज़र, एक मुस्कान और एक अनकही सी चाहत ही दिल की पूरी कहानी कह देती है। किसी को चाहना उसके साथ होने का नाम नहीं, बल्कि उसके ख्याल से ही मन का महक उठना है।

चलो वे एक ऐसा संसार बुने जहां सिर्फ प्यार की बारिश होती हो, झीलों पर एक हाउस बोट हो जहां गुजर जाए पूरी जिंदगी, जहां सुबह सुबह हाउस बोट की खिड़की पर कोई धर जाए फूलों की टोकरी, एक ऐसा जहां हो जहां सुबह खिले मुस्कानों के साथ, जहां प्यार भरी गुफ्तगू से नरम धूप खिल जाए, जहां सपनीली आंखों से आसमान की ओर देखें तो शाम खुशगवार हो जाए, मुस्कुराएं तो चांद खिल उठे।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। बंद लिफाफे की तरह है सच्चा प्यार, लिफाफा खुलते ही आंखों को दिख जाती है कागज पर लिखी इबारत। मन की किवाड़ का सांकल खटखटाते ही खुद को खबर हो जाती है कि मन प्यार की गिरफ्त में है। प्यार का वही जमाना भला था जब चुपके से होता था प्यार, पलकों के भीतर रेशमी ख्वाब की तरह बंद, छुई मुई की तरह नाजुक होता था प्यार का वो जमाना। जमाना कोई भी हो, प्यार में इंतजार, समर्पण, किसी के लिए मर मिटने की तड़प हमेशा बाकी रहती है। प्यार में इंतजार बड़ा ही मीठा लगता है।

ढलते हुए रात से गुफ्तगु, चांद का सफर जारी है। चांद का मुस्कुराना उस रोज भी कुछ ऐसा ही था जब हुई थी मुलाकात उनसे। तारों की ओढ़नी पहनकर रात निकल पड़ी थी सैर पर। खूबसूरत हो रात, मनमीत हो साथ, तो बस जिंदगी में और क्या चाहिए।

देती हैं, जहां लम्हों के बेहिसाब फूल होते हैं, जिन्हें छूकर हम हौले से मुस्कुरा देते हैं, आंसू और मुस्कान से बनी जिंदगी से फिर से बे इंतहा मोहब्बत कर बैठते हैं।

आंसू और मुस्कान से मिलकर बनती है जिंदगी, पर दिल नहीं मानता। मुस्कानों को अपना हमसफर बनाकर उसी के गले लगना चाहता है, पर कभी कभी आंसू की लड़ियां भी दिल को सहलाती हैं। कई बार ये यादों की घाटी में ले जाकर खुली हवा में छोड़ दे

अब आज का छाया गीत कार्यक्रम समाप्त करने की अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

वसंत देव के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आवाज थी लता मंगेशकर और आशा भोसले की, और ये गीत हमने लिया था फिल्म उत्सव से। आकाशवाणी पटना पर आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत।

राजकमल का संगीत, यशदास की आवाज, और यह गीत हमने लिया था फिल्म सावन को आने दो में। आकाशवाणी पटना पर आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत।

लीजिए सुनिए रविंद्र जैन के बोल, रविंद्र जैन का संगीत, यशुदास के साथ हेमलता की आवाज, फिल्म है चित्तचोर।

0: फिल्म चितचोर के साथ ही इस फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जा रहा है। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पजेशकियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजेशकियन

0: ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमेरिका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। ये खंड वर्तमान में मानसी साढ़ागढ़ मार्ग पर एक सिंगल लाइन कॉरिडोर है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन दीव और राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से हो रहा है। दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। देर रात नॉकआउट चरण में 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Kiran Jha. Prime Minister Narendra Modi today had a telephonic conversation with the Iranian President Dr. Masoud Pezeshkian. During the talks, President Pezes